मीडियम वेव 196 दशमलव 1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 और 5 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्रीय मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को

0: 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारी पूछते जिने दुनिया सारी, ऐसी है लीला मेरे खत श्याम की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर्थी अश्विनी फिड़ी, संजीव अभ्यंकर, सुमन कल्याणपुर और साथियों के। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं श्रीमद् भगवद गीता से पाठ।
1: इस संसार में ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त और सबसे बड़ा ज्ञानी भी वही व्यक्ति है जिसने अहंकार से, अपनेपन से मुक्ति पा ली है, जो सब में समा गया है और जिसमें सब समा गए हैं। ईश्वर का भक्त संसार को ईश्वर की रचना जानकर उसके प्रति असीम श्रद्धा और प्यार से भरा हुआ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भक्त का लक्षण बतलाते हुए कहा है, जिसे किसी से भी द्वेष न हो, जो सभी प्राणियों का मित्र है, सबके लिए जिसके मन में करुणा का अथाह सागर लहराता है, वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, जिसके लिए न कोई अपना है न कोई पराया, जो अहंता और ममता के ओछे बंधनों से छूट गया है, अहंकार की क्षुद्र सीमाएं जिसकी अनंत रूपता को खंडित नहीं करती, वही भक्ति का अधिकारी होता है। कृष्ण कहते हैं, सुख जिसे पुलकित नहीं करता, दुख उदास नहीं करता और क्षमा जिसका सहज स्वभाव है, वही मेरा प्रिय भक्त है। अनासक्त होने के कारण जो संसार से कभी खिन्न नहीं होता और संसार जिसकी उपस्थिति से सदा आनंदित रहता है, हर्ष, ईर्ष्या, भय और तनाव इनसे जो सर्वदा मुक्त होता है, वही मेरा प्रिय, मेरा भक्त होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः

0: मम दुख सुख क्षमी यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, उसके लिए जय और पराजय सब बराबर है। वह तो स्वयं में स्वयं से ही संतुष्ट रहता है और जीवन के लाभ हानि के संघर्ष में सर्वथा तटस्थ रहता है। जिसने प्रत्येक कर्म में कर्तृत्व बुद्धि का परित्याग कर दिया है और वेदना को जीत लिया है, वही मेरा भक्त है। मेरे भक्त का अंतर गंगा की भांति निर्मल होता है और वह समत्वपूर्वक प्रत्येक कार्य का बड़ी कुशलता से संपादन करता है। कृष्ण कहते हैं जो कर्म योगी है वही सहज रूप से मेरा भक्त है, मेरा प्रिय है।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवत गीता से पाठ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी कीटनाशी और उनके वर्गीकरण के विषय में जीएस निगम की वार्ता। प्रातः 7:10 पर डॉक्टर वाणी अग्रवाल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कॉन्टैक्ट लेंस के विषय में जानकारी दी।

दीपाली कार्किकाई लोकगीत हम आपका सुनवाएं की लोक संगीत की कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा अकील अहमद खान का राग शिवमत भैरव में ख्याल गायन। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री जिनेलिया डिसोजा के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत।

समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ। चर्चा का विषय होगा नाभिकीय ऊर्जा के लाभ और हानियां। 12:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में सुनी जा सकेगी शिखा तिवारी की वार्ता, जिसका विषय होगा क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होना। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा युद्ध नहीं संवाद का रास्ता है जरूरी।

फरीदा खानम की गाई गजलें हम आपको सुनवाएंगी सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। दिन में 3:30 पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के अंतर

सिन्हा का आशाओं को जीवन देती आईवीएफ तकनीक, इस विषय पर डॉक्टर सोनल गुप्ता से श्री अनिंदर सिंह की बातचीत। हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी प्रश्नों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर।

हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार में शिक्षा की भूमिका के विषय में मोना कुकरेजा की वार्ता। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। हम चर्चा कर बताएंगे प्रधानमंत्री सूर्य सरो

हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार में शिक्षा की भूमिका के विषय में मोना कुकरेजा की वार्ता। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। हम चर्चा कर बताएंगे प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में। हेल्थ प्लस का विषय होगा प्रातःकाल के सरल व्यायाम। 6 बजे ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सके कि बरसात में पशु आहार और दुग्ध उत्पादन के विषय में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह से श्री कृष्ण की बातचीत। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर मसूर मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा हिरोशिमा दिवस।

शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अलीगढ़ जनपद के योगदान के विषय में डॉक्टर गिरिराज किशोर की वार्ता। 7:31 पर आप सुनेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी और राति 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शुभ्रात अलीगांवकर का राग सरस्वती में ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरित मानस गान गायक कलाकार थे रविन्द्र साथी और श्रीकांत पारगांवकर। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए अब आपको सुनवाते हैं कीटनाशी और उनके वर्गीकरण के विषय में जीएस निगम की वार्ता।
1: कीटनाशी वे रसा वस्तुएं हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीड़ों को मार दिया जाता है या उनके किए जाने वाली हानि पहुंचाने से रोक दिया जाता है। इन कीटनाशी रसायनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। कीड़ों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर आमाशय विष, स्पर्श विष, धूम्रक विष प्रयोग में लाए जाते हैं। आमाशय विष कीड़ों के भोजन के साथ उनके आमाशय में पहुंचते हैं तथा शरीर में जहर फैलाकर उसे मार देते हैं, जैसे मेलाथियन 5%, मेथाल पैराथियन 2% आदि। स्पर्श विष, जैसे कि इसके नाम से ज्ञात हो रहा है कि छूने मात्र से ही कीड़े मर जाते हैं, यानी जब जहर कीड़ों पर पड़ता है तो इस प्रकार का विष कीड़ों की खाल, टांग या उन के हिस्से के जोड़ों द्वारा उनके शरीर में पहुंच जाता है और कीड़ों को मार देते हैं, जैसे डाइक्लोरोबास, जिसे न्यूयान भी कहते हैं आदि। धूम्रक विष, जहरीला धुआं। इस प्रकार रसायनों से हवा का संपर्क होते ही हवा जहरीली गैस बन जाती है तथा कीड़े सांस लेते हैं तो जहरीली गैस उसके अंदर सांस द्वारा पहुंचकर उन्हें मार देती है, जैसे सेल्फॉस, इथाई डाई ब्रोमाइड आदि। आंतरिक सिस्टम जहर, जैसे कि इनके नाम से मालूम हो रहा है कि यह पौधों के संपूर्ण भाग को जहरीला करता है, या इन इस प्रकार जहर जब पौधे पर छिड़का जाता है तो यह पौधों के सिस्टम में पहुंचकर पौधे पूरे को जहरीला बना देता है, यानी जब कोई कीड़ा इस प्रकार के विष छिड़क से युक्त पौधे को किसी भी हिस्से को खाता है या इसका ए रस चूसता है तो कीड़ा मर जाता है। इस प्रकार जहर मेटासिस्टो किरलफास डाई मेथोइड, इसे रोगर भी कहते हैं। इस प्रकार के विष की प्रकृति के आधार पर ही इसका प्रयोग किया जाता है चाहिए, जैसे सब्जियों में लगने वाले कीट के विरुद्ध स्पर्श नाशी या आमाशय विष प्रयोग करने चाहिए। उनका चुनाव भी सब्जियों के प्रयोग करने की स्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। यदि सब्जियां 2 या 3 दिन में प्रयोग करनी हो तो स्पर्श विष या इसके बाद के समय हेतु आमाशय विष प्रयोग कर सकते हैं। धुआं वाले विष

0: अनाजों में जो भंडार में रखे गए हैं में लगने वाले कीड़े घुन इत्यादि के रोकथाम हेतु प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण इस प्रकार होता है, जैसे भौतिक विष यह रसायन स्वयं जहरीले नहीं होते हैं परंतु कीड़ों के श्वसन छिद्रों में घुसकर इन्हें बंद कर देते हैं, जैसे तेल तथा कीड़ों की खाल को खोज देते हैं जिससे कीड़े के शरीर की आर्द्रता कम हो जाती है, जैसे मिट्टी आदि जीव द्रव्य विष। इस प्रकार के जहर कीड़ों के शरीर में पहुँच कर उनकी प्रोटीन नष्ट कर देते हैं, जैसे पारा कॉपर का मिश्रण आदि। तीसरे श्वसन विष यह जैसे पहले बताया जा चुका है धूम विष हैं, अर्थात जहरीला हवा जो शरीर द्वारा रसायन द्वारा बनती है कीड़ों की श्वास क्रिया को प्रभावित करती है तथा उसे मार देती है। ज्ञान तंत्र विष यह वे विष हैं जो कीड़े के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात तंत्र का तंत्र व उनके तंतुओं को नष्ट कर देते हैं, जैसे पैराथियन आदि। इसके अलावा इस प्रकार के विष भी जिनके संपर्क में आने पर कीड़ों के प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं तथा कीड़ों के बच्चे पैदा करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जैसे नीम का तेल। हार्मोन्स विष इसके प्रयोग करने पर कीड़ों के शरीर से हार्मोन्स का निकलना कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है या हार्मोन्स निकलना रुक जाता है, जिससे अनुचित वृद्धि के कारण कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में भी किसी सभी विष आते हैं जिनका वर्गीकरण कहीं न कहीं किया जा सकता है तथा कीड़ों को विभिन्न प्रकार से मार सकते हैं। तीसरे प्रकार के वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, जैसे आर्सेनिक कंपाउंड, फ्लोरीन कंपाउंड, गंधक क्लोरीन के कंपाउंड, रासायनिक फास्फेट जैसे मेलाथियन पैराथियन थीमेट मेटासिस्टोक आदि, कार्बामेट कंपाउंड जैसे कारुराल आदि, पौधों से प्राप्त विष जैसे नीम ऑयल आदि के अतिरिक्त तेल साबुन धूम्र विष कीड़ों को आकर्षित करने वाले कीट तथा कीट प्रति आकर्षण विष के अतिरिक्त आज तक प्रदूषण को ध्यान में रखकर आज ऐसे कीटनाशक तैयार किए जा रहे हैं जो कीड़ों को मार देते हैं परंतु मानव शरीर पर इनका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है तथा वातावरण पर भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार कीटनाशक प्राकृतिक पौधों से ही जैसे नीम का तेल लहसुन व तम्बाकू से तैयार कीटनाशक आदि सा ही मारे जाते हैं। कुछ कीड़ों के शरीर के पीस कर इसे घोल को पानी में मिलाकर उसी प्रकार के कीड़ों के ऊपर छिड़का करने से भी कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है, जैसे न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रोवायरस। यह रसायन हीलियोतिस नामक कीड़ की मरी हुई गड़ारों को एकत्र करके पीस कर छान कर उसे एनपीबी वायरस के नाम से जाना जाता है। कीटनाशी का वर्गीकरण धूम्र दानेदार व तेली के आधार पर किया जाता है। धूल में जैसे मेलाथियन 5%, मिथाइल पैराथियन 2% आदि, दानेदार में जैसे कार्बोफ्यूरान बोरेटेंजी आदि। तेलीय घोल इसके अतिरिक्त यह कीटनाशी कहते हैं जिनका छिड़काव पानी में मिलाकर फसलों पर किया जाता है, जैसे इंडोसल्फान 35 cc, डाइथिमोट 30 cc, डाइक्लोरोबाज 36 cc, साइपरमेथिन 10 cc, गामा BSC 20 cc, बेसिलस थिरोजेंसिस, बायोलेब नीम ऑयल आदि। इनका वर्गीकरण जहरीलेपन के हिसाब से रसायनों के डिब्बे पर बना चिन्ह देखकर किया जा सकता है। लाल रंग का निशान वाले अधिक जहरीले होते हैं तथा नीले का निशान वाले पीले रंग के उनके कम, हरे रंग का निशान वाले सबसे कम जहरीले व सुरक्षित रसायनों की श्रेणी में आते हैं तथा फसलों के अतिरिक्त स्थिति एवं अवस्था को देखकर ही प्रयोग किए जाते हैं।
1: कार्यक्रम खेती की पाती में अभी आपने सुनी कीटनाशी और उनके वर्गीकरण के विषय में GS निगम की वार्ता।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं और कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनिएगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: शोषण सामग्री तदनुषंगिक सामग्री कृत्रिमतया निर्मित सामग्री चेत्येषु अथ मंच संचालने च जात दोषान् अधिकृत्य भारत प्रशासनात् क्षमा याचिता। सूत्राणाम् अनुसारं मेटा संस्थया स्वीकृतं यत् केषाञ्चन प्रकाराणां सामग्रीणां प्रचाराय बहुधनराशिः व्ययिता आसीत्। भारत प्रशासनेन मेटा संस्थायै एतत् स्पष्टीकृतं यत् सा मध्यस्थ परिभाषायाः अन्तर्गतं न आयाति, यतः सा संस्था एव निर्धारयति यत् का सामग्री कस्मै प्रेषणीया इति। मेटा संस्थया स्वदोषः स्वीकृतः तथा तस्मिन् विषये दुःखं च व्यक्तम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं अफ्रीका देशैः सह समावेशिनम् आवश्यकताधारितञ्च विकास सहयोगं समर्थयति, यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढीकृत्य राष्ट्रीय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्याम् अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीका देशानां प्रमुख व्यापार निवेश सहभागीषु भारतमपि अन्यतममस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीका देशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां षोडश भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिवीजन ए इत्यस्य उपान्त्यचरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्यप्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयंबतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपान्त्यचक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलम् अथ मध्यप्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलम् च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। श्री मोदी ने श्री टेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों को जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी

0: लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian fishermen and their boats detained by its authorities, while reiterating that a humanitarian approach should guide the handling of the long-pending issue. The matter figured prominently during Foreign Secretary Vikram Misri's discussions with the Sri Lankan leadership during his official visit to Colombo. Mr. Misri arrived in Colombo yesterday for a day-long visit. He held separate meetings with President Anura Kumar Dosanayake, Prime Minister Harini Amarasurya, Foreign Minister Vijayathya Herath and Foreign Secretary Aruni Ranaraj. In Uttar Pradesh, Bahujan Samaj Party MLA from Rasra in Balia district, Uma Shankar Singh passed away last evening after prolonged illness. He was 55 and was undergoing treatment for a brain tumour at a private hospital in New Delhi where he breathed his last. Uma Shankar Singh was the BSP's lone legislator in the 403-member Uttar Pradesh Assembly. He was first elected from the Rasra in 2012 and retained the seat in 2017 and 2022. India has advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil, and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. In response to media queries regarding comments made

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं कॉन्टेक्ट लेंस के विषय में डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता।
1: कॉन्टेक्ट लेंस एक पतली प्लास्टिक के बने हुए लेंस होते हैं जो आंख की काली पुतली के ऊपर लगाए जाते हैं। यह एक तरह से आंख पर चिपके हुए चश्मे का काम करते हैं। जिस इंसान को चश्मे के बिना साफ दिखाई नहीं देता वह इनका प्रयोग आसानी से कर सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस को सामान्यतः सुबह उठकर लगाना पड़ता है और रात को सोने से पहले इन्हें उतारना आवश्यक होता है। यह कई प्रकार के होते हैं। सख्त या हार्ड लेंस PMMA नामक प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन इन्हें लगाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। आजकल यह लेंस एक अलग तरह की प्लास्टिक से बनाए जाते हैं जिसमें से ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सकता है और लगाने में यह ज्यादा आरामदायक होते हैं, लेकिन आजकल इनका प्रयोग भी कम होता जा रहा है और इनकी जगह पर मुलायम या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस HEMA पदार्थ के बने होते हैं और इनमें 40-80% पानी होता है। यह आंख के काले हिस्से से थोड़े बड़े होते हैं और पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं। यह एक तरह के खास सॉल्यूशन में डुबो कर रखने पड़ते हैं, अन्यथा यह सूख कर खराब हो जाते हैं। इन्हें उतारना और लगाना बहुत आसान है और इसे कोई भी अपने आप लगा सकता है। इन्हें इस्तेमाल करते समय साफ सफाई का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जब भी लेंस लगाएं या उतारें तो अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लेने चाहिए। अगर लड़कियां आंखों का मेकअप करना चाहें तो यह लेंस लगाने के बाद ही करना चाहिए। अगर लेंस लगाने से आंखें लाल हो जाएं या धुंधलापन लगे या आंख में दर्द हो तो इसे इस्तेमाल ना करें तथा अपने नेत्र चिकित्सक को दिखा लें। अगर लेंस पहनकर तेज हवा में बाहर निकलें तो इसके ऊपर धूप का चश्मा लगा

0: अगर लेंस पहनकर तैरना चाहें तो तैराकी चश्मों का प्रयोग करें। लेंस को पहनकर रात को सोना नहीं चाहिए। आजकल कुछ इस तरह के लेंस उपलब्ध हैं जो कुछ दिनों के लिए लगातार लगाए जा सकते हैं, लेकिन भारत के वातावरण के लिए यह ठीक नहीं है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत ही सुरक्षित तकनीक है। आजकल तो कुछ लोग लेंस आंखों का रंग बदलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुलाबी, नीला, हरा इत्यादि। यह लेंस आपकी पोशाक से मेल खाते हैं और इन्हें पहनकर आप और अधिक आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन यह लेंस पार्टी में जाते समय कभी कभी ही पहनने चाहिए और इन्हें किसी और को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। याद रखें, एक लेंस एक ही इंसान के लिए होता है, इन्हें अदल बदल कर नहीं पहन सकते। कॉन्टैक्ट लेंस कुछ बीमारियों में भी प्रयोग होते हैं, जैसे घाव इत्यादि। यह लेंस डॉक्टर के परामर्श पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी आप लेंस लगाएं, तो डॉक्टर की सलाह का पालन अवश्य करें।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी कॉन्टैक्ट लेंस के विषय में डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशगान।

0: है कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में NHAI ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को ही पारित कर दिया था।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 भी कल पारित हो गया।
4: इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। समाचार।

0: तख्त से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा में कल विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। कल ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया।
2: मानसून सत्र में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है।
1: उधर विधान परिषद में कल उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 सहित कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है।
3: करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन और बुंदेलखंड को प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौशाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
4: हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेसनायर का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ थे DGM हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डिवार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे और रेसिडेंट इंजीनियर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और 2 साल तक के लिए उनको भी डिवार किया गया।
1: NHAI के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मेडिकल परामर्श समिति ने नीट UG काउंसिलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण कल से शुरू कर दिया। पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। शुल्क भुगतान 12 अगस्त को शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
5: अभ्यर्थी 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
6: राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और

0: कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय के भवनों को एकरूपता के साथ डिजाइन किया जाए, साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। यह समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: राज्यपाल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल शाम नई दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। बसपा विधायक के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार।
5: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास।

स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में होंगी कुछ दैनिक सूचनाएं, साथ ही हम जानकारी देंगे कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत।

परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, सीबीएसई तीसरे से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन थिंकिंग की समझ को विकसित करेगा। इसके लिए सीबीएसई द्वारा 15 अगस्त से 30-30 एकलव्य कंप्यूटेशन थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन सीरीज शुरू की जाएगी। इस संबंध में सीबीएसई ने सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक सोच, समस्या का समाधान करना, पैटर्न पहचानने की क्षमता और दैनिक जीवन में

ऑनलाइन सीरीज शुरू की जाएगी। इस संबंध में सीबीएसई ने सभी संबंध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक सोच, समस्या का समाधान करना, पैटर्न पहचानने की क्षमता और दैनिक जीवन में एआई के उपयोग की समझ को विकसित करना है। ऑनलाइन सीरीज का पहला एपिसोड 15 अगस्त की शाम 4 बजे से प्रसारित होगा। इसके बाद शेष 7 एपिसोड प्रत्येक रविवार को शाम 4 बजे प्रसारित किए जाएंगे। यानी कि सीरीज में कुल 8 सत्र होंगे। कार्यक्रम में कक्षा 6 और उससे ऊपर के विद्यार्थियों और शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा, लेकिन ये निःशुल्क रहेगा। प्रतिभागियों को असाइनमेंट पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र लेने के लिए ₹200 शुल्क देना होगा।

डीयू की तरफ से स्नातक में प्रवेश के लिए तीसरी सीट आवंटन सूची 8 अगस्त को जारी होगी। इस राउंड की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें केवल नई सीटें ही नहीं मिलती बल्कि पहले और दूसरे राउंड में दाखिला ले चुके छात्रों के लिए अपग्रेड का भी बड़ा अवसर होता है। एक छात्र के बेहतर कॉलेज या पसंदीदा कोर्स में जाने से खाली हुई सीट दूसरे छात्र को मिल जाती है और यही सिलसिला कई स्तर तक चलता रहता है। मान लीजिए किसी छात्र को पहले राउंड में कॉलेज सी मिला था, दूसरे राउंड में उसकी पसंद का कॉलेज बी मिल गया तो वहां कोई और चला गया, इससे कॉलेज सी की सीट खाली हो गई। अब यह सीट मेरिट के आधार पर अगले पात्र छात्र को आवंटित कर दी जाएगी। अगर वो छात्र किसी अन्य कॉलेज से अपग्रेड होकर आता है तो उसकी पुरानी सीट फिर से खाली हो जाती है। इस तरह एक अपग्रेड कई छात्रों के लिए नए अवसर पैदा करता है। तीसरे राउंड में सबसे अधिक लाभ उन विद्यार्थियों को मिलता है जिन्होंने पहले से सीट स्वीकार करके अपग्रेड का विकल्प चुना है। वहीं जिन छात्रों ने अपनी सीट फ्रीज कर दी है उनकी सीट में कोई बदलाव नहीं होगा। डीयू की ऑनलाइन प्रणाली पूरी प्रक्रिया को मेरिट श्रेणी और छात्रों की वरीयता के आधार पर स्वतः संचालित करती है, इसलिए किसी एक विद्यार्थी के अपग्रेड का लाभ अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि तीसरे राउंड को बेहतर कॉलेज या पसंदीदा कोर्स पाने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। श्रोताओं, इसके साथ साथ डीयू ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली सीट आवंटन सूची भी जारी कर दी है। विद्यार्थियों को आज यानी कि 6 अगस्त को रात 11:59 तक आवंटित सीट स्वीकार करनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पहले चरण में कुल 28 एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें विज्ञान, मानविकी और भाषा विषयों के साथ ही विज्ञान संकाय में एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेस, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेस, गणित, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी जैसे विषय शामिल होंगे। वहीं मानविकी और भाषा वर्ग में अरबी, बांग्ला, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पंजाबी, फारसी और हिंदी पत्रकारिता सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। विभाग और संबंधित केंद्र विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन 8 अगस्त की रात 11:59 तक करेंगे। जिन विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत हो जाएंगे उन्हें 9 अगस्त रात 11:59 तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। शेष एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटन और प्रवेश कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण सूचना या बदलाव के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल की जांच करते रहें ताकि प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अपडेटेड रहें।

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबद्ध कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण हो चुका है। हालांकि कॉलेजों और आवासीय संस्थान में प्रवेश लेने के लिए समर्थ पोर्टल पर 10,000 छात्रों का ही ब्यौरा दर्ज हो सका है। इधर कॉलेजों और आवासीय संस्थानों में सीटें खाली रहने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीसरी बार अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी है। विश्वविद्यालय से संबद्ध आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के कॉलेजों के साथ ही आवासीय संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों को 400 रूपये का शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। एक अभ्यर्थी 50 अलग अलग पाठ्यक्रमों और कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकता है। समर्थ पंजीकरण करने पर आईडी जनरेट हो जाती है। इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीएड के छात्र 1,000 रूपये विलंब शुल्क के साथ प्रयोगात्मक परीक्षा दे सकेंगे। जिन छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हुई है उनका परिणाम रोक दिया गया है। परीक्षा देने के लिए छात्रों को 15 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भरना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 के बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं जुलाई में कराई गई थी। इसके लिए प्रत्येक कॉलेज को प्रयोगात्मक परीक्षा कराने की तिथि दी गई, मगर कई कॉलेजों ने परीक्षा नहीं कराई। तो जिन कॉलेजों द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं कराई गई है उनका परिणाम रोक दिया गया है। तो अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का मौका दिया है। प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित रहे छात्रों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 1 से 15 अगस्त तक निर्धारित की गई है। इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 1,000 रूपये निर्धारित शुल्क जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आगरा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से होटल जेपी पैलेस में एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जाएगा। 7 और 8 अगस्त को होने वाले कॉन्क्लेव में एआई आधारित 26 से अधिक स्टॉल लगेंगे। एआई प्रदर्शनी और लाइव तकनीकी डेमो भी होगा। छात्रों के आविष्कारों को शोकेस किया जाएगा। स्टार्टअप और उद्योग आविष्कार पवेलियन आकर्षण का केंद्र रहेगा। एआई आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। शुद्ध एआई वर्तमान की सबसे बड़ी तकनीकी शक्ति है। एआई को सीखने, समझने और काम में अपनाने वाले ही भविष्य की प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे। कॉन्क्लेव व्यापारियों, उद्योगों, स्टार्टअप, छात्रों और युवाओं को एआई के व्यवहारिक उपयोग से जोड़ने का माध्यम बनेगा। इस कॉन्क्लेव में विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और आईटी कंपनियों द्वारा एआई आधारित प्रोजेक्ट, स्टार्टअप, नवाचारों और तकनीकी समाधानों का प्रदर्शन भी किया जाएगा और युवाओं को अपने नवाचारों को प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

श्रोताओं, श्रावण मास के दूसरे रविवार पर आगरा एक बार फिर से शिवमय होने को तैयार है। शाम ढलते ही शहर की सड़कों पर बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष गूंजने लगेंगे। लाखों शिव भक्त नंगे पैर नगर परिक्रमा पर निकलेंगे और शहर की सीमाओं पर स्थित

चारों प्राचीन शिवालय की परिक्रमा करेंगे। मान्यता है कि शहर की चारों दिशाओं में विराजमान राजेश्वर महादेव, बल्केश्वरनाथ महादेव, कैलाशनाथ महादेव और पृथ्वीनाथ महादेव स्वयं शहर के कोतवाल हैं और उनकी परिक्रमा करने से आगरा पर आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं। शिव भक्त मार्ग में पड़ने वाले रावतपाड़ा स्थित श्री मनकामेश्वर, कलेक्ट्रेट स्थित रावली, सिकंदरा स्थित वनखंडी महादेव समेत अन्य शिव मंदिरों में भी पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। सोमवार को बल्केश्वर स्थित बल्केश्वरनाथ महादेव मंदिर पर विशाल मेले के साथ साथ परिक्रमा का समापन होगा। नगर परिक्रमा के लिए मंदिर में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। शाम से मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और अगले दिन भी पूरे दिन मंदिर के पट मेले के कारण खुले रहेंगे। मार्ग पर शीतल पेयजल, मोबाइल शौचालय, अस्थायी पंडाल और अन्य नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मंदिरों के आसपास स्थित घाटों पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी की जाएगी। भंडारा संचालकों और दुकानदारों से प्लास्टिक और पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने की हम अपील करते हैं। श्रोताओं, भगवान शिव परम कृपालु हैं, वे मात्र गंगा जल। पुष्प अर्पित करने से ही भक्तों की भावना की संपूर्ण तृप्ति कर देते हैं। भक्त तमाम कष्ट उठाकर मौसम की चुनौतियों से जूझते हुए गंगा जल लेने पहुंचते हैं और फिर भगवान शिव का अभिषेक कर अनुष्ठान का पारण करती हैं।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। अब सुनिए कुछ कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। शुद्ध और डाक विभाग ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं का समय बढ़ा दिया है। जी हां श्रोताओं, अब लोग सुबह 8 बजे से देर रात तक स्पीड पोस्ट, पार्सल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डाक बुकिंग समेत अन्य डाक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और देर शाम तक व्यस्त रहने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। इसके तहत प्रतापपुर स्थित प्रधान डाकघर अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक, संजय प्लेस डाकघर सुबह 8 से रात 12 बजे तक और डीएम आवास के सामने स्थित जीएल एम्पोरियम परिसर का डाकघर सुबह 8 से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। इससे देर शाम कार्यालय से लौटने वाले कर्मचारी, व्यापारी और अन्य ग्राहक भी आसानी से स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग और अन्य डाक सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

और आइए अब आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। खुशी पुत्री हरी सिंह निवासी गांव शादपुरा थाना एतमादपुर आगरा से दिनांक 3 जून 2026 से लापता है। खुशी की उम्र 16 वर्ष और चेहरा कोल है। गुमशुदगी के समय खुशी ने काली टी शर्ट काली पैंट पहनी हुई थी। खुशी के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना एतमादपुर आगरा के पति पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार सिमरन पत्नी छोटू निवासी बड़ी मस्जिद के पास शादरा थाना ट्रांस यमुना आगरा से दिनांक 6 जून 2026 से लापता है। सिमरन की उम्र 20 वर्ष का 4 फुट 5 इंच और रंग सांवला है। गुमशुदगी के समय सिमरन ने सूट और सलवार पहनी हुई थी। सिमरन के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना ट्रांस यमुना आगरा के पति पर सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार सरिता पुत्री पातीराम जो नगला भंडारी थाना ढोला कासगंज निवासी है, दिनांक 30 जून 2026 से पटियाली रेलवे स्टेशन से लापता है। सरिता की उम्र 24 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा है और सरिता के माथे पर चोट का निशान है। गुमशुदगी के समय सरिता ने हरे रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। सरिता के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज निशुल्क ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण देगी। चयनितों को ई रिक्शा ड्राइविंग, अतिथि सत्कार, उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास और संचार कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

कार्यक्रम आसपास में अब मौसम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, मौसम विज्ञान विभाग ने आज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। बादल छाए रहने के साथ साथ ही गरज के साथ बौछार अथवा तेज बारिश हो सकती है। 7 से 11 अगस्त तक आंशिक बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछार पड़ने के आसार हैं। श्रोताओं, बुधवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो मानसूनी परिस्थितियों से आगामी दो दिनों में तेज वर्षा की संभावना है और आगामी सप्ताह में तापमान सामान्य बना रहेगा।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 8 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक

0: वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
1: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
2: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया

0: एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख। अमर उजाला सहित कई अखबारों

0: की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर आरबीआई गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, जेईई तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजिशन एज ग्लोबल हब फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensified their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moved 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Addressing a conference of content creators in New Delhi last year, Mr. Modi called upon them to share India's stories to the world.
3: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
2: Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. The government has extended the tenure of Dr. T.V. Somnathan as the Cabinet Secretary by 1 year.

0: The Pioneer. Government reaches out to opposition ready to soften FCRA bill, allay concerns, writes the Indian Express. The Hindustan Times in its editorial titled Monetary Policy Shows the Economy's Resilience writes, despite a grim environment due to war in West Asia, India is expected to clock a 7% growth rate in the first quarter of financial year 2027, RBI's Monetary Policy Committee said in its resolution. What it underscores is the inherent strength of the Indian economy. It is resilient enough to weather even large cyclical disruptions. Air India appoints former Ethiopian Airlines boss Tewolde Gebremariam as CEO and MD, informs the Hindu Business Line. And finally, investors on a new mission funding space tech startups. India's fledgling private space industry has proven its expertise in building rockets and satellites, overcoming the single hardest capability hurdle in the new space economy, writes the Economic Times. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's extraordinary pool of creative talent can be leveraged to strengthen nation's position as global hub for content creation. Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somanathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moves 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And with that, we end the morning news. Have a nice day. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुस से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक सीईओ टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वजीर आजम ने यह भी बताया कि मस्कुरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशन की दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे, और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT,

और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकतदारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत के तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। सरकार ने काबिना सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकर्रुरी से मुतालिक काबिना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबिना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबिना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026

सभी स्कूलों और

0: का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज़ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इमकान के मद्देनजर सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहां के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफर पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताजा जानकारी हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाज़ाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली के बाज़ हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने ये बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के तबादले ख्याल के दौरान ये मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिस्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की।

0: जो भी हो जाए अपने लोगों के पास जाऊंगी, ये वो बांग्लादेश नहीं है जो हमने बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में मार्क जुकरबर्ग ने हुकूमत से माफ़ी मांगी, ये खबर भी अखबारात पे नुमाया है। यूपी असेंबली का मानसूनी इजलास कबल अज़ वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, हुकूमत ने अपोजिशन पर अवामी फलाही उमूर पर बहस रोकने का इल्ज़ाम आयद किया है। इनकलाब ने इस खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं। आबनाए हुरमुज़ में महफूज बहरी रास्ते पर ईरान और ओमान मुत्तफिक।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुज से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर 38,530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओं, ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे गुलजार की शब्द रचना स्वर थे श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की फिल्म थी गुरु।

साथियों, कार्यक्रम का ये गीत है लम्हे, फिल्म से स्वर है लता मंगेशकर और ईला अरुण के आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया है शिव हरी ने।

0: श्रोताओं, इस गीत में स्वर थी कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम था 1942 ए लव स्टोरी। और अब लीजिए सुनिए बेताब फिल्म से लता मंगेशकर और शबीर कुमार को। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। पर उससे पहले आइए लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
1: भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए। स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, संतराज से पहले हमने आपको बताया कि हम आपको सुनवाने जा रहे बेताब फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और शबीर कुमार ने। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है आरडी बर्मन। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

साथियों, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है राजा हिंदुस्तानी, स्वर है अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी के गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम शमण।

अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी का इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम की तंजति अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1500

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित तिवारी का।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2026 को इटावा के नुमाइश पंडाल में शाम 3 बजे पहुंचकर 604 करोड़ रुपए की 128 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित किया।
2: इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूँ, इसकी हृदय से बधाई देता हूँ।
1: इस मौके पर बड़ी संख्या में हजारों लोगों की भारी भीड़ ने मुख्यमंत्री की योजनाओं और विकास के बारे में सुना। इस मौके पर पुलिस का बड़ा सुरक्षा बल तैनात रहा। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर सदर विधायक सरता भदौरिया, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, मंत्री बीबी रानी मौर्य और जिलाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इटावा के सेफई में स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पीएमआर दिवस पर अत्याधुनिक पूल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन सुविधा का शुभारंभ किया गया। कुलपति डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि इस तकनीक से पुराने और जटिल दर्द से पीड़ित मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा। उन्होंने जरूरतमंद मरीजों को ऑर्थोसिस भी वितरित किए और कहा पुनर्वास का उद्देश्य मरीजों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विजेताओं को स्टेशनरी देकर सम्मानित किया गया। प्रकाश डी पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश ने दिनांक 7 जुलाई 2026 पुलिस लाइन सभागार में संगोष्ठी कार्यक्रम में आरपीएफ जीआरपी और सिविल पुलिस के साथ सामंजस्य पर निर्देश दिए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेल पटरियों की सुरक्षा, रेल नेटवर्क के प्रति शासन मुख्यमंत्री जी डीजीपी महोदय गंभीर हैं। उसी सिलसिले में इटावा पुलिस लाइन में एक वृहद समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जीआरपी आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच में एक विस्तृत चर्चा हुई। रेल यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। रेलवे से जुड़े अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण में है। वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण करने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर जेपीएस राठौर, सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री ने पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बन गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इटावा ने भी उपलब्धि हासिल की है। वन आवरण 12% हो चुका है। मुख्यमंत्री जी आज बीमारू राज्य को हटाकर विकसित राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तभी सभी का विकास होगा। इटावा जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में स्थानीय निकायों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एमआरएफ सेंटर, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था तथा स्वच्छता संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में एमआरएफ सेंटरों की प्रगति की समीक्षा की, अवगत कराया कि जनपद में 10 एमआरएफ सेंटर निर्मित है, जिनमें से 8 संचालित हैं और 2 अभी संचालित नहीं है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जहां कूड़े का अधिक संग्रहण हो रहा है वहां प्राथमिकता के आधार पर एमआरएफ सेंटर स्थापित किए जाएं। उन्होंने सभी एमआरएफ सेंटरों को शीघ्र पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक सतीश कुमार ने बताया कि जनपद में वर्षा अब तक 145

0: काले समय होनी चाहिए थी। ऊपर से एलनीनो का प्रभाव पूरे देश में है, वर्षा कम होने की संभावना है और दिखाई भी पड़ रहा है। जुलाई में जो वर्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, थोड़ा पानी गिरा है, उससे किसानों को फायदा है। बासमती चावल का बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र में प्लांटिंग चल रही है। दूसरी ओर सुपर एलनीनो का जो प्रभाव है उसके लिए सरकार और विभाग ने रणनीति बनाई है। किसानों के लिए दलहन तिलहन के एरिया को बढ़ाया जाए, उसकी बुवाई भी समय से संभव हो पाएगी। विभाग के द्वारा मिलेट्स का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक सतीश कुमार ने बताया कि
1: विभाग और सरकार ने रणनीति बनाई है किसानों को दलहन तिलहन मिलेट्स एरिया को बढ़ावा जाए, उसकी बुआई भी समय से इस वर्षा के कारण संभव हो पाएगी। विभाग द्वारा जो भी रणनीति बनाई गई है उसमें निःशुल्क मिनी किट वितरण है मिलेट्स का, वर्षा को देखते हुए वो 4500 पैकेट हम लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से लाटरी के माध्यम से दे रहे हैं। दलहन तिलहन में भी निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
0: संकर बाजरा और संकर मक्का भी 50% अनुदान पर बांट रहे हैं। अधिक से अधिक किसान कम वर्षा को देखते हुए इन्हीं फसलों की बुवाई करें। जनपद में 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आपदा की विभिन्न घटनाओं में 21 लोगों की मृत्यु हुई। आपदा विभाग ने मृतकों के परिजनों को 84 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि वितरित की है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया कि सबसे अधिक 14 लोगों की मौत नदी और तालाबों में डूबने से हुई। इनके परिजनों को 56 लाख रुपए की राहत सहायता दी गई। इसके अलावा आंधी तूफान में 3 लोग, सर्पदंश से 2 लोग और आकाशीय विद्युत गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हुई। इन सभी मामलों में नियमानुसार मुआवजा राशि पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनी ने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए पहले से ही कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। वर्तमान में सदर तहसील के बड़पुरा क्षेत्र में 13 स्थानों पर बाढ़ चुकियां और बाढ़ राहत शिविर तैयार किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया,
2: बाढ़ की तैयारियां हम पूर्व से ही कर रहे थे। वर्तमान समय में हमारे पास तहसील सदर में 13 लोकेशंस पर हमारी बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत शिविर तैयार है। तहसील चकरनगर में भी जो गाँव प्रभावित होते हैं उन पर सेक्टर के माध्यम से हमने जो निर्धारित हमारे जो ऐसे स्पॉट रहते जो ऊंचे स्थानों पर है वहाँ 14 लोकेशंस पर बाढ़ राहत चौकी स्थापित की गई है।
0: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर में स्थित कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 1077 एक्टिव कर दिया गया है। जैसे ही कोई सूचना मिली है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
3: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
4: बीते दिनों बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई को बुलंदशहर दौरे के दौरान शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों अभिभावकों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इसके बाद वह बुलंदशहर पहुँचे जहाँ उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्रों की 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की अनुमति मिल चुकी है, जिससे बुलंदशहर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के मुआवजे में वृद्धि की गई है, जिससे क्षेत्र के किसान और अधिक समृद्ध होंगे तथा औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेवर में केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी, आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। एयर कार्गो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुलंदशहर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तथा बुलंदशहर के लिए रिंग रोड भी स्वीकृत हो चुकी है। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर तहसील में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत की। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को 2027 के चुनाव को लेकर जागरूक किया। वहीं राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मामले में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले, विपक्ष कभी नहीं चाहता था राम मंदिर बने।
5: सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति कैसे लोगों के मन में विश्वास समाप्त, ये विपक्ष का एजेंडा। उसने हमेशा राम मंदिर ना बने इसका प्रयास किया।
4: बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए और कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए की जा रही तैयारियों का आयुक्त मेरठ मंडल भानु चंद गोस्वामी, डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष और एसएसपी

0: दिनेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए जायजा भी लिया गया। 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक की। जिले के अनुप शहर में स्थित एलडीएवी इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कांवर यात्रा को संपन्न कराए जाने के लिए पूरे जनपद को जोनल एवं सेक्टर में विभाजित करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीते दिनों एसएसपी ने 59 पुलिस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये सभी टीमें 59 सेक्टरों में कांवड़ मार्गों का लगातार भ्रमण करेंगी। कांवड़ियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जनपद में 200 से अधिक खाद्य शिविर लगेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए जनपद को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में एडिशनल एसपी व सीओ रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे। एसएसपी ने बताया कि
1: जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जाकर के ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों को मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और वहाँ पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहाँ पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। और इसी क्रम में जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण कांवड़ मार्ग है उस पे कांवड़ समितियों का गठन हुआ।
0: कांवड़ मार्गों पर 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। डीएम, एसएसपी, एएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल पर एक्सेस रहेगा। जनपद के 8 प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें बिजली, गोताखोर, नाव और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था भी वहां की गई है। 2500 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएसी की कई कंपनियां तैनात रहेंगी। पीएसी के गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। इस बार गंगा एक्सप्रेसवे का भी उपयोग ट्रैफिक डायवर्जन से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहने वाली है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना। स्वर थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म थी हीरा पन्ना। और अब लीजिए सुनिए फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से लता मंगेशकर और किशोर कुमार को बोले मजू सुल्तानपुरी की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

साथियों, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। अनजान के पुलों को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम है बहारें फिर भी आएंगी।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है एक बार फिर से मोहम्मद रफी का। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं दीपाली गौर के गाए कुछ लोकगीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं दीपाली गौर के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दीपाली कौर के गाए कुछ लोक गीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

साथियों, इस गीत में स्वर है सोनू निगम और सुनिधि चौहान के, प्रसून जोशी के बोलों को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है फना।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

साथियों ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे गुलजार की शब्द रचना। स्वर थे रेखा भारद्वाज और जावेद अली की फिल्म थी रावण। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है राजी। स्वर है अरिजीत सिंह, मनी महादेवन, रवि मिश्रा और अर्षा के।

श्रोताओं, सच्ची शांति उस हृदय में जन्म लेती है जो प्रेम करता है, और गवाही वो होंठ देती हैं जो मिल मिलाप के शब्द बोलते हैं। ये उन आंखों में झलकती है जो दुनिया को करुणा और विवेक से देखती है, क्योंकि केवल सत्य और प्रेम के

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं अकील अहमद खान का राग शिवमत भैरव में ख्याल गायन।

सुगम शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जैसा कि हमने आपको बताया, आइए आपको सुनवाते हैं अकील अहमद खान का राग शिवमत भैरव में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद खान का राग श्रीमद भैरव में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 11 बज चुके हैं और समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का।

कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा की सबसे ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा, जिनका आज जन्मदिन है, 5 अगस्त 1987 को मुंबई में जन्मी जेनेलिया ने एक कैथोलिक परिवार में जन्म लिया। जेनेलिया ने अपने करियर के दौरान कई हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया। आज उनके बर्थडे पर हम इनके बारे में आपसे तमाम सारी बातें साझा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इनकी फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की। जेनेलिया डिसूजा के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वह अपने स्कूली और कॉलेज जीवन के दौरान एक स्टेट लेवल एथलीट, स्प्रिंटर और नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर थी। वहीं उन्होंने 15 साल की उम्र में मॉडलिंग में कदम रखा। उसके बाद उन्होंने साल 2023 में फिल्म तुझे मेरी कसम से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में वे अपने पति रितेश देशमुख के साथ नजर आई थीं। एक्ट्रेस ने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल समेत कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया और अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। जेनेलिया डिसूजा के बारे में एक और बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी। दरअसल जेनेलिया ने कभी भी एक्टिंग और मॉडलिंग के बारे में सोचा तक नहीं था, बल्कि वे एक एमएनसी में काम करना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक्ट्रेस एक शादी अटेंड कर रही थी, जिस दौरान उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ पॉपुलर एक पैन के विज्ञापन के लिए ऑफर मिला था। जेनेलिया ने इस विज्ञापन में बिग बी के फैंस का रोल किया था। उस शादी में ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी फिल्म से एक और गीत

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार और आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की। गीत से पहले हमने बात की थी जेनेलिया के एक विज्ञापन के बारे में जो था अमिताभ बच्चन के साथ में। हुआ यूं था कि जेनेलिया के एक पेन के विज्ञापन के लिए किए गए अभिनय से प्रभावित होकर तमिल फिल्मों के निर्देशक एश शंकर ने उन्हें अपनी फिल्म बॉयज के ऑडिशन के लिए बुलाया था। जेनेलिया लगभग 300 लड़कियों के बाद इस फिल्म के लिए चुनी गई थी। इसके बाद जेनेलिया ने एक साथ 3 फिल्मों में अभिनय करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हिंदी फिल्म तुझे मेरी कसम, तमिल फिल्म बॉयज और तेलुगु फिल्म सत्यम उनकी ये फिल्में थीं उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद में। साल 2004 में जेनेलिया की फिल्म मस्ती में अभिनय करते हुए देखा गया। इस फिल्म में उन्होंने बिंदिया नाम का किरदार निभाया। फिल्म को क्रिटिक्स ने कुछ खास पसंद नहीं किया था, लेकिन जेनेलिया की सभी ने बेहद तारीफ की। दर्शकों को यह फिल्म पसंद आई थी और फिल्म में अच्छी खासी कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी। इसके बाद अपना नाम उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में जारी किया था। इसके बाद साल जेनेलिया ने 2 और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया जिनका नाम सांबा और सीए था। इन दोनों फिल्मों में जेनेलिया ने संध्या और इंदु नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। जेनेलिया को ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करने वाली और सफल फिल्मों में से भी सफल फिल्मों में साबित हुई। साल 2005 में उन्होंने तेलुगु फिल्म ना अल्लडू के साथ साल की शुरुआत की। उसके बाद उन्हें तमिल फिल्म सचिन में भी अभिनय करने का मौका मिला। इसी साल जेनेलिया की आखिरी फिल्म का नाम सुभाष चंद्र बोस था। इतनी फिल्मों में अभिनय करने के बाद जेनेलिया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होने लगी थी। बातें लगातार जारी हैं। फिलहाल एक और गीत।

शुभम, जेनेलिया डिसूजा का फिल्मी करियर वैसे तो बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों के साथ में कई सारी तेलुगु कन्नड़ फिल्में भी की। साल 2008 की बात करें तो जेनेलिया की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम जाने तू या जाने ना था। इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की। साल 2009 में जेनेलिया को हिंदी फिल्म लाइफ पार्टनर में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म को दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। क्रिटिक्स द्वारा जेनेलिया के अभिनय की इस फिल्म में आलोचना भी की गई, लेकिन जेनेलिया की तेलुगु फिल्म कथा इसी साल आई और फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। साल 2010 की बात करें तो जेनेलिया डिसूजा ने उस साल हिंदी फिल्म चांस पे डांस में अभिनय किया था। इसके बाद उन्हें तेलुगु फिल्म ऑरेंज में देखा गया। जेनेलिया की दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया और उस साल की उनकी तीसरी फिल्म थी तमिल फिल्म, जिसका नाम था उथमा।

पुथिररण। इस फिल्म को दर्शकों ने भी काफी ज्यादा सराहा और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की। साल 2011 में जेनेलिया ने फिल्म फोर्स में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता जॉन इब्राहिम के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की, साथ ही अपना नाम हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया। साल 2012 में जेनेलिया डिसूजा को फिल्म तेरे नाल लव हो गया में देखा गया, जिसमें उन्होंने अभिनेता रितेश देशमुख के साथ अभिनय किया था। इसके बाद इसी साल उन्होंने तेलुगु फिल्म द इष्टम से अभिनय भी किया। और यही वक्त था जो उनकी केमिस्ट्री को और ज्यादा मोटिवेट करता था, क्योंकि जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की मुलाकात की बात करें तो साल 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर उनकी मुलाकात हुई। उस दौरान रितेश को जेनेलिया से पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन एक्ट्रेस के साथ यह थोड़ा उल्टा था। लेकिन बाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकातें बढ़ी, प्यार हो गया। इस बीच में जेनेलिया की उम्र 16 साल थी और रितेश की उम्र 24 साल। हालांकि बाद में दोनों ने एक दूसरे को 10 साल डेट करने के बाद 2012 में शादी कर ली और अब दोनों के दो बेटे हैं, रियान और राहिल।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के कलाकार में आज हमने आपसे बात की अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा के बारे में। हम सबकी बस यही दुआएं हैं कि जेनेलिया डिसूजा का ये फिल्मी करियर यूं ही आबाद रहे और वो अपने फिल्मी जगत में, सिने जगत में यूं ही एक सितारे की तरह चमकती रहें। आज के कार्यक्रम आज के कलाकार में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें।

फतेह कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ में चर्चा करेंगे नाभिकीय ऊर्जा के लाभ एवं हानि पर, साथ ही हम बात करेंगे हिरोशिमा दिवस की। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति पर गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा के लाभ एवं हानि पर। नाभिकीय ऊर्जा आधुनिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक से प्राप्त होती है। जब किसी भारी परमाणु का नाभिक विखंडन होता है या हल्के परमाणु का फ्यूजन होता है यानी संलयन होता है, तब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज विश्व के अनेक देशों में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि, उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जा रहा है। बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और जीवाश्म ईंधनों की सीमित उपलब्धता के कारण नाभिकीय ऊर्जा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अब अगर इसके लाभ की बात की जाए तो अधिक ऊर्जा उत्पादन नाभिकीय ईंधन की थोड़ी सी मात्रा से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए यह ऊर्जा को अत्यंत प्रभावी स्रोत माना जाता है। बिजली उत्पादन में उपयोग नाभिकीय ऊर्जा से बड़े पैमाने पर लगातार बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है, जिससे उद्योगों, अस्पतालों, विद्यालयों और घरों की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कम कार्बन उत्सर्जन, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम होता है, इससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। और अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग की, तो रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग कैंसर के उपचार, एक्सरे, रेडियोथेरेपी तथा विभिन्न रोगों की पहचान में किया जाता है। कृषि और उद्योग में अगर उपयोग की बात की जाए तो नई फसल किस्मों के विकास, खाद्य पदार्थों के संरक्षण, कीट नियंत्रण तथा औद्योगिक परीक्षणों से भी नाभिकीय तकनीकी उपयोग किया जाता है। ऊर्जा सुरक्षा की अगर बात की जाए तो नाभिकीय ऊर्जा से किसी देश की आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होती है और दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मिलती है। अब हमने आपको ऊर्जा के लाभ तो बता दिए, हानि भी जानेंगे, लेकिन क्या करना चाहिए? अभी समय है एक और संगीत का, तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। म्यूजिकल ब्रेक से पहले अभी हम बात कर रहे थे नाभिकीय ऊर्जा के लाभ पर, और अब बताते हैं आपको नाभिकीय ऊर्जा से होने वाले दुष्प्रभाव प्रभाव या हानियां। नाभिकीय संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह लंबे समय तक खतरनाक बना रहता है। साथ ही यदि किसी परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हो जाए तो विकिरण का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है, साथ ही वन्यजीव और पर्यावरण पर लंबे समय तक पड़ सकता है। नाभिकीय बिजली घर स्थापित करने, उनकी सुरक्षा बनाए रखने और रखरखाव में बहुत अधिक धन खर्च होता है, यानी कि अत्यधिक लागत का सामना आपको इसमें करना पड़ सकता है। साथ ही ये स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि रेडियोधर्मी विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर, आनुवंशिक विकार और अन्य गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों का खतरा, यदि नाभिकीय तकनीक का दुरुपयोग किया जाए तो इसका उपयोग विनाशकारी परमाणु हथियार बनाने में भी किया जा सकता है, जो विश्व शांति के लिए खतरा है। अगर इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो नाभिकीय ऊर्जा मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी ऊर्जा स्रोत है। इसके माध्यम से बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक विकास को नई दिशा मिली है। हालांकि इसके साथ जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए आवश्यक है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग उच्च सुरक्षा मानकों, वैज्ञानिक नियंत्रण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। यदि इसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए तो यह भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

और कार्यक्रम में अब बात करेंगे हिरोशिमा दिवस पर। हिरोशिमा पर बम गिरने की घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब अमेरिका ने जापान के शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इस हमले में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे और शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा, जिससे स्थिति और खराब हुई। इस दिन को याद करने का एक बड़ा मकसद है कि दुनिया कभी भी परमाणु युद्ध की भयावहता को ना भूले। हर साल यूएन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा शांति और सुलह का संदेश दिया जाता है, साथ ही सर्वाइवर्स की कहानियां भी सुनाई जाती हैं, जो लोगों को याद दिलाती हैं कि युद्ध और विनाश कितने व्यक्तिगत और भयानक होते हैं। हिरोशिमा दिवस का मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसी त्रासदियां फिर कभी ना दोहराई जाएं। इस दिन आमतौर पर पीड़ितों को याद में मोमबत्तियां चलाई जाती हैं, शांति प्रार्थनाएं होती हैं और स्कूल विश्वविद्यालयों में बच्चों को उस दिन के बारे में बताया जाता है, ताकि उनकी भावनात्मक और नैतिक समझ मजबूत हो सके।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की नाभिकीय ऊर्जा के लाभ एवं हानि पर, साथ ही हमने आपको बताया हीरा क्षमा दिवस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आज की ये चर्चा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रही होगी। तो आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को हम यहीं पर विराम देते हैं। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और

टेकलाल पटेल जी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओ, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओ, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओ, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओ, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओ, एक सवाल मैं अपने आपसे पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओ, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओ, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है, फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओ, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओ, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए।
डिजिटल दुनिया

0: में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए। टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थी और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम

0: पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
1: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
2: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
1: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
3: जी जी चलो चलो देखते हैं।
2: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
4: अहोम के महाराज की जय हो।
5: जय हो जय हो।
4: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बीशु के साथ।
6: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अद्भुत, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में यह संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको यह नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
6: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
4: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
6: अच्छा।
4: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
6: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
6: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
4: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
6: ओ।
4: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
6: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
4: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
6: ओह।
4: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
6: अच्छा।
4: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
6: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब

0: अभी एक सवाल है
1: जी,
0: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
2: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है
0: जी,
2: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
0: बहुत सुंदर मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं। मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया।
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी, एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है,
2: चुक चुक चुक
0: आई पसंद। और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
3: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
4: नहीं ता...

0: ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
1: खेल लो प्लीज।
0: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
1: प्लीज
0: नहीं।
1: ठीक है, फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
0: ठीक है, जाओ।
2: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है, वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
3: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल, फूल फिर से, वाह। तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
4: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
3: मैं तो बाहर जा रही हूँ।
4: अरे
3: वहाँ देखो चिड़िया, तोते, अरे सुंदर है।
4: अरे सुन तो,
3: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
4: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
5: एक बात देखे तुमने?
4: हाँ।
5: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
4: सही कहते हो आप।
5: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
2: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
6: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म दिल तो पागल है से। आवाजें थी लता मंगेशकर, उदित नारायण की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था उत्तम सिंह ने।

0: कार्यक्रम में आप सुनते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत, विशाल ददलानी रेखा भारद्वाज की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अभी आपने जिस फिल्म का गीत सुना वो फिल्म थी ये जवानी है दीवानी। आवाजें थी विशाल दत्तलानी, रेखा भारद्वाज की। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत से संवारा था प्रीतम ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथी की आवाज में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथी को आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म ड्रीम गर्ल से।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आखिरी गीत अभी हमने सुना फिल्म ड्रीम कल से। आवाजें थी मीत ब्रदर्स की। कुमार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था मीत ब्रदर्स ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब से कुछ देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनिएगा हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया,

0: लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the lower house paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The house also observed silence in memory of the victims of the atomic bomb.

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब समय हो चला है महिला श्रोताओं के

0: नमस्कार। कार्यक्रम घर संसार में सभी बहनों और श्रोताओं का ढेर सारा स्वागत है। सोनिका शर्मा का अभिवादन स्वीकार करें। इतिहास गवाह है कि सदियों से राजाओं और देशों के बीच संघर्ष होते रहे हैं। जब भी कोई विवाद खड़ा होता है तो ताकत का प्रदर्शन या युद्ध ही पहला विकल्प मान लिया जाता है। लेकिन इतिहास का एक सच और भी है कि आज तक दुनिया में कोई भी युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाया है, खासकर आज के समय में जब परमाणु हथियारों का खतरा मंडरा रहा है। तब ये बात और ज़्यादा मायने रखती है कि विनाश का रास्ता कभी विकास का रास्ता नहीं हो सकता। किसी भी विवाद को सुलझाने का जो सबसे बेहतर रास्ता होता है वो होता है संवाद, यानी कि बातचीत। युद्ध अपने साथ केवल और केवल तबाही लेकर आता है। युद्ध में चाहे कोई जीते या हारे, नुकसान दोनों का ही होता है। लाखों निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं और देश आर्थिक रूप से दशकों पीछे चले जाते हैं। बच्चों का अनाथ होना, महिलाओं का बेघर होना और बुनियादी ढांचे का नष्ट हो जाना युद्ध के परिणाम हैं। आज के आधुनिक युग में युद्ध केवल दो सेनाओं में लड़ाई नहीं होती, बल्कि संपूर्ण मानवता के अस्तित्व पर संकट होता है। पर्यावरण को नुकसान अलग, भुखमरी जैसी समस्याएं सदियों तक पीछा नहीं छोड़ती। वहीं अगर संवाद का रास्ता अपना लिया जाए तो दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को धैर्य और सम्मान के साथ सुनते हैं। संवाद से न केवल गलत फहमियाँ दूर होती हैं बल्कि एक बीच का रास्ता निकालने में भी मदद मिलती है। दुनिया के बड़े से बड़े विवाद जो जंग से नहीं सुलझते, वो आखिर में एक मेज पर बैठकर बातचीत के जरिए सुलझते हैं। महात्मा गांधी का भी मानना था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, इसलिए सत्य, अहिंसा और संवाद को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए। और यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए जाने का भी यही उद्देश्य था कि संवाद के जरिए समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। अगर आज की दुनिया को देखा जाए तो हम आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि किसी भी हिस्से में होने वाला युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को प्रभावित करता है। इसलिए आज का समय शक्ति प्रदर्शन का नहीं बल्कि सहयोग और शांति का है। जियो और जीने दो की भावना भी तभी फल फूल सकती है जब हम बंदूक की भाषा छोड़कर बातचीत की भाषा अपनाएंगे। तो बहनों, मानवता को बचाने और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने और एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए युद्ध नहीं, संवाद ही एक सही और एकमात्र रास्ता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।
1: बल्ली कित्थे है?

0: श्रोताओं, महिलाओं का आत्मनिर्भर होना न केवल उनके अपने व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि पूरे समाज और परिवार की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इसी विषय पर पेश है वार्ता, क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होना, और वार्ताकार हैं शिखा तिवारी।
1: मैं शिखा तिवारी, आज मैं आप सभी के सामने महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के महत्व पर आपसे बात करना चाहती हूँ। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वे शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति और खेलकूद हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। आत्मनिर्भर का मतलब स्वयं प्लस निर्भर, अर्थात दूसरों पर निर्भर ना होना। महिलाओं पर कई दोहे लिखे गए हैं जो नारी के सम्मान, शक्ति और महिमा का वर्णन करते हैं। मैं इन दोहों में नारी को देवी माँ और शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। साथ ही कुछ दोहे नारी की कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाते हैं। मैं यहाँ कुछ दोहे का वर्णन करती हूँ। नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे होए, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में पैठ सके ना कोए। अर्थात ये दोहा बताता है नारी में तीन गुण होते हैं जो पुरुषों में नहीं होते, और वो भक्ति मुक्ति और ध्यान में प्रवेश कर सकती हैं। नारी निंदा ना करो नारी रतन की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रह्लाद समान। इस दोहे में नारी की निंदा ना करने और उसे रत्नों की खान बताने की बात कही गई है, क्योंकि नारी से ही ध्रुव और प्रह्लाद जैसे महान भक्त हुए हैं। नारी नारी का नहीं देती आए साथ, शायद उसका इसलिए रिक्त रहा है हाथ। ये दोहा बताता है नारी के त्याग और समर्पण को दर्शाता है, लेकिन शायद उसका फल उसे हमेशा नहीं मिलता। यहाँ कुछ पंक्तियां हैं जो महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व को दर्शाती हैं। आत्मसम्मान और विश्वास, स्वतंत्रता, आर्थिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, बेहतर जीवन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए महिलाओं को बचत और निवेश की सही योजना बनाना जरूरी है, और अपने कमाए हुए धन को सही दिशा में खर्च करना भी जरूरी है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसमें नारी के हर एक रूप को बताया गया है। अर्चना हूँ, पूजा हूँ, मैं इस जग की जननी हूँ। नारी हूँ, उजियारी हूँ, मैं पावन नित बहती गंगा हूँ। उषा हूँ, जननी हूँ, मैं वट की शीतल छाया हूँ। मैं कविता हूँ, कहानी हूँ, मैं आदि शक्ति जगदम्बा हूँ। काली हूँ, दुर्गा हूँ, मैं रणभूमि की महाकाली हूँ। देवी हूँ, धरा हूँ, मैं हर महाकाव्य की गाथा हूँ। गीता हूँ, मीरा हूँ, मैं अनसुईया मरियम सीता हूँ। स्त्री हूँ, नारी हूँ, मैं कृष्ण दीवानी राधा हूँ। न अबला हूँ, न बेचारी हूँ, मैं तो त्याग की मूरत हूँ। झांसी की

0: लक्ष्मी बाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले तक महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं। 2030 तक पृथ्वी को मानवता के लिए स्वर्ग समान जगह बनाने के लिए महिलाओं का पूरा योगदान रहेगा। मैं कुछ महिलाओं के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया। अंजलि मल्हा बचपन से दौड़ती रही, अब एक विचार बन के दौड़ रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की धविका अंजनी मल्हा के प्रयास से उनके गांव को 50 शौचालय मिले हैं। पूरे इलाके की सोच को बदलने का सफर जारी किया। डॉक्टर बलमीत कौर, इन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के प्रति संवेदना तो सब रखते हैं, लेकिन डॉक्टर बलमीत कौर संवेदना से आगे जाकर मूक बधिर बच्चों के लिए भूमिका निभाई। अब बड़ी बहन बन गई तो उन्हें पढ़ने लिखने और नए सिरे से जिंदगी को बसाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। एक किसान परिवार की फातिमा ने शिक्षा के जो बीज बोए उनसे दूसरे के हिस्से से रोशनी आई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, पहले मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता है दिल्ली को रेप कैपिटल के नाम से मुक्त कराना। दिल्ली के हर एक इलाके में पुरुषों की तरह महिलाओं को भी आधी रात को सुरक्षित घूमने की आजादी मिले। स्वाति कहती हैं, महिला आयोग अध्यक्ष होने से पहले मैं एक महिला भी हूँ और मानती हूँ सिर्फ एक दिन महिलाओं के नाम करके समाज को नहीं बदला जा सकता। महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है, तभी वे अपने अच्छे बुरे का ध्यान रख सकती हैं। अगर इनके माता पिता ने इनको अनुकूल माहौल नहीं दिया होता, इनको शिक्षा नहीं दी होती, इनको दीक्षा नहीं दी होती और इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया होता, इनको उड़ने के लिए पंख नहीं दिए होते, तो क्या हमारे समाज को ऐसी सुशिक्षित अच्छी खिलाड़ी, अच्छी वक्ता, अच्छी राजनेता, ये तभी संभव था जब उनको शिक्षा दी गई, उनको मौका मिला। अगर इनको दबा कुचला जाता, उनको चौके चूल्हे तक सीमित रखते तो हमारे समाज में ऐसी नारी नहीं हो पाती। अगर महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी तो उन्हें अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों का भी ज्ञान होगा और वे कहीं भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अपने अधिकारों का हनन होगा तो उनको उसके विरुद्ध वे आवाज़ उठा सकती हैं। अगर उनको अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होगी, अगर वे दूसरों पर आश्रित रहेंगी तो वे कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि उनके मन में बह रहेगा अपनी जानकारी के अभाव का। परिवार में एक भी महिला अगर शिक्षित होती है तो वे अपने परिवार को अच्छी तरह संभाल सकती है, उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। आत्मनिर्भर होने से महिलाएं अपने फैसले लेने में खुद सक्षम होती हैं। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है तो उसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और उपलब्धि की भावना विकसित होती है। वे अपनी गलतियों से भी सीखती हैं और दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से भी अधिक लचीले बनते हैं आत्मनिर्भरता महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं, जिससे समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए निष्कर्ष यही है कि उन्हें अशक्त बनाने के लिए शिक्षा, आर्थिक अवसरों और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान करने का मौका मिले और वे अपने जीवन के हर एक पहलू को समझ सकें।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होना, और वार्ताकार थी शिखा तिवारी। कार्यक्रम जारी रहेगा, अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

बहनों, एक जमाना था जब माता पिता गलती करने पर बच्चे को पीट दिया करते थे। फिर वक्त बदला और फिर बच्चे के लिए माता पिता की तिरछी नज़र ही काफ़ी थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ बच्चों की परवरिश के

तरीकों में भी काफी बदलाव आ चुका है। बच्चों की मार पिटाई या बहुत कठोर रवैया अब नहीं अपनाया जाता है। अब प्यार के साथ साथ लॉजिक यानी तर्क को भी माता पिता तरजीह देते हैं। ये पेरेंटिंग का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें बच्चे को प्यार और अनुशासन दोनों ही सिखाए जाते हैं। जहाँ माता पिता बच्चे को सहानुभूति से पेश आते हैं, लेकिन जब बच्चा गलत व्यवहार करता है तो उसे परिणाम भुगतने देते हैं, लेकिन उनके समर्थन के साथ। वैसे तो सभी माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस पर कुछ लिमिट तो होनी ही चाहिए। जैसे बच्चे गलती करें तो चिल्लाएं नहीं, लेकिन शांति के साथ समझाएं, जिससे वो उस शांत और सुरक्षित माहौल में अपनी गलती को तो समझ सकें। आप बच्चों को गलतियाँ करने की आज़ादी दें। जैसे आपका बच्चा लंच बॉक्स घर पर ही भूल जाए तो उसका टिफिन स्कूल लेकर भागने के बजाय उसे टिफिन के बिना ही रहने दें, और लौटने पर कहें कि आज तो तुम पूरे दिन भूखे रहे होंगे, अब आगे से अपना लंच बॉक्स ले जाना मत भूलना। इस तरह से वो अपनी गलतियां भी दोहराने से बचेंगे। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ ज़रूर दें, जैसे टेबल पर खाना रखवाने की हेल्प करने को कहें, पौधों में पानी देने को कह सकते हैं। साथ ही जिम्मेदार माता पिता की तरह बच्चों का इंटरेस्ट भी जानें और पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करें। बच्चों को चुनने का मौका ज़रूर दें जिससे वो भविष्य के निर्णय आसानी से ले सकें। बच्चों में आत्मविश्वास भरें, उन्हें गाइड करें, लेकिन माता पिता होते हुए भी आपको एक एक दायरा बनाए रखना चाहिए जिसमें आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके, ना कि एक परफेक्ट पर्सन, क्योंकि परफेक्ट पर्सन जैसा कुछ भी नहीं होता है। श्रोताओं तो श्रोताओं आशा करते हैं आपको ये बात पसंद आई होंगी पेरेंटिंग से रिलेटेड, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: और अब करते हैं कुछ ज्ञान और विज्ञान की बातें। आज हम बात करेंगे स्मार्ट होम के बारे में। जब हम स्मार्ट होम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद आवाज़ से लाइट को ऑन करना, फ़ोन से एसी को चलाना, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आज इसी बात की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि एक घर को वाकई में क्या चीज़ स्मार्ट होम बनाती है, और क्या ये सिर्फ इंटरनेट से जुड़ी हुई गैजेट्स का एकमात्र कलेक्शन होता है, या इस बात से कहीं ज़्यादा गहरी बात है? आइए जानते हैं। स्मार्ट होम के बारे में जब हम सोचते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ एक इशारे पर होगा, मगर असलियत में कुछ तकनीकी भूलभुलैया जैसी चीज़ें होती हैं, जहाँ हर ब्रांड का अपना डिवाइस अपनी भाषा बोलता है, जिससे घर में दूसरी डिवाइस आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती। तो अच्छी कनेक्टिविटी के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपस में सबको जोड़ सके। अगर आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी भाषा बोलना सीखना जो सबको जोड़ दे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल के कुछ नियम होते हैं, यानी सेट ऑफ रूल्स, जिससे सारी डिवाइस एक दूसरे की भाषा को समझ सकती हैं। मैटर एक ऐसा ही यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है जो सभी डिवाइसों के लिए ट्रांसलेटर का काम करता है। तो जब मैटर का यूज़ कुछ डिवाइसेज में या जिन भी डिवाइसेज में होता है और उन्हें आपस में आप अच्छे से कनेक्ट करते हैं, फिर ब्रांड कुछ भी हो, वो अच्छी सी कनेक्टिविटी के साथ आपके होम को स्मार्ट बनाते हैं। अब इन सब का क्या फ़ायदा है आम लोगों के लिए? तो देखिए श्रोताओं, इससे आपकी शॉपिंग बहुत ही सिक्योर तरीके से होती है, यानी कि धोखा या फ्रॉड नहीं होता। साथ ही एप्लीकेशंस की मदद से आप बिजली के बिल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कहाँ किस जगह घर में बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है, इससे एप्लीकेशंस के थ्रू आपको समझ में आ जाता है। और ये सब स्मार्ट होम के, अब हम चलेंगे सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हिस्से के बारे में बात करेंगे, वो है सेंसिंग। यानी ऐसा घर जो सिर्फ कनेक्ट नहीं है बल्कि उसे ये भी पता होता है कि घर में कौन है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन की फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये सब होता है, वो भी आपके यहाँ, वो भी बिना किसी कैमरे की मदद के। घर आपके हाइट और वेट को समझने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का और वेट मैट्स का यूज़ करता है, वो भी आपकी प्राइवेसी को छेड़े बिना। तो श्रोताओं, हमने कनेक्टिविटी की बात करी और फिर एनर्जी मैनेजमेंट की और फिर घर को सेंस करने की, और इन सभी को जोड़ते हैं और इससे स्मार्ट होम की परिभाषा बनती है। स्मार्ट होम जो सिर्फ कनेक्टेड नहीं है बल्कि कॉन्शियस भी है, यानी कि सचेत भी है। तो सच में एक स्मार्ट घर की तीन लेयर होती हैं। पहली कनेक्शन, जहां सारी डिवाइस मैटर की वजह से कनेक्ट होती हैं, और दूसरी लेयर में एनर्जी बचाते हैं, और तीसरी अहम लेयर यानी परसेप्शन, मतलब सेंसर फ्यूजन की मदद से घर के अंदर कौन है ये पता करना। तो एक स्मार्ट होम सिर्फ रिमोट कंट्रोल से लाइट और एसी चलाना नहीं है, ये एक ऐसा माहौल है जो हमें समझता है और ज़रूरतों से पहले जान लेता है और हमारे लिए काम करता है। आशा करते हैं स्मार्ट होम स्मार्ट साइंस पर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, छोटे से अंतराल के बाद आपसे फिर मिलते हैं।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल

0: रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: कार्यक्रम में अभी हमने कुछ चर्चा करी थी ज्ञान विज्ञान के बारे में, और अब हम करेंगे बात घर के बारे में। जब सारा दिन थकार कर काम से घर लौटने की खुशी को शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, इन चार दीवारी के बीच जो सुकून मिलता है उससे अपनेपन का जो एहसास होता है वो एक मकान को घर बनाता है। और अपना घर हर किसी के लिए स्पेशल होता है, घर की हर दीवार उसमें रहने वालों की कहानी कहती है, इसलिए घर की डेकोरेशन बहुत अहम हो जाती है। लेकिन सिर्फ घर को घर के लिए सजाना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, और जब हमारा घर हमारा कंफर्ट प्लेस हो तो क्यों ना उसे इस तरीके से सजाया जाए कि वो पॉजिटिव और हीलिंग स्पेस जैसा लगे। तो जानते हैं कुछ ऐसे DIY टिप्स जैसे घर को हम हेल्दी और पॉजिटिव बना सकते हैं। होम डेकोर में घर की लाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ हम फैंसी और महंगी लाइटिंग की नहीं बल्कि सूरज की रोशनी की बात कर रहे हैं। सूरज की रोशनी जहाँ भी बढ़ती है वहाँ माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और हेल्थ के लिए तो हम सभी इसके फ़ायदे जानते हैं। ऐसे में नेचुरल लाइटिंग का भरपूर इस्तेमाल करें, और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा रोशनी को कम करने के लिए आप पर्दे भी लगा सकते हैं। अगर आपका घर का कोई कोना खूबसूरत बनाना है तो उसे हरियाली से भर दें। ऐसे इंडोर प्लांट लगाएं जो कम देखभाल में भी अच्छे और सुंदर लगते हैं। घर को सुंदर बनाने के साथ साथ घर की हवा को भी साफ रखते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर भी होते हैं। मकान और घर में एक अंतर होता है कि घर से आपके इमोशनल जुड़ाव होते हैं, घर और उसमें रहने वालों के दिल करीब होते हैं, इसलिए उसमें अपना एक पर्सनल टच ज़रूर ऐड करें। कुछ ऐसी यादगार चीज़ें जिन्हें आप डेकोरेशन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कुछ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ आप उन्हें फ्रेम करा के रख सकते हैं, बच्चों की जीती हुई ट्रॉफी या पुरस्कार को भी काफ़ी पर्सनल टच देकर आप रख सकते हैं। लेकिन घर का बिखरा होना उसे काफ़ी नेगेटिव बनाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर का सामान कम ही रखें और सही जगह पर रखें, साथ ही फालतू सामान को घर के बाहर रखें। घर में कम सामान स्टोर करें तो घर सजाना बहुत आसान रहेगा। इसके साथ ही हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारी महिला श्रोता सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। अब समय हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फरीदा खानम को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फरीदा खानम को। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज, उसके उपरांत दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक 15 मिनट तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
1: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा लिंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या

0: अक्षी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
5: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
4: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के

0: द्वार खुले हुए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन, साथ ही आप सुनिएगा पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं पंडित रामकृष्ण का रागधुन मिश्र पहाड़ी में क्लैरिनेट वादन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित रामकृष्ण का राग धुन मिश्र पहाड़ी में क्लैरिनेट वादन। अब सुनते हैं पंडित निखिल बैनर्जी का राग धुन मांड में सितार वादन।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन राग धुन मिश पहाड़ी में, साथ ही आप सुन पाए पंडित निखिल बनर्जी का राग धुन मांड में सितार वादन। इसके साथ ही उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अब समय हो चला है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम था मंजिल। शब्द रचना योगेश की थी, संगीत रचना आरडी वर्मन की। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मिलन से। आवाजें हैं लता मंगेशकर मुकेश की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी गीत अभी आपने सुना, फिल्म आया सावन झूमके से। गीत को गाया था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी ने, आनंद बख्शी की रचना को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। लेकिन संगीत का कारवां भी रुकेगा नहीं, क्योंकि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत कुंचन।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बेताब से। गीत को गाया है लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीत पते किया है आर डी वर्मन ने।

इजाज़त फिल्म में भी आपने सुना आशा भोसले को। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी वर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर की। संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आपने सुना फिल्म मासूम से। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गीत लिखा था गुलजार ने, संगीतबद्ध किया था आरडी वर्मन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है।

0: श्रोताओं, समय है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता, आशाओं को जीवन देती आईवीएफ तकनीक। वार्ताकार डॉक्टर सोनल गुप्ता से बातचीत कर रहे हैं अनेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज फिर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर। श्रोताओं, हर दंपत्ति का सपना होता है कि उनके जीवन में एक बच्चे की किलकारी गूंजे, लेकिन कई बार विभिन्न चिकित्सकीय कारणों से ये सपना आसानी से पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके माध्यम से लाखों परिवारों के घरों में नई उम्मीदें नई खुशियाँ जगा दी हैं। आज आईवीएफ पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ी हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर सोनल गुप्ता जी। डॉक्टर सोनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: मैडम, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं के लिए ही जानना चाहेंगे कि ये आईवीएफ होता क्या है, सरल भाषा में हमारे श्रोता इसको किस तरह से समझें।
2: IVF एक ऐसी पद्धति है जिसका कि इस्तेमाल हमारे चिकित्सा क्षेत्र में आजकल किया जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। दो वर्ड्स हमारे मेडिकल में यूज किए जाते हैं, इन वीवो और इन विट्रो।
1: इन विवो
2: का अर्थ होता है कि शरीर के अंदर, यानी कि वाइटल जो क्षेत्र है उसके अंदर, और इन विट्रो यानी कि शरीर के बाहर। इन विट्रो जो कि कृत्रिम हम एक मीडिया तैयार करते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और ये उन कपल्स में करा जाता है जहां पर कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के जो कन्वेंशनल तरीके होते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन, ट्यूबल टेस्टिंग, सीवन पैरामीटर्स का एनालिसिस, ये सारे काम नहीं करते हैं, तब हम उनको IVF की सलाह देते हैं, और ऐसे केसेस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF किया जाता है।
1: यानी आपका कहना है कि ये दो तरह का है, इन विवो और इन विट्रो। यानी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हर निसंतान दंपत्ति है उसको IVF जरूरी हो, ऐसा नहीं है?
2: जी नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जहाँ पर निसंतानता की जो परिभाषा है कि तकरीबन एक साल से अगर कोई भी दंपत्ति आपस में साथ में रह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो उसको निसंतानता या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ऐसे केसेस में प्रारंभिक उपचार से तकरीबन 60-70% केसेस में सफलता मिल जाती है, लेकिन कुछ केसेस में जहां सफलता नहीं मिल

0: पाती है, या कुछ ऐसे कारण निकल के आते हैं जहां पर कि नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी आना संभव नहीं है, केवल उन्हीं केसेस में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF की सलाह दी जाती है।
1: तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं मैम जहां पर IVF की सलाह डॉक्टर्स देते हैं?
0: ये परिस्थितियों में सबसे ज्यादा कॉमन होता है जो हमारे देश में देखा जाता है, वो होता है ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि कोई भी महिला जिसके गर्भाशय के दोनों तरफ ट्यूब्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब जिन्हें हम कहते हैं,
1: जी
0: उनमें अगर रुकावट आ रही है, किसी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं जहां पर गर्भाशय की जो झिल्ली होती है जिसे कि एंडोमेट्रियम कहा जाता है, अगर वो किसी वजह से अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ऐसे केसेस में भी IVF की सलाह दी जाती है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जहां पर कि सीमन पैरामीटर्स में स्पर्म की जो काउंट है या स्पर्म की जो क्वालिटी है वो अगर अच्छी मात्रा में नहीं दिखाई दे रही है, तो
1: वहां
0: कुछ
1: पे भी
0: केसेस में,
1: IVF
0: हाँ
1: की
0: कुछ केसेस
1: सलाह।
0: में IVF का सहारा लिया जाता है।
1: आजकल का जो हमारा जीवन है उसमें इतना परिवर्तन आ गया है, भागदौड़ भरी जीवन शैली है, और बहुत सारे केसेस ऐसे आजकल देखने को मिल रहे हैं जहां पर बांझपन जिसको हम कहते हैं, ऐसे मामले क्या आपको लगता है कि ज्यादा हो रहे हैं? जीवन शैली का जो हमारा प्रभाव है वो एक कारक है।
0: बिल्कुल, हमारे जो अभी की सोसाइटी है उसमें एक तो मैरिज की जो एज है वो डिले होती जा रही है, जहां पर पहले अर्ली 20s में शादियां हो जाया करती थी, महिलाओं की शादियां स्पेशली 18 से 20 22 साल में हो जाती थी, वहीं पर आजकल जो ये एज है वो लेट 20s या अर्ली 30s में चली गई है, यानी कि 28 29 30 या 32 34 साल में शादी होना एक आजकल नॉर्मल ट्रेंड हो गया है। इसके अलावा काम से रिलेटेड स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है जो कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। फीमेल्स में भी स्ट्रेस का रोल होता है, लेकिन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में इसका रोल ज्यादा देखा गया है, कि जो पुरुष अपने काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड परेशानियों के चलते तनाव
1: स्ट्रेस के
0: में रहते
1: चलते
0: हैं,
1: तनाव में जो
0: हाँ,
1: रहते हैं,
0: तो उनके जो सीमन पैरामीटर्स होते हैं वो देखा गया है कि कम हो जाते हैं, जो कि एक इनफर्टिलिटी की वजह बनता है।
1: जैसे आजकल बहुत सारी जीवन शैली जनित बीमारियां हैं, मोटापा उनमें एक बहुत आम समस्या है, तो क्या खास तौर से महिलाओं के नजरिए से मैं ये चीज पूछ रहा हूं, महिलाओं को भी जो है वजन ज्यादा होने के चलते क्या इस तरह की समस्याएं होती हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल है आपका। वजन ज्यादा होने की वजह से महिलाओं में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, वजन का जो एक कारण होता है, और अगर फैट की मात्रा ज्यादा होती है तो जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मेल हार्मोन्स बढ़ने से महिलाओं में ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है, जो नॉर्मल फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसकी वजह से ओव्यूलेशन होने में दिक्कत आती है। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें से ओवरीज में से एग रिलीज होता है, जो कि
1: जी
0: बेसिक स्टेप होता है। तो अगर ओव्यूलेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब है वेट की वजह से, तो प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है और एक ये इनफर्टिलिटी की बड़ी वजह बनती है।
1: आपने जैसा कहा भी था अभी कि पुरुषों में जो सीमेन है उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं डिटेरिएट हो रही है, स्ट्रेस उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ ये है कि केवल महिलाओं की वजह से ही संतान नहीं हो रही है या उसकी प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, ऐसा नहीं है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। निसंतानता का जो एक मुख्य कारण है, करीबन 30 से 35% केसेस में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी होता है, जहां पर कि सीमन में स्पर्म की क्वांटिटी या तो क्वालिटी दोनों में से कुछ भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो प्रेगनेंसी आने में बाधक बनता है।
1: अब हम वापस IVF पे आते हैं मैडम, तो जो IVF की पूरी प्रक्रिया है इसको हमारे श्रोताओं को एक सिक्वेंशियल वे में चरणबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश मैं आपसे कहूँगा कि करें।
0: IVF में जैसा कि मैंने बताया, जहां पर कि ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि ट्यूब्स का जो काम होता है कि एग रिलीज होकर और बच्चेदानी के अंदर तक पहुंचे ट्यूब्स के जरिए, अगर ट्यूब्स का डैमेज ज्यादा हो गया है तो एग को ओवरी से ही रिट्रीव किया जाता है, जिसको कि हम एग रिट्रीवल कहते हैं।
1: यानी जो एक नेचुरल प्रोसेस है, एग रिलीज होते हैं वो ट्यूब्स के जरिए आपके गर्भाशय में जाते हैं, तो वो जो रास्ता ब्लॉक हुआ उसकी वजह से हम पहले ही वहीं से रिट्रीव कर लेते हैं एग्स को।
0: जी, और उसको एग रिट्रीवल से पहले हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं उसमें, जैसे कि ओवरीज में एग ज्यादा बने। नॉर्मली हमारे जो महिलाएं होती हैं इसमें हर महीने में एक या दो एग रिलीज होते हैं, लेकिन IVF के लिए हम कोशिश करते हैं कि 10 से 20 एग्स हर महीने एक साइकिल में रिलीज हो।

0: तो उसके लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि एग की जो मैच्योरेशन है उसको एनहांस करते हैं, और उसके बाद एग को रिट्रीव किया जाता है एक नीडल के जरिए जो कि वजाइना के रास्ते डाली जाती है, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड एग रिट्रीवल किया जाता है। एग रिट्रीवल करने के बाद एग को एक मीडिया में डाल दिया जाता है जहां पर कि एग की ग्रोथ होती है,
1: एक्सटर्नल मीडिया।
0: एक्सटर्नल मीडिया में। आपने सुना होगा इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कायदा से जो ये होता है टेस्ट ट्यूब में ना होके पेट्री डिश होती है एक, जो कि साइंस से पढ़े हुए लोग हैं उन्हें अंदाजा होगा पेट्री डिश क्या होता है। पेट्री डिश में एग को डालकर और उसमें स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है, मेल पार्टनर से स्पर्म्स लेकर उनको इंजेक्ट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको एक अलग मीडिया में रख के

0: में आपने सुना होगा इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कायदा से जो ये होता है टेस्ट ट्यूब में ना होके पेट्री डिश होती है एक, जो कि साइंस से पढ़े हुए लोग हैं उन्हें अंदाजा होगा पेट्री डिश क्या होता है। पेट्री डिश में एग को डालकर और उसमें स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है, मेल पार्टनर से स्पर्म्स लेकर उनको इंजेक्ट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको एक अलग मीडिया में रख के ग्रो किया जाता है। जब वो मीडिया में ग्रो कर जाता है तो अलग अलग स्टेज पर उसका एम्ब्रियो का गर्भाशय के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है।
1: कितना पीरियड के बाद करीब करीब?
0: ये सारे प्रोसेस में करीबन 6 से 7 दिन तक लग सकते हैं। कभी कभी हम 3 दिन का एम्ब्रियो भी ट्रांसफर करते हैं, कुछ केसेस में 4 या 5 या 6 दिन का भी एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। तो ये
1: उसकी
0: अलग अलग लोगों का अलग
1: अलग
0: अलग
1: अलग
0: प्रोटोकॉल होता है, गर्भाशय की स्थिति पर, गर्भाशय की झिल्ली की स्थिति पर भी इस बात का निर्भर करता है कि किस स्थिति में एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट
1: ट्रांसप्लांट
0: किया
1: किया
0: जा रहा है।
1: जाए।
0: तो इसको कहा जाता है ईटी या तो एम्ब्रियो ट्रांसफर।
1: क्या ये जो IVF की प्रक्रिया है ये दर्दनाक भी है?
0: IVF की प्रक्रिया दर्दनाक नहीं होती है। जो इंजेक्शन लगाने का प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली जब एग को मैच्योर किया जाता है तो कुछ हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो जो इंजेक्शन का प्रक्रिया है वो जरूर थोड़ा दर्द वाला होता है, जबकि इंजेक्शन या सुई चुभती है। तो सुई अपने आप में कोई मेजर दर्द नहीं होता है, लेकिन हाँ सुई चुभने का दर्द तो किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी प्रोसेस होते हैं जैसे कि एग रिट्रीवल या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये जो प्रोसीजर्स हैं ये बेहोशी के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस में कोई दर्द नहीं होता है और मरीज को बेहोश करके ये प्रोसेस किया जाता है, तो इसलिए ये पेनलेस प्रोसीजर होते हैं।
1: अच्छा, IVF से जो बच्चे जन्म लेते हैं और जो सामान्य तौर पे बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें कोई अंतर होता है या एक जैसे ही होते
0: नहीं
1: हैं?
0: नहीं ऐसा कोई अंतर नहीं होता है, बच्चे दोनों ही एक तरीके से होते हैं। जो बच्चे बनने का प्रोसेस है वो सेम ही रहता है।
1: बस वो
0: आईवीएफ
1: फर्टिलाइजेशन जो है, आपने जो
0: फर्टिलाइजेशन,
1: अंदर नहीं हो पा रहा था किन्हीं कारणों की वजह से, वो आपने बाहर करके उसको अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर वही प्रोसेस है सेम।
0: बिल्कुल, बच्चे दोनों तरीके से सेम ही होते हैं।
1: अच्छा, IVF की जो सक्सेस रेट है वो किन बातों पे डिपेंड करती है?
0: आईवीएफ की सक्सेस रेट डिपेंड करती है एग की क्वालिटी क्या है। महिला की एज एक फैक्टर होता है जो कि एग की क्वालिटी को डिटरमाइन करती है। अगर महिला की उम्र 35 साल या उससे ज्यादा है तो ऐसे केसेस में एग्स का जो नंबर और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो आईवीएफ में अगर महिला की एज 35-40 के बीच में है या उससे ज्यादा है तो एग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब होती है। इसके अलावा मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में भी सीमेन पैरामीटर्स की जो क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है स्पर्म्स की, ये भी डिटरमाइन करती है कि आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि किस तरीके का मीडिया यूज किया गया है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जो कि इन चीजों को हैंडल कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस और क्षमता कितनी है, वो भी इस बात को काफी हद तक डिटरमाइन करते हैं कि आईवीएफ के रिजल्ट्स कैसे आएंगे।
1: अच्छा, ये आपने जैसे कहा कि सक्सेस रेट 35 के बाद जो है, 35 तक तो ठीक है, अच्छा रिजल्ट है। तो जो ऐसे कपल्स हैं, ऐसे दंपत्ति हैं जिनको संतान की चाह है और किसी कारण से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेट करने से वो जो आप कह रहे हैं कि सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा।
0: ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ही किसी भी दंपत्ति को यह एहसास होता है कि उन्हें टाइम ज्यादा होता जा रहा है और प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पा रही है, उन्हें तुरंत अपने आसपास के किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और जैसे वो सलाह दें, अगर वो आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको आईवीएफ की जरूरत है, तो बिना देरी के आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जितना समय आप सोचने में, इधर उधर राय लेने में निकाल देते हैं, वो कई बार बहुत क्रूशियल हो जाता है और रिजल्ट्स को डिस्टर्ब कर सकता है।
1: जैसे कि आपने बताया था कि जो IVF है उससे जीवन शैली जो हमारी है उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो हमारी संतान प्राप्ति की चाह है उसमें कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो जीवन शैली में थोड़े बहुत बदलाव करके IVF की सफलता को क्या बढ़ाया जा सकता है?
0: बिल्कुल सही सवाल है आपका। आईवीएफ की सफलता बढ़ाने में अगर दोनों कपल्स स्ट्रेस में नहीं रह रहे हैं, अपने इस प्रोसेस को अच्छे हेल्दी वे में और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ले रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को कम करना आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो अपने आप में स्ट्रेस को पैदा करती है किसी भी महिला के लिए, ये सोच के कि वो

0: माँ नहीं बन पा रही है तो बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है। बहुत बार ऐसे कपल्स मैंने देखे हैं जहां पर कोई भी कारण नहीं निकल के आ रहा है, केवल तनाव ही एक ऐसा फैक्टर होता
1: ये
0: है।
1: अपने आप में खुद में एक बहुत बड़ी समस्या
0: अपने
1: है,
0: आप में एक समस्या है जो कि इनफर्टिलिटी के लिए एक जरूरी।
1: मानसिक रूप से जो
0: हाँ,
1: है आदमी अपने आप को बड़ा कमजोर और डाउन महसूस करता है।
0: तो अगर आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस रेट को बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं।
1: मैम इस वक्त कार्यक्रम में समय है आपकी पसंद के एक गीत श्रोताओं को सुनवाने का, तो कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अब के बरस भेज भैया को बाबुल।
1: क्या बात है, तो आपकी पसंद का ये गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: कार्यक्रम में फिर से मैम आपका स्वागत है। एक चीज़ जो IVF से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में रहती हैं, खास तौर से जो ऐसे कपल्स हैं जिनको संतान की चाह है, या उनके जो नियर एंड डियर होते हैं परिवार या समाज के आसपास के लोग, तो क्या वो आम भ्रांतियाँ होती हैं जिनके वजह से आप तो चूंकि ऐसे तमाम पेशेंट्स को डील करती हैं, तो क्या वो ऐसी आम भ्रांतियां होती हैं जो IVF से जुड़ी हैं?
1: IVF से जुड़ी एक सबसे कॉमन भ्रांति जो मेरे सामने आती है वो होता है कि जो पुरुष पार्टनर्स होते हैं, जो मेल पार्टनर्स होते हैं, कई बार वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके दिमाग में कभी कभी भ्रम होता है कि जो स्पर्म

0: इस्तेमाल किया जाता है आईवीएफ में, वो हो सकता है उनका ना हो। कभी कभी डोनर स्पर्म की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में स्पर्म जो होता है वो मेल पार्टनर का ही होता है। और इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा कि आईवीएफ में इस तरीके की कोई भी माल प्रैक्टिस को इन्वॉल्व न किया जा सके। तो ये एक भ्रम देखा गया है कि पुरुष पार्टनर्स इस बारे में थोड़ा सा झिझकते हैं,
1: सशंकित रहते हैं।
0: सशंकित रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्पर्म इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा जैसा कि सवाल आपने पूछा कि आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर है क्या, तो आईवीएफ कोई ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। नॉर्मल किसी अन्य इलाज की तरह आईवीएफ को करवाया जा सकता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं के दिमाग में ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी आईवीएफ से आई है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। ऐसा भी कई बार देखा नहीं गया है, विशेषकर अगर सिंगलटन प्रेगनेंसी है। आईवीएफ के केसेस में कई बार देखा जाता है कि दो बच्चे हो जाते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाते हैं। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो ट्विंस से रिलेटेड कुछ खतरे होते हैं, लेकिन अगर सिंगलटन प्रेगनेंसी है यानी कि एक ही बच्चा है गर्भाशय में, तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितना रिस्क होता है तकरीबन उतना ही रिस्क आईवीएफ प्रेगनेंसी में होता है। अगर माँ की सेहत में कुछ परेशानियां हैं जैसे कि उम्र ज्यादा है, डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से कुछ खतरे बढ़ते हैं जो कि दोनों केसेस में आईवीएफ और नॉर्मल प्रेगनेंसी में तकरीबन समान ही रहते हैं। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी कोई विशेष ज्यादा खतरे वाली प्रेगनेंसी नहीं रहती है। और अगर आपको जरूरत है आईवीएफ के लिए तो बिना देरी किए आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए जाना चाहिए।
1: आपने जैसे बताया कि आईवीएफ में कभी कभी मल्टी प्रेगनेंसी भी हो जाती है, ट्विंस के भी संभावनाएं होती हैं, वो शायद इसलिए होता है कि जैसे आपने बताया था कि आपको बूस्टर डोज दी जाती हैं ओवुलेशन को इंक्रीज करने के लिए।
0: नहीं, उसका रीजन रहता है जो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, सेफ्टी के लिए कभी कभी कुछ क्लिनिक्स में दो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसे कि मान
1: अच्छा,
0: लीजिए अगर एक एम्ब्रियो नहीं इम्प्लांट हो रहा है तो दूसरा हो जाए, थोड़ा सा सफलता की संभावना
1: बढ़ाने के लिए।
0: बढ़ाने के लिए दो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पर आजकल कायदा ये है कि एक ही एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाएगा, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं।
1: अच्छा, आईवीएफ उपचार के दौरान चूंकि दंपति जो होता है वो बहुत स्ट्रेस से गुजरता है जैसे कि आपने बताया अभी, तो मानसिक रूप से जो चुनौतियां होती हैं वो बड़ी भयानक होती हैं। तो उपचार शुरू करने से पहले, चूंकि आईवीएफ का इलाज है जाहिर सी बात है महंगा होगा, तो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से दंपति को तैयार करना, उसकी कितनी ज़रूरत होती है?
0: ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आईवीएफ के लिए काउंसलिंग की एक बहुत ज्यादा जरूरत होती है। काउंसलिंग यानी कि आईवीएफ को जाने से पहले किन-किन बातों की जरूरत आपको पड़ेगी, आपको मेंटल लेवल पर और फाइनेंशियल लेवल पे क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ये भी समझाना कपल को बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर कोई चीज अचानक से उनके सामने आती है, अगर उन्हें अचानक से पता
1: तो
0: चले
1: जिसके लिए वो शायद
0: कि
1: तैयार ना
0: हाँ,
1: हो।
0: अगर वो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं है, तो कई बार उसको एक्सेप्ट करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो आईवीएफ के लिए काउंसलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। काउंसलिंग के साथ ही आईवीएफ के लिए जाना सेफ रहता है, ताकि आपको बाद में किसी झटके का सामना ना करना पड़े, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
1: काउंसलिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना मेडिकेशन।
0: बिल्कुल सही बात।
1: क्या जो दंपत्ति है या महिलाएं हैं खास तौर से, वो स्ट्रेस में हैं, उनको अगर कोई मेंटल प्रेशर है, वो भी कहीं ना कहीं गर्भधारण करने में समस्या पैदा करता है?
0: बिल्कुल, गर्भधारण करने के लिए जो हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, FSH और LH हार्मोन, ये हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं। और ब्रेन में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी भी वजह से महिला स्ट्रेस में है तो महिला के जो पीरियड्स हैं वो इररेगुलर हो जाते हैं। महिला का अगर स्ट्रेस में है तो कई बार वेट गेन का भी एक वजह बनती है। कई बार वेट लॉस भी होता है, लेकिन कभी कभी वेट गेन भी हो
1: वेट
0: जाता है।
1: गेन ज्यादा होता है,
0: हाँ,
1: वेट लॉस भी होता है
0: वेट
1: कभी
0: लॉस भी
1: कभी।
0: होता है,
1: जी
0: तो ये भी एक कारण होता है जिससे कि महिला का जो पीरियड्स का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है, और आईवीएफ का जरूरत पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर स्ट्रेस का लेवल ज्यादा रहता है।
1: अब मैं अगर मैडम ये पूछना चाहूं कि आईवीएफ की जो तकनीक है वो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें आशाएं पैदा करती है, एक जीवन के प्रति जो हमारा नजरिया है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, तो आज अगर हम देखें वर्तमान में आईवीएफ तकनीक कितनी विकसित है, किस स्टेज में आप इसको देखते हैं?
0: आजकल जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, आईवीएफ के फील्ड में भी बहुत सारी तरक्कियां हो रही हैं। जैसे जैसे हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि एआई का दखल बढ़ता जा रहा है, IVF के केसेस में भी एम्ब्रियो सेलेक्शन के लिए AI का बहुत

0: बड़ा रोल देखा गया है कि जब हम एम्ब्रियो को बनाते हैं तो कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाए कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस बेहतर से
1: सक्सेसफुल
0: बेहतर
1: रेट,
0: हो जाएं,
1: सक्सेस रेट ज्यादा हो
0: सक्सेस
1: जिसमें
0: रेट ज्यादा हो जाए। तो उसमें एम्ब्रियो सिलेक्शन के लिए आजकल एआई का इस्तेमाल किया जा रहा
1: विदाउट
0: है।
1: एनी कॉम्प्लिकेशंस, और बेस्ट एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से ट्रांसप्लांट
0: बिल्कुल।
1: हो सकता है।
0: और इसके अलावा जो बहुत सारे मेल फैक्टर्स हैं उसके भी एनालिसिस के लिए एआई की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: अच्छा, जो आपने एक एस्पेक्ट रेगुलेशन का बताया था, तो सरकार ने कौन कौन से IVF क्षेत्र में नियमन के लिए क्या क्या नए जो है बदलाव या चीजें लाई हैं सरकार ने?
0: सरकार ने इसके लिए अभी हाल ही में काफी सख्त कानून बनाए हैं। हर आईवीएफ क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होना PCPNDT एक्ट के अंतर्गत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एम्ब्रियो सिलेक्शन के लिए गैमेट डोनेशन जो पहले काफी कॉमनली होता था, अब उसको स्ट्रिक्टली कर दिया गया है कि कोई भी फाइनेंशियल रीजन से कोई भी आप गैमेट को डोनेट नहीं कर सकते हैं, केवल एल्ट्रुइस्टिक तरीके से ही गैमेट डोनेशन किया जा सकता है। इसके अलावा सरोगेसी, आपने सुना होगा बहुत बार सरोगेसी की जरूरत पड़ती है। सरोगेसी अर्थात गर्भाशय किसी और महिला का होता है और गर्भ किसी और महिला का होता है, तो सरोगेसी लिए
1: किराए
0: भी,
1: की कोख
0: हाँ
1: जिसको
0: किराए
1: हम
0: की
1: बोल,
0: कोख जिसे कहते हैं, उसके लिए भी काफी सख्त नियम कर दिए गए हैं कि वो भी आप केवल फाइनेंशियल रीजन से पहले किए जाते थे, मतलब महिलाएं सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए अपनी कोख किराए पर देती थी, जिसको कि अभी बैन किया गया है। तो इस तरीके से सरकार काफी सख्त कानून ला रही है आईवीएफ के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट जनता को दिए जा सके।
1: आजकल मैडम एक और टर्म जो सुनने को मिलता है, एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग की भी आजकल चर्चा होती है, तो ये किन लोगों के लिए उपयोगी होता है?
0: एग फ्रीजिंग, जैसे मैंने बताया कि आजकल महिलाओं में जो शादी की उम्र है वो बढ़ती जा रही है, और एक कंडीशन होती है जो एग्स की जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है ओवरीज में वो कम होने लगती है। तो अगर किसी महिला को ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अभी तुरंत प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर पा रही है किसी भी वजह से, तो वो अपने एग्स को फ्रीज करवा सकती है, जो कि भविष्य में 2-4 साल बाद अगर उसे जरूरत पड़े तब वो एग्स को काम में ले सकती है। कुछ केसेस में जहां पर कोई कैंसर या मेलिग्नेंसी है जिसमें कि रेडिएशन दिया जाना है, तो ऐसे केसेस में ओवरीज में एग्स की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, उससे बचने के लिए भी एग फ्रीजिंग का
1: पहले से ही फ्रीज करवा
0: ऑप्शन
1: के रख
0: ऑप्शन
1: लेते।
0: दिया जाता है। इसी तरीके से पुरुषों में भी स्पर्म फ्रीजिंग का या सीमेन फ्रीजिंग का तरीका दिया जाता है, जिससे कि अगर पुरुषों को किसी वजह से कोई रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ रही है, या फिर कई बार कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो कि बाहर काम कर रहे हैं, लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, ऐसे केसेस में भी स्पर्म फ्रीजिंग का सहारा लिया जा सकता है।
1: अब कोई दंपत्ति है, अगर लंबे समय से उसको संतान की चाह है, वो प्रतीक्षा कर रहा है, तो ऐसे जो कपल्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि कई लोग कई दफ़े पूछते हैं कि IVF कराया जाए या बच्चे को गोद ले लिया जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कपल्स को?
0: देखिए, आईवीएफ कराना या बच्चे को गोद लेना एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, और कई बार कपल सिर्फ इसलिए आईवीएफ के लिए नहीं जाना चाहते कि उनके दिमाग में कोई भ्रांति है आईवीएफ के लिए। तो ऐसे केसेस में मैं कहना चाहूंगी कि आईवीएफ की तकनीक बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, बहुत ज्यादा परिष्कृत हो चुकी है, तो ज्यादातर केसेस में रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अगर किस केसेस में, जैसे मैंने बताया कि अगर एग की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है या सीमन पैरामीटर्स बहुत ज्यादा खराब है, जहां पर कि आईवीएफ से रिजल्ट भी मिलने की संभावना नहीं है, उन केसेस में जरूर हम गोद लेने की सलाह देते हैं। या फिर कपल किसी वजह से फाइनेंशियली अगर नहीं इतना
1: बियर कर पाता
0: सक्षम
1: है।
0: है, वो नहीं बियर करना चाह रहा है या नहीं बियर कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में गोद लेने की प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया भी काफी जटिल है, इसके लिए भी पूरे नियम और कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए ही कपल को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं।
1: अच्छा, अब जैसे आपने कहा भी था कि तकनीकी आ गई है, AI का जमाना आ गया है, तो अब अगर हम आने वाले दशक को देखें, तो 10 साल में IVF के क्षेत्र में आप किस तरह से बदलाव को देखती हैं?
0: आगे आने वाले समय में आईवीएफ और ज्यादा तरक्की करने के राह पर है। आईवीएफ में एक नई तकनीक अभी इस्तेमाल हो रही है, आपने भी सुना होगा डिजाइनर बेबीज का। डिजाइनर बेबीज में मतलब ऐसे बच्चे जिनके कि आप करेक्टर्स डिसाइड कर सकें, तो इस तरीके की भी तकनीक आने की संभावना है। लेकिन ये नियम और कानून के चलते हुए कितना
1: रेगुलेशन
0: प्रैक्टिकल,
1: उसमें बहुत
0: हाँ
1: जरूरी
0: रेगुलेशन,
1: होगा।
0: हाँ कहाँ तक

0: उसको सफल करने में जो रोल प्ले करेंगे वो देखने वाली बात है। इसलिए डिजाइनर बेबी की कंसेप्ट शुरू हो गई है, विदेशों में काफी चलन है इसका, लेकिन हमारे देश में अभी इतना इसको नहीं पॉपुलर हो पाया है। लेकिन IVF का डेफिनेटली अगले आने वाले सालों में तकनीक बेहतर होने से रिजल्ट्स बेहतर होंगे और वो कपल जो अभी तक IVF से नहीं सफल हो पा रहे थे उनकी भी सफलता बढ़ने की संभावना है।
1: तो डॉक्टर सोनल जी, आपने बड़े ही सरल और वैज्ञानिक ढंग से IVF से जुड़े जो सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर जो प्रकाश डाला है, निश्चित रूप से हमारी ये बातचीत हमारे श्रोताओं को वो जो संतान की चाह में संघर्ष कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक राह जरूर दिखाएगी, क्योंकि बांझपन कोई अभिशाप नहीं है। आजकल एक ऐसी चिकित्सकीय स्थिति भर है जिसका उपचार आज IVF जैसे आधुनिक विज्ञान के माध्यम से संभव है। बस जरूरत है तो सही समय पर जांच की और विशेषज्ञ की सलाह की, साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली की जैसा कि आपने बताया, और सकारात्मक रहने की। आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ आज हमारे कार्यक्रम में आकर जुड़ी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, आशाओं को जीवन देती IVF तकनीक। डॉक्टर सोनल गुप्ता से बातचीत कर रहे थे अनिंदर सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संदेश टू सोल्जर्स, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वादे वो इरादे, वो कस्में वो गुजारिश, वो कविता वो गीत वो नहर, वो आकाश वो पहाड़, वो समुद्र वो खिलखिलाते चेहरे, वो फूल वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हों तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू। और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं, मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज?
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट हिम, इज दैट द आईडिया?
1: या, दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाई है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं। और ये महारत हासिल करके आपने, ये कहूं कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी यू पहनी।
1: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही, हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
0: जी।
1: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए। सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।
0: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तमर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले। ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअल

0: पेनल्टी के शिकार हुए, लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड दो बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तमर जी, ये सफर शुरू कहां हुआ आपका? When did you want to come to the Indian Armed Forces?
1: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
0: जी।
1: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
0: ओके।
1: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही पीटी परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू ज्वाइन।
0: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे?
1: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, पीटी करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स, 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में। तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
0: ओके। पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े। आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
1: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल, बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी जिंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है।
0: ओके।
1: उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही जिंदगी है।
0: yes.
1: तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
0: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीजन कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
1: सर्टेनली सर्टेनली। एंड हम लोग UN जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
0: Absolutely.
1: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज आर नोन फॉर डिसिप्लिन, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
0: सो क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफकोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया। खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या खास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है, ये कहना सही होगा?
1: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है। दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफी बदलाव आ रहा है।
0: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
1: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे। लेकिन उसके बाद, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
0: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फर्क आ गया होगा?
1: फर्क तो हर जगह आया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला।
0: okay.
1: बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा। लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो जिंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है और साथ ही जिंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
0: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर

0: पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग.
1: जी मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंडर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की, बारामूला में मैं रहा. तो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ. बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है. और मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज जम्मू एंड कश्मीर.
0: वाओ, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा. मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है.
1: बात ही कुछ और है वहाँ के लोगों के साथ. हमने बहुत काम किया उनके साथ, हमारे जाति ताल्लुकात हैं. और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं. चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है. तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पूना में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है. सो इट्स टफ बट इट इज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग.
0: तो आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे भी जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी एंड यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म. आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं. जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए.
1: बिल्कुल. और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने. लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड. आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर.
0: और हमारा
1: यस या ड्रेडेड, इट इज ड्रेडेड फॉर पीपल, या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो दैट वे यस. बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है, कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है. लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज ऑन आवर साइड.
0: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
1: हाँ बिल्कुल. वो तो जरूरी है. लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी.
0: राइट. कुछ बताइए ना वहाँ पे, अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई, या कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, एंड यू आर सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ.
1: देखिए वहाँ तो डे वन से ऑपरेशंस चलते हैं. मुझे अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के. लेकिन जैसे आपने बताया, मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में जो सुरनकोट में हुआ था.
0: इसके अलावा एलैबोरेट करना चाहेंगे?
1: नहीं, मतलब एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना था, और वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है, आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई. बट नॉट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस इंजरी. और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था. और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे. लेकिन इस तरीके के वाक्ये मेरे साथ हुए हैं, मैं बच गया. लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और अफसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपनी जान का बलिदान दिया है. मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ अवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस. सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई, बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड
0: फॉर द नेशन.
1: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री.
0: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार, वर्दी पहनी है, बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता.
1: नशा है, जुनून है, एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव.
0: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं.
1: हाँ, पहला नशा जी. और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना.
0: एनी स्पेसिफिक रीजन?
1: हाँ, इसका रीजन दो तीन रीजन है. पहला रीजन उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर, मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था,
0: होता था
1: कश्मीरी गेट के बाहर. तो मेरे भाई

0: के साथ मैंने ये मूवी देखी थी, मैं आई थिंक 11th या 12th में था, और वो मुझे याद है वो गाना पूरा, इट इज यू नो इम्प्रिंट ऑन माय माइंड। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था, तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा, तो आई यूज्ड टू से जो मैंने अभी आपको कहा है कि आर्मी इज आवर फर्स्ट लव।
1: सर बात तो आर्मी के आगे भी होगी, इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में।

तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं

0: माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहां पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहां पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूंगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहां पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहां पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी,
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके।
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियां हैं इसमें।
0: ओके।
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियां हैं।
0: अच्छा।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियां हैं।
0: ओके।
1: वहाँ के लोगों की कहानियां हैं।
0: ओके।
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: okay.
1: वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है, और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स इट इज फिक्शन एंड रियलिटी कंबाइंड।
0: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, आपने कहा कि उस वहां पे तरह तरह की कहानियां हैं, तो ये कहानियां जब आप वहां सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाया और फिर बाद में?
1: ये कहानियां मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
0: जी,
1: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
0: जी,
1: कुछ कहानियां मैंने तब लिखी जब मैं वहां से वापस आ गया
0: जी,
1: और कुछ कहानियां मैंने वहां पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला।
0: okay.
1: और मेरे लिए एज ए राइटर इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
0: कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, इसमें 17 कहानियां हैं, जैसे कहानी मुखबिर जो पहली कहानी है, मुखबिर जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानियां एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है।
0: ओके।
1: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है।
0: ओके। दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स, राइट?
1: या सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल,
0: रियल आल्सो,
1: बट मोस्टली इट इज हाइपोथेटिकल। मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग
0: जी,
1: जो मेरे साथी रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माई ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख दिए। सो मे नॉट बी रियल, बट समवेयर दे डू एग्जिस्ट।
0: स्पाई नेम्स कह लूं?
1: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए। कई असली नाम हैं, जैसे मेरे कोई साथी हैं उनके नाम पर, जो मेन किरदार है उनके नाम पर।
0: मेरा भी एक नाम है।
1: आपके नाम पर भी लग देंगे अगली किताब?
0: मेरा नाम रखा हुआ है।
1: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
0: फाल्कन वन।
1: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी फाल्कन वन आया था, जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था, तो मैंने कहा ये फाल्कन वन कहीं किसी खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है। लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी, तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा, आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं। लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फाल्कन, वो सच में काफी खतरनाक था।
0: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने, उनका नाम है टैनी।
1: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मजा आएगा।
0: मेरे सामने बैठे हैं टैनी।
1: हाँ, मुझे फौज में, लोग, फौज में एक रिवायत है
0: आपके भी व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था, टैनी स्पीकिंग।
1: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है निक नेम्स की। मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यश राज है तो यश बोल देंगे। तो यू नो, वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निक नेम्स, शायद हर पेशे में होता होगा लेकिन फौज में कुछ ज्यादा है और ज्यादा अपनापन है, तो मुझे फौज

0: में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब, कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है, तो दैट इज हाउ
1: एंड यू
0: टैनी
1: एंजॉय
0: केम.
1: इट, वी एंजॉय दीज नेम्स, इज
0: या
1: इट?
0: बिकॉज दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है
1: आदत
0: लोगों
1: बन
0: की.
1: जाती है, एक अपनापन भी होता
0: एक
1: होगा.
0: अपनापन तो है, काफी अपनापन है.
1: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं, जैसे टाइगर कॉलिंग बारह सिंगा, बारह सिंगा टू टाइगर, ये सारी चीजें चलती रहती हैं हमारे.
0: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
1: जी
0: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं,
1: ओके
0: तो टाइगर, लैम्ब, लायन, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते
1: ओके
0: हैं. सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली.
1: कॉल साइंस, यस,
0: तो यस, दिस इज ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस कर देते हैं उसको.
1: ग्लैमरस कर देते हैं. जी हाँ, मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मुनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में. द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर, तो वो आए थे. तो हम बताया वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में, जहां एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब, तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वॉज टॉम कैट.
0: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड.
1: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद,
0: हाँ, गुलाम हसन.
1: गुलाम हसन,
0: गुलाम
1: ओके
0: हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
1: जी
0: जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है,
1: जी
0: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है. ये वो कहानी है. उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है,
1: ओके
0: और वहाँ पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है,
1: ओके
0: कैप्टन अभिमन्यु, कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है. और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन. तो ये कहानी है. एक कहानी है मुजाहिद, जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज़ की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है, और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज़ है, और दूसरा कैप्टन समर है. कैप्टन समर इम्तियाज़ को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौयबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा. बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी. फिर एक कहानी है लव जिहाद,
1: लव
0: उसमें
1: जिहाद, ओके
0: लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है. तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं, और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है. तो आप पढ़ें कहानियाँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस.
1: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनी बडी,
0: या आई आई दैट्स व्हाट
1: ना,
0: एवरीबॉडी
1: कुछ
0: सेज,
1: होता है सर,
0: दैट्स व्हाट एवरीबॉडी
1: कुछ ना
0: सेज.
1: कुछ तो होता है सर. मेरे पास बहुत सारे ना एसएमएसेस आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ. जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. तेलंगाना से एमआर मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं.
0: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं.
1: जी विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं. संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, केवल एसएमएसएस, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए. नंबर है 9868107070, 9868107070. और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा, लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वील नॉट आस्क दैट. मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है, और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं. जय हिंद सर. सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और एनडीए के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज बताएं. सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: हाँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है,
1: जी
0: उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस्ट पेपर्स आते हैं.
1: जी
0: तो मुझे तो अभी अंदाज़ा नहीं है, एक्चुअली मैंने तो एनडीए

0: 25-30 साल पहले किया था,
1: एब्सोल्युटली
0: लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको NDA का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और NDA में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें SSB होता है। तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं, तो देन SSB इज एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक।
1: राइट देन, यहाँ पे यश शिंदे मुंबई से हमें को हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप, सुशील जी आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं, इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
0: और नहीं, ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे
1: यस
0: हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है,
1: बहुत सारे
0: और
1: और
0: हमारा
1: मैसेज।
0: जो
1: जी,
0: निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
1: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूंगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी एनडीए के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें, एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके खुद के दादा पापा और तीन भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं, यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का, एंड ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव, एंड ऑफ कोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारी जो प्रेमी इंस्टीट्यूशन है वहां के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
0: हाँ, मैं भारतीय सैन्य एकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था,
1: जी
0: और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं,
1: ओके
0: उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून, और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमजोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते,
1: ओके
0: उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल, यू योर सेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है, और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको, वी हैव सीन देयर इंटायर जर्नी, दे केम एज नोविसेज एंड नाउ दे आर कमांडिंग बटालियंस एंड डूइंग सो वेल। सो इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू इंटरेक्ट विद
1: तो
0: यंग।
1: आपका जो द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और टीचिंग देम और ट्रेनिंग देम इज एज टफ एज योर गुरुज वर, और इट्स गॉन टफर, और यू अंडरस्टैंड नहीं यार इसको?
0: देखिए, ये जो है डिबेट हमेशा रहती है।
1: रहती
0: हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मुश्किल वक्त झेला है, और हमारे बाद वाली, अब मैं पीढ़ी तो नहीं बोलूंगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ,
1: नहीं नहीं
0: लेकिन
1: सर, यू लुक
0: लेकिन
1: एब्सोल्युटली फिट,
0: या
1: फाइन,
0: सो
1: यंग।
0: लेकिन वी आर फ्रॉम द सेम जनरेशन, बट आई थिंक दिस इज, एवरी वन सेज कि वी हैव सीन टफर टाइम्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं।
1: ओके, आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड, जो मैं चला चुका हूँ।
0: हाँ, ये कजरारे गाना है, जब हम IMA में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स, वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात, तब ये नया नया गाना आया था। और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग।
1: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आप, ये गाना हम भी चलाते हैं और

0: ताजी उस समय की ताजी बात कुछ याद आ रहा है तो आप शेयर करिएगा हमारे साथ। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौलिया और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर।

संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी बैठे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कर की आईपीएस हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं, एंड ऑफकोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील नवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे, एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा, और उन्होंने कहा है इंशाअल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है, एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वील गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू ऑल्सो वेरी नॉटी जब आप अकेडमी में थे, कुछ आप

0: नहीं मिस्चिफ मिस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से, हमने भी किए, सबने किए शायद, लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए
0: करना
1: था,
0: चाहिए था।
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो सोल्जर्स हैं जो अफसर हैं कभी मुस्कुराते नहीं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं AIR मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारी सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्रसा नम्रसा दिल है।
1: हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं, इनसाइड द सॉफ्ट एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी है।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं जैसे आप वाकई की पूछ रहे थे
0: जी,
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे, उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी, ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी, तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई उजाला हुआ उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक DS थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए,
0: बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
0: है। पर हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया, तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देर वॉज नो इल विल, तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय,
1: यस
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको?
1: हाँ मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: राइट यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेस करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड दी इंसिडेंट्स एंड दी एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ तो पहली किताब है मुखबिर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते, ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।
0: राइट देन, राजकुमार पाल यूपी जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम, मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूं लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की वजह से सुरक्षित हैं, ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ मस्त और व्यस्त रखें, रामधारी अवाना। और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है वो एक मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर, कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
1: या श्योर।
0: ओके नाउ दिस इज द रियल टॉक सर, इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशन कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी।
1: हाँ आप अखबार में पढ़ते हैं और पब्लिसाइज भी होती है कई चीजें, और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं हमारे ऑफिसर्स हैं उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ नैरेटिव, तो काफी सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए।
0: मुझे ये बताइए अभी जैसे ईरान अमेरिका इजराइल को लेके जो भी वहां पे कॉम्बैट हो रहा है या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहां पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस यू नो कोई कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज हो रहा है, कौन सा

0: वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूजफुल है नहीं है. एम आई राइट टू मेंशन लाइक दैट?
1: यस, बिकॉज आर्मीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं कि सिर्फ हमारी सेना, बट वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन रिफाइन आवर टैक्टिक्स, वी कैन रिफाइन द वे वी यूज अवर वेपन्स. तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है.
0: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल से विलेन के पूछूंगा आपसे. 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा.
1: हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर.
0: ओके,
1: एंड जहां तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूंगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज द नेशंस विच फाइट ए वॉर. तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए.
0: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है. कुछ देर पहले आपने कहा कि हम हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं. बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री. हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह. तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है किसी के पास नहीं है.
1: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं. लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, ये जरूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें. तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है.
0: इज इट इजी टू प्रिपेयर द स्पाइस और यू नो पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए?
1: इट इज वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज चैलेंजिंग, इट इज डेंजरस, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.
0: एक टफ सवाल पूछ लूं सर?
1: पूछिए, आप टफ ही सवाल पूछ रहे हैं.
0: आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा. जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज आल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है
0: जी,
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है. सो यू यूज ऑल मीन्स एट योर डिस्पोजल.
0: राइट, एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है आपको, कोई भी प्यार व्यार नहीं हो सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है.
0: आप भी थे?
1: थे नहीं है लेकिन लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट.
0: देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव. ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है बाहों में चलेगा, इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है, अनामिका पिक्चर का, मूवी का.
0: कोई ना कोई तो रीजन होगा सर.
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये गाना.
0: थी सर?
1: हाँ थी, और वो गाती भी थी ये गाना. और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं.
0: हाँ,
1: लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, तो इसको प्लीज सुनवाइए
0: सर. वो जो लव स्टोरी थी वो

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का. व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज यू नो एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार.
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे.
0: ओके.
1: तो बस सुनी की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा.
0: सर आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते. मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आओ, चलाया था क्योंकि बहुत अच्छा लगता था. पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे डांस करते थे बस. वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए.

0: तो समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योर सेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार भारतीय सेना में भेजेगी वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत ही ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहां अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू एंड कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहां पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने अब्रॉड नौकरी की है, UN के साथ नौकरी की है, वहां भी अच्छा लगा। तो इट इज नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज द पीपल अराउंड यू, एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मजेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है।
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग अलग नेशंस के, डिड विद द US?
1: हाँ, हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, मैं UK गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में, इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
0: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
1: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें, एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, गोबर, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे चार लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
2: पहला फैसला बायोगैस से संबंधित है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम एक बनी है। और दूसरा असम में एक 4 लेन हाईवे का फैसला लिया गया है। टोटल 32,000 करोड़ रुपीस के ये दोनों प्रोजेक्ट और स्कीम्स मिला के है। हम सब जानते हैं कि भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है उसमें करीब 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है। इस 50% इम्पोर्ट को कैसे कम करें उसके लिए लगातार कई प्रयास चल रहे हैं।
1: संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुदान की मांग लोक लेखा समिति की 39वीं रिपोर्ट में पहचाने गए दो विशिष्ट मदों से संबंधित है। उधर लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन

0: टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े औषधि नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम औषधि नियम 1945 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दायर सभी आवेदनों पर लागू होगा। इस संशोधन के बाद आवेदक को एक निश्चित अवधि के लिए आगे आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। और खेलों में तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चाहिला और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्तिपरक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे मोना कुकरेजा से वार्ता। विषय रहेगा निशस्त्रीकरण एवं परमाणु अपप्रसार में शिक्षा की भूमिका। हेल्थ प्लस में जानिएगा प्रातःकाल के सरल व्यायाम के बारे में। शाम 6 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीलोक का। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना विषय पर होगी चर्चा। साथ ही सुनिएगा डॉक्टर लक्ष्मण सिंह से श्री कृष्ण की बातचीत। विषय रहेगा बरसात में पशु आहार और दुग्ध उत्पादन। कार्यक्रम मजदूर मंडल में हिरोशिमा दिवस विषय पर होगी चर्चा। साथ ही मेरा देश मेरी शान सुनिएगा। देश दुनिया घरेलू नुस्खे और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। समय 6:30। 7:10 पर डॉक्टर गिरिराज किशोर हमें बताएंगे कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अलीगढ़ जनपद की क्या है भूमिका। कार्यक्रम रहेगा विविधा। 7:31 का समय रहेगा कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 सुनेंगे संसद में आज की कार्यवाही पर आधारित कार्यक्रम संसद समीक्षा। पर होगी विधानमंडल समीक्षा और 8:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रात्रि 10 सुनेंगे संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में शुभ्रा तलेगांवकर पेश करेंगी ख्याल गायन। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास।

कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन। रविंद्र साठे और श्रीकांत परगांवकर के स्वर में सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनेंगे डॉक्टर ए के सिंह से वार्ता।

सुबह 7:10 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बच्चों में टीकाकरण कब और कैसे विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अर्चना राजपूत। सुबह 9:45 पर सुनिएगा डॉक्टर शशि तिवारी से लोक संगीत और 10:30 पर बेगम परवीन सुल्ताना से ख्याल गायन कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10। आइए आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

ये भक्ति गीत हमने लिया था फिल्म संत ज्ञानेश्वर से, जिसे लिखा था धर्मेश तिवारी ने, संगीत दिया था नंदू होनप ने और आवाज थी अनुराधा पोडवाल की। अगली प्रस्तुति फिल्म लोफर से है, जिसके रचनाकार आनंद बख्शी हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और आवाज दी है महेंद्र कपूर ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

फिल्म नीलकमल के इस भजन को सुरों से सजाया था रवि ने। रचना साहिर की थी और आवाज थी आशा भोसले की। आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या। अगला भक्ति गीत फिल्म जोधा अकबर से है, जिसे लिपिबद्ध किया है जावेद अख्तर ने। संगीत और आवाज है ए आर रहमान की।

अभी आपने सुना भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा पर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट रिशु वर्मा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे ही होंगे और इस मॉनसून से अपने एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ को भी अच्छा रख रहे होंगे। वैसे दोस्तों आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाएंगे, गीत संगीत का मज़ा लेंगे और बातें भी ढेर सारी करेंगे। वैसे दोस्तों बातों की बात हुई तो चलिए मैं आपको एक कल का किस्सा बताती हूँ। कल रात अचानक हमारे पूरे एरिया की लाइट चली गई और मैं वहीं अंधेरे में बैठी सोच रही थी कि आजकल बिजली के बिना ज़िंदगी कितनी मुश्किल लगती है। ना फ़ोन चार्ज हो पा रहा था, ना फ़ैन चल रहा था, ना ही एसी चल रहा था। एंड लिटरली फ्रेंड्स, बिना एसी के तो मुझे नींद ही नहीं आती। फिर क्या, बस कुछ देर अंधेरे में यूं ही बैठे बैठे मेरे मन में एक थॉट आया कि आखिर इंसान ने एनर्जी यानी ऊर्जा की तलाश में अब तक कितने अलग अलग तरीके खोज लिए हैं। तो यही सोचकर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया एंड गेस व्हाट, मुझे मिली एक अमेजिंग योजना जो कि हाँ वही है जो आप सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी PMSSY की। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी 31 जुलाई 2026 को इस स्कीम को अप्रूव किया है। नॉर्मली तो हम देखते ही हैं कि हमारे आसपास के घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगे हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी फील्ड्स सोलर पैनल से ढकी रहती हैं। बट इस स्कीम के बाद देयर इज अ बिग ट्विस्ट। दोस्तों इस योजना के तहत अब देश भर के तालाबों, लेक्स, डैम्स और वाटर बॉडीज की खाली सरफेस पर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। सोच के देखो दोस्तों, अब पानी की सरफेस भी बिजली बनाने का जरिया बनी जा रही है। वैसे साथियों, इस स्कीम का टोटल बजट रखा गया है करीब 5,070 करोड़ रुपए और इसका टारगेट है कि देश में करीब 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी डेवलप हो, साथ ही करीब 10,000 मेगावाट आर की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी तैयार की जाएगी जिससे पावर सप्लाई और भी ज़्यादा रिलायबल हो।

पाएगी। दोस्तों क्या आपको पता है इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इससे हमारी जमीन पर प्रेशर कम होगा। मतलब अभी तक बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए पड़ती थी जो कि मोस्टली फार्मिंग वाली होती थी, और ये स्कीम भारत के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत उन कंट्रीज में शामिल है जिनकी पर कैपिटा सोलर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, और अब ऐसी इनोवेटिव स्कीम के जरिए भारत अपने क्लाइमेट गोल्स की तरफ और तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों इस योजना के थ्रू हर साल करीब 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में कमी आएगी, यानी हमारा एनवायरनमेंट पहले से ज़्यादा साफ और सुरक्षित बनने जा रहा है। दोस्तों साथ ही युवाओं के लिए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगे। अनुमान है कि इस पूरी प्रोजेक्ट वैल्यू चेन में करीब 16 से 17 हजार लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। एक और खास बात, इसमें 2 घंटे की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी जोड़ी जाएगी। अब आसान भाषा में इसको समझें तो जब बिजली की ज़रूरत ज़्यादा होगी तब यही बैटरी सिस्टम पहले से जमा की हुई एनर्जी का यूज़ करके पावर सप्लाई को लगातार बनाए रखने में मदद करेगा। इससे ग्रिड ज़्यादा स्टेबल रहेगी और पीक डिमांड के समय भी बिजली की अवेलेबिलिटी बेहतर बनी रहेगी। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हमारा देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलप हो रहा है। वैसे दोस्तों बात करते करते मुझे एक और कंट्री याद आ गई जो एनर्जी और स्पेशली टेक्नोलॉजी के नाम पर टॉप कंट्रीज में से है, एंड दैट इज़ जापान। दोस्तों एक तरफ तो आज जापान दुनिया के सबसे एडवांस्ड और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स सिविक सेंस के मामलों में टॉप देशों में गिना जाता है, बट दोस्तों इसी कंट्री ने हिस्ट्री में एक ऐसा दिन भी देखा है जब एनर्जी की ताकत का यूज़ डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ था, और उसी दिन की वजह से आज भी दोस्तों जापान पूरी दुनिया को पीस का मैसेज देता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि 6 अगस्त का दिन जापान की हिस्ट्री में किस बड़ी इवेंट से जुड़ा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को वेपन्स की एक बिल्कुल अलग और स्कैरी ताकत दिखाई थी? वैसे तो आप में से मोस्टली लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, बट इफ बाय चांस आप गैस नहीं कर पाए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहना है हमारे साथ क्योंकि आगे कार्यक्रम में हम इस बारे में बात करेंगे ही। उससे पहले चलिए दोस्तों सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अभी चर्चा में हम बात कर रहे थे क्लीन एनर्जी और एक बेहतर फ्यूचर की, और हमने बात की कि कैसे सूरज की पावर अब हमारे तालाबों से बिजली पैदा कर रही है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि यही सूरज की रोशनी सिर्फ बिजली ही नहीं देती, बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए दोस्तों, आज क्वेस्ट वर्ल्ड सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं सर्कैडियन रिदम की। तो दोस्तों, सर्कैडियन रिदम के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, सर्कैडियन रिदम असल में हमारे शरीर की एक इंटरनल बॉडी क्लॉक है जो लगभग 24 घंटे के साइकिल में काम करती है। अब ये क्लॉक हमें बताती है कि कब सोना है, कब जागना है, कब भूख लगेगी और कब हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक या टायर्ड फील करेगी। दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमारी आँखों से सीधा कनेक्टेड होता है। जब सुबह सनलाइट हमारी आँखों में पड़ती है ना, तो ये पार्ट ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब जागने का टाइम है, और बॉडी में कोर्टिसोल जैसे

0: हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और जैसे जैसे शाम होती है, अंधेरा बढ़ता है, वैसे वैसे ब्रेन मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिससे नींद आती है। दोस्तों, जब मॉडर्न साइंस ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये रिदम सिर्फ नींद तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, इम्यून सिस्टम पर भी असर डालती हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी बॉडी क्लॉक को रिस्पेक्ट कीजिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर जागिए, क्योंकि यही आपकी असल हेल्थ का राज है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे चर्चा के दौरान पूछा था। तो बात हो रही थी 6 अगस्त 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। दोस्तों, यही रीज़न है आज भी दुनिया भर में डिसआर्ममेंट और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जैसे सीरियस टॉपिक्स पर बात होती है। इसी बारे में और डिटेल में हम जानेंगे वार्ताकार मोना कुकरेजा से, वार्ता निशस्त्रीकरण एवं परमाणु अप्रसार में शिक्षा की भूमिका।
1: आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां एक तरफ विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसी तकनीकी प्रगति ने विनाश के सबसे भयानक हथियार भी उत्पन्न किए हैं। परमाणु हथियार सिर्फ एक राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के अस्तित्व का प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि निशस्त्रीकरण का वास्तविक अर्थ क्या है। निशस्त्रीकरण का मतलब केवल हथियारों को हटा देना या नष्ट करना नहीं होता, बल्कि उस सोच का परिवर्तन होता है जो शक्ति को हिंसा से जोड़कर देखती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अंतिम लक्ष्य है प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत संपूर्ण और सामान्य निशस्त्रीकरण। तो इसी में परमाणु अप्रसार की बात करते हैं। परमाणु अप्रसार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि परमाणु हथियारों का विस्तार ना हो, और जो राष्ट्र पहले से इन हथियारों के मालिक हैं, वे उनका जिम्मेदारी के साथ नियंत्रण करें। इसका मूल उद्देश्य युद्ध को रोकना और भविष्य की पीढ़ियों को परमाणु विनाश से बचाना है। साथियों, यहीं से शुरू होती है शिक्षा की भूमिका। आइए अब हम इस वार्ता के केंद्रीय बिंदु पर आते हैं, शिक्षा। निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में शिक्षा सिर्फ जानकारी देने का काम नहीं करती, बल्कि व्यक्ति को जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय वैश्विक नागरिक बनाती है। इसीलिए आमतौर पर इसे दो रूपों में देखा जाता है, निशस्त्रीकरण पर शिक्षा और निशस्त्रीकरण के लिए शिक्षा। तो आइए अब हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र इस शिक्षा को कैसे देखता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपने डिसआर्ममेंट एजेंडा में स्पष्ट रूप से कहा कि निशस्त्रीकरण शिक्षा एक कल्चर ऑफ पीस का निर्माण में मदद करती है। ये शिक्षा अहिंसा को बढ़ावा देती है, संघर्ष समाधान सिखाती है, सतत विकास को संभव बनाती है। इसी के साथ साथ वे लैंगिक समानता और मानव अधिकारों को मजबूत करती है और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सहिष्णुता विकसित करती है। क्यों ना थोड़ा पीछे जाकर इस शिक्षा के इतिहास को समझें। 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले विशेष सत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि निशस्त्रीकरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कहा गया कि सभी स्तरों पर निशस्त्रीकरण और शांति अध्ययन के लिए शिक्षा कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। 1980 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिसआर्ममेंट एजुकेशन का आयोजन किया गया, जिसमें शोध और शिक्षा दोनों पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में ये स्पष्ट किया गया कि निशस्त्रीकरण केवल राजनीतिक या सैन्य मुद्दा नहीं है, बल्कि शांति की संस्कृति का आधार है। इसके बाद 1982 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डिसआर्ममेंट कैंपेन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के प्रति जागरूक बनाना था। संक्षेप में कहें तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व निशस्त्रीकरण अभियान वैश्विक शांति और मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पर ध्यान देते हैं। 2002 में संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण और अप्रसार शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन

0: पेश किया गया। इस स्टडी में स्पष्ट कहा गया कि शिक्षा शांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु कम प्रयुक्त उपकरण है। इस अध्ययन ने शिक्षा को पुनर्जीवित करने की बात की। 34 कॉन्क्रीट रिकमेंडेशंस थी और साथ ही सरकारों, यूएन, एनजीओस, धार्मिक और स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदारियां सौंपी। आज भी महासचिव द्वारा इस पर बेनेट रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, जिसमें दुनिया भर की शिक्षा कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। इन रिपोर्ट्स के द्वारा उन्होंने सुझाव दिया कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निशस्त्रीकरण और शांति शिक्षा शामिल की जानी चाहिए। इसी के साथ आइए अब हम यूनोडा की भूमिका पर भी बात करें। यूनोडा संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसने 2002 में अपनी पहली डिसआर्ममेंट एजुकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च करी थी। इसका मूल मंत्र है इन्फॉर्म, एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर। ये स्ट्रेटजी ये मानती है कि बिना पार्टनरशिप और नेटवर्क के निशस्त्रीकरण शिक्षा का प्रभाव सीमित रह जाता है। शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञान नहीं देती है, बल्कि उसे जागरूक, जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बनाती है। निशस्त्रीकरण की शिक्षा के संदर्भ में ये 3 स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर है जानकारी का, जहां व्यक्ति परमाणु हथियारों के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सानिध्यों को समझता है। दूसरा स्तर है सोच और चेतना का, जहां वह समझता है कि युद्ध सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता का विनाश है। और तीसरा स्तर है क्रिया और जिम्मेदारी का, जहां एक शिक्षित नागरिक शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता है। अंततः शिक्षा इस संदर्भ में व्यक्ति को शांति का समर्थक और परिवर्तन का वाहक बनाता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में अहिंसा, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों को फैलाकर विश्व को अधिक सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देता है। और यही बात रही आज के युवा की, तो साथियों हम सब जानते हैं कि आज का युवा केवल भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान का निर्णयकर्ता भी है। अगर युवाओं को सही दिशा में शिक्षा मिले तो वे हथियारों की होड़ नहीं बल्कि शांति के नेतृत्व का मार्ग चुनेंगे। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार सिर्फ नीतियों से नहीं, शिक्षा से संभव है। जब शिक्षा में जानकारी के साथ नैतिकता जुड़ेगी, जब शिक्षा से पहले मानवता आएगी और जब युद्ध के बजाय शांति को चुनना सिखाया जाएगा, तभी एक सुरक्षित और स्थायी विश्व का निर्माण हो सकेगा।
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी वार्ता निशस्त्रीकरण एवं परमाणु अप्रसार में शिक्षा की भूमिका, वार्ताकार मोना कुकरेजा से, और ये समझा कि जब सोच पॉजिटिव होती है तो समाज और देश आगे बढ़ता है। साथियों, एक बात आपने शायद फील की होगी कि जैसे किसी देश की मजबूती के लिए शांति जरूरी है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन की मजबूती के लिए अच्छी सेहत जरूरी है। लेकिन आज की फास्ट लाइफ में अक्सर हम अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखते हैं। देर रात तक मोबाइल स्क्रोलिंग करना, सुबह अलार्म को बार बार स्नूज करना, जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल जाना, ये सब धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें पूरे दिन में अपने शरीर को कितना समय देना चाहिए? दोस्तों, आंसर है सिर्फ 10 से 15 मिनट। बस जरूरत होती है सही आदत की। इसीलिए आज हेल्थ प्लस में हम बात कर रहे हैं प्रातः काल के सरल व्यायाम की। तो ये व्यायाम कौन से हैं? तो देखो, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को थोड़ा समय दो। हल्की सी स्ट्रेचिंग से शुरुआत कीजिए। गर्दन, कंधों और कमर की आसान मूवमेंट शरीर की जकड़न को कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। इसके बाद कुछ मिनट गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस, यानी डीप ब्रीदिंग, मन को शांत करता है और पूरे शरीर में नई ऊर्जा भर देता है। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ कुछ देर मॉर्निंग वॉक कीजिए। तेज कदमों से सिर्फ 15 या 20 मिनट चलना भी दिल को स्वस्थ रखने, स्ट्रेस कम करने और पूरे दिन एक्टिव महसूस करने में हेल्प करता है। और अगर बाहर जाना पॉसिबल ना हो तो घर की छत या आंगन में भी थोड़ी देर टहलना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना या हैवी वर्कआउट करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे व्यायाम भी उतने ही असरदार होते हैं जितना हम हैवी वर्कआउट से कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत क्या है, सिर्फ कंसिस्टेंसी।

क्योंकि एक दिन का 1 घंटा वर्कआउट करने से ज़्यादा फ़ायदा रोज़ के 15 मिनट की अच्छी आदत देती है दोस्तों। सुबह का समय सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी नई शुरुआत देता है। जब दिन की शुरुआत फ्रेश एयर, हल्की धूप और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी के साथ होती है ना, तो हमारा फोकस बेहतर रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और पूरे दिन काम करने का उत्साह भी बना रहता है। तो दोस्तों, कल सुबह जब अलार्म बजे तो उसे बार बार स्नूज करने के बजाय अपने दिन की शुरुआत अपने लिए करना, यानी अपना शरीर ही नहीं आपका मन भी आपको इसके लिए थैंक्स करेगा। क्योंकि अच्छी सेहत कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो हर सुबह एक छोटे से कदम से शुरू होते हैं। और दोस्तों, रिफ्रेशमेंट सुबह उठने से तो मिलती ही है, साथ ही मिलती है अच्छा म्यूजिक सुनने से। तो चलो फिर, देरी किस बात की, सुनते हैं एक रिफ्रेशिंग सॉन्ग।

दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। हर दिन अपने देश के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप ज़रूर लीजिए। चाहे इलेक्ट्रिसिटी बचाना हो, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना हो, अपने आसपास क्लिनलीनेस बनाए रखना हो, या सिर्फ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना हो। इसीलिए दोस्तों, अच्छा सिटीज़न हम बन पाएंगे जब हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, जिससे हम भी अपने भारत को जल्द ही डेवलप नेशन बोल पाएँ। अब इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मुझे, यानी अपनी होस्ट ऋषु वर्मा

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

कार्यक्रम ग्राम्य लोक सुनने वाले सभी भैया बहनों को मुक्ता सिकरवार की राम राम। साथियों, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, सच भी यही है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। लेकिन जब परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है तो सबसे बड़ी चिंता इलाज के खर्च की होती है। कई परिवार अपने जीवन भर की कमाई, पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं तो कई लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। वास्तव में साथियों, यह योजना जरूरतमंद परिवारों को बेहतर और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक शुरुआत है। साथियों, आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के उद्देश्य आखिर क्या हैं। इस योजना का उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र परिवार केवल पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ के बारे में चर्चा करने से पहले आइए बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्र परिवारों को मिलता है। जिन परिवारों का नाम पात्रता सूची में शामिल है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये भी आवश्यक है साथियों कि लाभार्थी अपने दस्तावेज तैयार रखें और योजना से संबंधित जानकारी अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, जन सेवा केंद्र या सूचीबद्ध अस्पताल से प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। इस योजना के अंतर्गत अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल किया गया है। हृदय रोग, किडनी की बीमारी, कैंसर, दुर्घटना में गंभीर चोट, प्रसूति संबंधी जटिलताएं तथा अन्य कई प्रकार के उपचार निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ साथ अस्पताल में भर्ती होने के बाद आवश्यक जांच, ऑपरेशन, दवाइयां और उपचार का खर्च योजना के प्रावधानों के अनुसार वहन किया जाता है। यही कारण है कि ये योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। साथियों, किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो और वो इसका लाभ ले सकें। इसलिए जहाँ तक हो सके इस योजना का प्रचार प्रसार आवश्यक है। अभी हाल ही में हमारे गांव में किसान परिवार के मुखिया को अचानक हृदय संबंधी परेशानी हुई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। परिवार चिंतित हो गया कि किस प्रकार इलाज कराए, लेकिन

ही पता लगा कि वे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र हैं, तब सूचीबद्ध अस्पताल में उनका कैशलेस इलाज हो जाता है। तो उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल हुआ और परिवार आर्थिक संकट से बच गया। तो ये तो मात्र एक उदाहरण था जो मैंने आपको इस योजना के महत्व को समझाने के लिए बताया। किसान भाइयों, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एक ऐसी स्वास्थ्य योजना है जो आयुष्मान भारत योजना से छूटे हुए गरीब और पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान करती है। योजना का लाभ उन वंचित परिवारों को मिलता है जो केंद्र की आयुष्मान सूची में नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अपना मोबाइल नंबर। ये सभी जानकारी आपको देनी होगी। लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है। इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड प्रदान किए जाते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र यानी CSC सेंटर में जाना होगा और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-4444 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यही कह सकते हैं किसान भाइयों कि स्वास्थ्य से बढ़कर के तो कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर के कोई वरदान नहीं है। इसलिए जो स्वस्थ है वही सुखी है और इस बात को हर सदस्य को, हर परिवार को पहचान लेना चाहिए। साथियों, सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे। इसलिए आप स्वयं जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। आइए हम सब मिलकर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। साथियों, ये तो हमने बात की, चर्चा की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की, और आइए अब समय है लोकगीत सुनने का। तो सुनते हैं ये मधुर लोकगीत दीपाली गौर के स्वर में।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ग्राम्य लोक में। किसान भाइयों, स्वस्थ रहने के लिए जैसे हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें पशुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दूध पाने के लिए पशु का निरोग होना भी आवश्यक है। इसके लिए पशु को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना चाहिए। पशुशाला हवादार होनी चाहिए और उसकी नियमित सफाई भी होती रहनी चाहिए। साथियों, पशु हमारे पर्यावरण का प्रमुख अंग है, इसलिए उनकी उचित देखभाल आवश्यक है। उनको संतुलित आहार देना भी जरूरी है। तो इस बारे में और विस्तार से उपयोगी जानकारी देने के लिए आज हम आपके लिए एक भेंट वार्ता लेकर आए हैं, बरसात में पशु आहार एवं दुग्ध उत्पादन। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह से बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण।
4: किसान भाइयों, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में जो हमारे पालतू पशु होते हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरियां और भी जो भी हमारे पशु हैं, उनको हम क्या संतुलित आहार दें जिससे कि अधिक दूध हम उनसे ले सकें, और इसका कैसे चारे का प्रबंधन हो सकता है, इस पर बात करने के लिए, हमें बताने के लिए

0: प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे देश में बहुत शुरू से ही पशुधन का खेती बाड़ी में बहुत महत्व है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और क्षेत्रफल के आधार पर हमारा भारतवर्ष पूरे दुनिया में केवल 2% भाग पर है, लेकिन पालतू पशुओं की संख्या 25% से भी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है कि पशुओं से मिलने वाले जो हमें प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिल्क है, दूध है, दही है, पनीर है और जो दूसरे पदार्थ हैं, एग है, उसकी मात्रा लगभग जो है 25% है। इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रकृति में केवल पशुओं से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं बायो, जिसको हम बोलते हैं बायो प्रोटीन। बायो प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो केवल पशुओं के दूध से ही हमें मिल सकता है और प्रकृति में और कहीं जगह अवेलेबल नहीं है।
0: ज्यादातर लोगों के सामने पता नहीं होता कि संतुलित आहार होता क्या है, जो भी मिला घास कर भी वो खिला दी।
1: ऐसा है, हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको ये मालूम नहीं है संतुलित आहार क्या होता है
0: जी।
1: संतुलित आहार में दो चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं, एक होता है जीवन निर्वाह के लिए राशन और एक दूसरा राशन होता है प्रोडक्शन के लिए। कि जैसे पशु का दिनचर्या है, वो उठता है, बैठता है, खाता है, सोता है, चरने के लिए बाहर जाता है या अपने दैनिक कार्य जो करता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन है, उसका एक्सक्रीशन है, उसमें उसकी एनर्जी वेस्ट होती है और इसलिए उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए पशु को खाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ें उसके जीवन निर्वाह के लिए होती हैं। इसके अतिरिक्त जो पशु गाभिन है या मिल्क में है, या हम मुर्गियों की बात करें तो एग प्रोडक्शन में है या मीट प्रोडक्शन में है, तो ऐसे पशुओं को अलग से आवश्यकता की आवश्यकता होती है, जिसको हम उत्पादन की आवश्यकता बोलते हैं। तो जब हम जीवन निर्वाह की आवश्यकता और उत्पादन की आवश्यकता दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं और दोनों को एक साथ जोड़ करके और हम कैलकुलेशन करते हैं कि किस प्रकार से पशुओं को चारा और दाना दिया जाता है और उस मात्रा को हम संतुलित आहार कहते हैं। 24 घंटे में वो मात्रा जो पशुओं की दोनों आवश्यकताओं को पूरा करती है संतुलित आहार कहलाती है। उसके जीवन निर्वाह के लिए मैं पुनः बताना चाहूँगा, पशुओं की दिनचर्या के लिए उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, वो एक अलग एनर्जी है और प्रोडक्शन की एनर्जी उसको अलग से चाहिए, जो पशु का एक अलग से जो है उसका मेंटेन करना होता है। दोनों को हम जोड़ देते हैं, इस प्रकार से संतुलित आहार की हम गणना करते हैं।
0: डॉक्टर साहब अब ये तो रही आपने बात बताई कि कैसे उन्हें भोजन देना है, अब संतुलित आहार देने के लिए पशुओं को कितनी प्रकार की आवश्यकता होती है, जो आपने बताया कि जीवन निर्वाह, उत्पादन, राशन। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि जो हम दाना देते हैं पशुओं को, फीड देते हैं, वो कैसे निर्धारित करते हैं, कितना देना चाहिए?
1: देखिए, दाने को निर्धारित करने के लिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पशुओं की जीवन निर्वाह की जो आवश्यकता है वो सभी प्रकार के पशुओं में कॉमन होती है
0: जी,
1: सामान्य होती है, तो हमें 1 से 1.5 किलो दाना सभी प्रकार के पशुओं को देना चाहिए रोज, चाहे वो पशु दूध दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए 1 से 1.5 किलो दाना देना चाहिए।
0: तभी स्वस्थ रह पाएगा,
1: तभी वो स्वस्थ रह पाएगा। लेकिन चूंकि आज हम बरसात के दिनों की बात कर रहे हैं, बरसात के दिनों में हम 1 से 1.5 किलो दाने को कम करके हम हरे चारे की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और इस 1 से 1.5 किलो जो दाना हम देते हैं उस दाने को हम कम करके हरे चारे की मात्रा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हरे चारे में बरसात के दिनों में विटामिन ए की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे पशुओं की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रोडक्शन के लिए है, पशु के उत्पादन के लिए दाना है वो, और गाय और भैंस में वो अलग अलग से निर्धारित करते हैं। यदि हमारी गाय 2.5 किलो दूध देती है एक दिन में, तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना हमें गाय को देना चाहिए, प्लस 1 से 1.5 किलो जीवन निर्वाह के लिए जो 2.5 किलो दूध दे रही है उसको कम से कम 2 किलो दाना हमें देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भैंस में हम 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जीवन निर्वाह की आवश्यकता और उत्पादन की आवश्यकता के लिए दानों का निर्धारण इस प्रकार से करना चाहिए, जिससे पशु का जो दूध का उत्पादन है वो सामान्य बना रहेगा।

0: अच्छा डॉक्टर साहब, किसान भाई ये सोचते हैं कि जो जानवर गाय भैंस दूध दे रहे हैं तो उनका दूध का उत्पादन और बढ़ जाए, तो इस पर ये करने के लिए, दूध अधिक लेने के लिए क्या ध्यान देने की जरूरत है?
1: ऐसा है, जो भी हम चारा और दाना सप्लाई करते हैं एनिमल को देते हैं,
0: जी
1: कि चारे और दाने में मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है शुष्क पदार्थ, जिसको
0: जी
1: हम ड्राई मैटर बोलते हैं। एक होता है डीसीपी, जिसको हम डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, या हम देसी भाषा में कुल प्रोटीन की मात्रा बोलें।
0: जी
1: एक होता है टीडीएन, जिसको हम टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या सिंपल भाषा में कुल पोषक तत्व।
0: जी
1: तो हमें दानों से शुष्क पदार्थ, प्रोटीन की मात्रा और पोषक तत्व कितने कितने प्राप्त होते हैं, ये हमें देखना होता है। तो पोषक हम क्या करते हैं कि ड्राई मैटर की जो मात्रा है, यानी कि शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ का मतलब है जो हमारा चारा और दाना है, उसमें यदि हम मॉइस्चर परसेंटेज को निकाल दें, नमी की मात्रा को
0: जी
1: निकाल दें, तो हमारा शुष्क पदार्थ बचता है। तो शुष्क पदार्थ हमेशा हमें पशुओं को उसके शारीरिक भार के आधार पर देना चाहिए। जैसे गौ पशुओं में 2.5 किलो हमें शुष्क पदार्थ देना चाहिए,
0: जी
1: इसी प्रकार से भैंस में 3 किलो शुष्क पदार्थ हमें प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर देना चाहिए। जब हम दाना देते हैं तो हम भैंस में 2.5 किलो दूध पर 1 किलो देते हैं
0: जी
1: दाना, गाय में हम 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। लेकिन
0: अच्छा
1: यहाँ पर जब हम शुष्क पदार्थ की मात्रा निर्धारित करते हैं, तो गाय पर 100 किलोग्राम पर 2.5 और भैंस पर 3 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर 3 किलोग्राम देते
0: जी
1: हैं।
0: अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, जैसे जो मैंने पीछे कहा कि कैसे अधिक दूध पैदा हो।
1: अधिक दूध उत्पादन के बहुत सारे ऐसे कारण हैं
0: जी
1: जिसको हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें नस्ल ही है,
0: जी
1: हमें एक अच्छे प्रकार के नस्ल के पशु पालने चाहिए। जब अच्छे प्रकार के नस्ल के पशु हमारे पास होंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है।
0: जी
1: जैसे पशु जो हमारे हैं या दूध देने वाले पशु जो हैं, उनके पशु की आयु, आयु एक बहुत बड़ा कारक है। जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती चली जाती है, ब्यांत की संख्या बढ़ती चली जाती है, पशुओं का दूध का उत्पादन कम होता चला जाता है। इसलिए हमें 5 से 7 ब्यांत तक ही पशुओं को रखना चाहिए, उसके बाद उसकी छंटनी कर देनी चाहिए। दूसरा, जो किसान भाइयों को मालूम नहीं है, दोहन के बीच का अंतर, जब हम दूध निकालते हैं, एक्चुअली दूध की जो प्रक्रिया है बनने की, दूध ब्लड से बनता है, और पशुओं में, गाय भैंस में एक नस होती है जिसको हम जुगलर वेन बोलते हैं। जुगलर वेन बॉडी से आयन में आती है, और आयन में वो मिल्क का सिंथेसिस होता है, ब्लड कन्वर्ट होता है दूध में, और जब ब्लड दूध में कन्वर्ट होता है, तो उसको दूध को ठहरने के लिए जगह चाहिए। वो चारों थनों के ऊपर जो एक सिस्टम होता है, जिसको हम, उसमें एल्युलाई सेल होती है, जिसको हम आयन बोलते हैं, उसमें
0: जी
1: रहता है। उसको हम जितने ज़्यादा जल्दी जल्दी खाली करेंगे, उतना ज़्यादा दूध बनेगा। यदि ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, मान लीजिए एक पशु 15 से 20 लीटर तक दूध देता है एक दिन में,
0: जी
1: तो हमें उसका 3 बार दूध निकालना चाहिए, दूध की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ी हुई मिलेगी। 3 बार निकालना चाहिए, उसमें दूध की मात्रा बढ़ेगी
0: जी
1: और पशुओं को कोई नुकसान नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है।
0: जी
1: ऐसा है, पशुओं का जो शुष्क काल होता है, जिस समय पशु दूध देना बंद कर देता है, देखिए जो हमारे गोवंश हैं या भैंस हैं, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन हमारे देश में भैंस देती हैं।
0: जी
1: भैंस का जो योगदान है वो लगभग 56% है, और गाय का योगदान केवल 43% है,
0: जी
1: जबकि भैंसों की संख्या 200 मिलियन के आसपास है और गायों की संख्या 100 मिलियन है, लेकिन भैंसों के दूध का उत्पादन आधे से भी ज़्यादा है। इसलिए जो है, शुष्क काल को कम करना चाहिए। बहुत सारी गाय भैंस ऐसी होती हैं जो एक बार दूध में आई और प्रेगनेंसी के बाद, गाभिन होने के बाद, वो बहुत दिन तक दूध देना बंद कर देती हैं। तो हमें इस प्रकार के पशु पालने चाहिए जिनकी प्रेगनेंसी भी मेंटेन हो और दूध भी देती रहें, और दूध केवल 2 या 3 महीने के लिए उनका शुष्क काल हो, जिससे जो है आसानी से हम दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
0: जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जब जो गाभिन जानवर हैं गाय भैंस, उनको किस तरह का खाना दिया जाए या क्या उनकी विशेष देखभाल करनी
1: जी,
0: चाहिए?
1: दूध के उत्पादन में भी होता है और गाभिन भी होता है। ऐसे में जो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे खाद्य मानक वैज्ञानिकों ने उपलब्ध कराए हैं। खाद्य मानक एक ऐसे मानक होते हैं जिसमें पशुओं के शरीर

0: भार के आधार पर हम ये पता कर लेते हैं कि इस गाय या भैंस का इतना शरीर भार है और इस शरीर भार पर इसको इतना प्रोटीन और इतना इसको न्यूट्रिशन यानी कि कुल पोषक तत्व चाहिए।
1: जी
0: तो उस सारणी में देख करके हम पशुओं का ये पता लगा सकते हैं कि इसको कितनी प्रोटीन और कितना जो है कुल पोषक तत्व देना चाहिए, और उसको एक कैलकुलेशन होती है किस चारे और दाने में कितना प्रतिशत प्रोटीन और कुल पोषक तत्व होता है,
1: जी
0: उसी हिसाब से उसको गणना करके उसको जो है बड़ी आसानी से दिया जा सकता है, पता लगा
1: अच्छा
0: सकते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: साहब, ये बताएं कि जैसे आजकल बारिश के मौसम में हरा चारा खूब मिल जाता है, तो क्या हरे चारे के साथ साथ में दाना भी हम ज्यादा दें जो ज्यादा दूध मिल सके?
0: हमारा जो पशुपालक है उसके पास धन का बहुत अभाव होता है और दाना बहुत महंगा है, इसलिए दाने की मात्रा को कम करके जो पशुओं का जीवन निर्वाह के लिए दिया गया दाना होता है उसको हम करके हरे चारे की मात्रा बढ़ा देते हैं, और जब हम हरे चारे की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसको हम वैज्ञानिक भाषा में आदर्श आहार भी कहते हैं
1: जी
0: कि हमने अपना जो हमारा अचीवमेंट था वो भी हमने पूरा कर लिया, पशुओं को जो जितना उत्पादन देना था उत्पादन भी दिया और जो हमारा इनपुट है वो भी कम लगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जहां पर गौशाला में जानवर बांधे जाते हैं तो वहां की साफ सफाई या वहां की देखरेख का भी क्या दूध पर असर पड़ता है?
0: बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर पशुओं की सफाई गौशाला होती है वहाँ पर पशुओं की सफाई बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: और बरसात के दिनों में किसी भी प्रकार की कोई बिछावन उसमें नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। सुबह और शाम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का घोल,
1: यानी जैसे
0: उस
1: लाल दवा
0: सफाई में
1: कहते
0: जरूर
1: हैं,
0: लाल दवा जिसको बोलते हैं
1: जी
0: उसका घोल जरूर छिड़कना चाहिए ताकि पशु इन्फेक्शन से बच
1: डॉक्टर साहब, ये
0: सकें।
1: जरा दोबारा बता दें कि लाल दवा कितनी किस मात्रा में घोली जानी चाहिए?
0: लाल दवा जो है हमें इस मात्रा में घोलनी चाहिए, लगभग 2% का घोल हमें बनाना चाहिए।
1: जी
0: एक हम सिंपल बाल्टी ले सकते हैं और उसमें दो ढक्कन आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट डाल लें और उसको जो है आप यूज कर सकते
1: यानी
0: हैं,
1: जहां जानवर बनते हैं वहां उसका छिड़काव कर
0: वहाँ
1: दें।
0: उसका छिड़काव करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बरसात के दिनों में पशु में बीमारियां हो जाती हैं,
0: जी,
1: तो बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें?
0: देखिए पशुओं में बहुत सारी बीमारियां बरसात के दिनों में हो जाती हैं, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है खुरपका मुंहपका जिसको
1: जी
0: फूट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं,
1: जी
0: और जिसमें पशु के मुंह, खुर, थन और उसके अयन जिसमें दूध रहता है
1: जी
0: उसमें छाले हो जाते हैं। तो हमें जो है वर्ष भर में 3 बार कोल्ड सीजन में, गर्मी में और बरसात में इसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और यदि हम इसका वैक्सीनेशन नहीं कराते और ज़्यादा संख्या में पशु हैं तो ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो पशुओं में लग जाती है, इसलिए हमें वैक्सीनेशन जुलाई के महीने में ज़रूर करा लेना
1: मतलब
0: चाहिए।
1: एक पशु से दूसरे में ना फैले, इसलिए जरूरी है कि इसका
0: जी
1: टीकाकरण जरूरी है।
0: जरूरी है, और जैसे रेंडर पेस्ट है, रेंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशु को बुखार बना रहता है, खूनी दस्त हो जाते हैं और उसके जीभ के नीचे छाले आ जाते हैं, मुंह नाक से पानी बहने लगता है।
1: जी
0: तो रेंडर पेस्ट का कोई एज सच कोई वैक्सीनेशन तो हम नहीं करा सकते, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन हाँ इसको इराडिकेशन जिसको बोलते हैं
1: जी
0: संग्रोधन, पशु एक पशु को दूसरे पशु से अलग करके हम इस बीमारी पर काफ़ी हद तक जो है
1: जी
0: नियंत्रण पा सकते हैं।
1: जी हाँ
0: जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
1: बिल्कुल
0: कि बचाव उपचार से श्रेष्ठ है, इसलिए हमें बचाव कर लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से थनैला रोग जो बहुत हाइल्डर हैं, ज़्यादा दूध देने वाले एनिमल हैं, उनको थनैला हो जाता है, उनके थन सूज जाते हैं। और मैं एक बहुत ही एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा,
1: जी
0: जो हमारे पशुओं के चार थन होते हैं चारों थनों में अलग अलग दूध बनता है। मान लीजिए एक थन कहीं से खराब हो गया
1: जी
0: और एक एक थन की मृत्यु हो गई तो उस थन का दूध दूसरे थन में नहीं आएगा, इसलिए हमें थनैला रोग से स्पेशली पशुओं को बिल्कुल बचाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसान भाइयों को पता होना चाहिए।
1: प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जी, आपने विस्तार से बताया और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे किसान भाई इससे बहुत लाभान्वित होंगे। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब की बताई बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे और दूध पैदा कर सकें, अच्छा दूध पैदा कर सकें, जानवर स्वस्थ रहें, ये हम आप सब चाहते हैं। तो धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद सर।
2: अभी आपने ये महत्वपूर्ण भेंटवार्ता सुनी, बरसात में पशु आहार एवं दुग्ध उत्पादन। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह से बातचीत कर रहे थे श्री कृष्ण। हमें उम्मीद है कि आपने इस भेंटवार्ता को ध्यान से सुना होगा।

और आप इसका अवश्य लाभ लेंगे। अब समय है मंडी भाव की जानकारी का। गेहूं 2700 रुपये से 2958 रुपये प्रति कुंतल, चावल 6553 रुपये से 6570 रुपये प्रति कुंतल, साबुत चना 6550 रुपये से 8750 रुपये प्रति कुंतल, मसूर दाल 8074 रुपये से 8601 रुपये प्रति कुंतल, उड़द दाल 9450 रुपये से 9605 रुपये प्रति कुंतल, मक्का 1800 रुपये से 2000 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा 1900 रुपये से 2000 रुपये प्रति कुंतल और जौ 2475 रुपये से 2500 रुपये प्रति कुंतल। और अब आपको मौसम की जानकारी दे दें। आसमान में बादल छाए रहे, कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हुई। मौसम में ठंडक का भी एहसास बना रहा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और साथियों, इसी के साथ अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अनुमति दीजिए आप सभी को मुक्ता सिकरवार की राम राम।

हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

आकाशवाणी के मजदूर मंडल कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी मेहनतकश श्रमिक भाई बहनों का। आप सभी को आपकी रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती का नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में पूरे उत्साह के साथ जुटे होंगे। साथियों, आपका परिश्रम ही हमारे देश की असली ताकत है। खेत हो, कारखाना हो, निर्माण स्थल हो या कोई भी कार्यस्थल, हर जगह आपकी मेहनत से ही देश आगे बढ़ता है। और इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारियाँ, सरकारी योजनाएं, प्रेरणा, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा और सुझाव और देश दुनिया की खबरें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा श्रमिक वर्ग भी जागरूक हो और बाकी वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, खुद को कभी कहीं किसी से कम ना आके। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दिवस की जिसे याद करके आज भी पूरी दुनिया की आंखें नम हो जाती हैं। साथियों, आज के दिन यानी 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा शहर के लोगों की दिनचर्या समान थी। कोई काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, मजदूर औजार लेकर अपने काम पर निकल रहे थे। किसी को भी ये अंदाज़ा ही नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। सुबह लगभग 8:15 पर एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया और देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। हजारों घर मलबे में बदल गए, लाखों लोगों ने अपना परिवार, अपने सपने और अपना भविष्य एक ही पल में खो दिया। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई माता पिता अपने बच्चों से बिछड़ गए और बहुत से लोग उस बम से हुई बीमारी और दर्द को सालों साल झेलते रहे। दोस्तों, इस बम का नाम लिटिल बॉय था, जिसे एनोला गे नाम के विमान से गिराया गया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी हार चुका था लेकिन जापान ने अभी भी लड़ाई जारी रखी थी। अमेरिका चाहता था कि जापान बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दे ताकि युद्ध जल्दी से समाप्त हो।

अमेरिकी नेतृत्व का मानना था कि अगर जापान पर सीधे हमला किया गया तो दोनों पक्षों के बहुत सारे सैनिक मारे जा सकते हैं, और इसी सोच के चलते अमेरिका ने परमाणु बम इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जो कि एक विनाशकारी और अनावश्यक कदम था क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए। पर अमेरिका यहीं नहीं रुका। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया, जिसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा। साथियों, हिरोशिमा दिवस हमें ये संदेश देता है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शांति, भाईचारा और मानवता ही दुनिया को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और दोस्तों, हम सभी श्रमिकों का जीवन भी शांति से जुड़ा हुआ है। जब देश में शांति रहती है तब उद्योग चलते हैं, निर्माण कार्य होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। जबकि युद्ध या हिंसा सबसे ज़्यादा असर आम लोगों और मेहनतकश परिवारों पर डालती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी यही सीख देनी है कि वो आपसी प्रेम, सहयोग और एकता के साथ रहें, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के साथ साथियों, वक्त हो चला है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा, अपनी रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती के साथ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, ज्ञान सागर सेगमेंट में आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर के बारे में बताने जा रही हूँ जो पक्षियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं शेखा झील पक्षी विहार की। दोस्तों, शेखा झील अलीगढ़ शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आर्द्र भूमि है। ये केवल एक झील नहीं बल्कि सैकड़ों पक्षियों का सुरक्षित घर भी है। यहाँ वर्ष भर स्थानीय पक्षी आते रहते हैं, साथ ही सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, मध्य एशिया और दूसरे देशों के हजारों प्रवासी पक्षी लंबी यात्रा तय करके यहाँ आते हैं। अगस्त महीने की बारिश से ये झील लबालब भर जाती है, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और स्थानीय पक्षियों के लिए यह प्रजनन और घोंसले बनाने का अनुकूल समय है। साथियों, क्या आपको पता है कि हाल ही में शेखा झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है?

दर्जा उन आर्द्र भूमियों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और साथियों, ये सम्मान केवल अलीगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यहाँ 250 से भी ज़्यादा पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका है। इन पक्षियों की मधुर चहचहाहट, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ आने वाले हर किसी को प्रकृति से जुड़ने का अवसर देती है। और दोस्तों, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन जलाशयों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की रक्षा करें, क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। साथियों, आपको आज का प्रश्न तो याद है ना? आज का प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पर दोस्तों, उत्तर जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है। केंद्र शासित प्रदेश भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जिनका प्रशासन सीधे भारत सरकार के अधीन होता है, जबकि राज्यों में अपनी निर्वाचित सरकार होती है और उन्हें अधिक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं। चलिए इसे थोड़ी सरल भाषा में समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अपने अपने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है। इनका संचालन राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल करते हैं। हालांकि कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में अपनी निर्वाचित सरकार और विधानसभा भी हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार की भूमिका अहम रहती है। तो साथियों, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। साथियों, भारत की मिट्टी में वीरता, संस्कृति और गौरव की अनगिनत कहानियां समाई हुई हैं। आज हम बात करेंगे कुंभलगढ़ किले की, जिसे भारत की शान और राजपूत वीरता की प्रतीक माना जाता है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित यह भव्य किला 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी विशाल परकोटे की दीवार, जो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, और इसी वजह से इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे लंबी निरंतर किलाबंदी वाली दीवारों में से एक मानी जाती है। ये किला केवल अपनी विशालता के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। साथियों, मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था। कठिन समय में ये किला मेवाड़ के शासकों के लिए सुरक्षित शरणास्थली भी बना। कुंभलगढ़ किला आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी विश्वभर में भारत की गौरवशाली विरासत का परिचय देता है। यह हमें सिखाता है कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस, एकता और समर्पण कितना जरूरी है। साथियों, हमारा देश केवल इमारतों और स्मारकों से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों से महान बनता है। और हमारे देश की इन अमूल्य धरोहर का सम्मान करना और उन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। और इसी के साथ वक्त हो चला है मनोरंजन का, और मनोरंजन के बाद हम सुनेंगे देश दुनिया की कुछ खबरें।

साथियों, अब जान लेते हैं देश दुनिया की कुछ खबरें। तो साथियों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी। इसी के साथ साथियों, ग्लासगो स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का सफल समापन हुआ। हमारे भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और ये उपलब्धि देश के खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने जकार्ता, इंडोनेशिया की सराहना की है। कभी खाद्य सहायता प्राप्त करने वाला देश आज अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा और आपदा तैयारी में सहयोग देने वाला महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है। साथियों, विज्ञान की दुनिया से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। हाल ही में SpaceX के एक निष्क्रिय रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चंद्रमा की सतह से टकराया। सुनने में ये घटना भले ही सामान्य लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। इस टक्कर से चंद्रमा की सतह पर एक नया गड्ढा बना है और वैज्ञानिक इस गड्ढे और उससे निकलने वाली धूल का अध्ययन करेंगे। इससे चंद्रमा की मिट्टी, उसकी सतह और अंदरूनी संरचना के बारे में नई जानकारियाँ मिल सकती हैं। और इसी के साथ साथियों, बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम से बचने के लिए जान लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। दोस्तों, बारिश का मौसम अपने साथ कई तरह के संक्रमण लेकर आता है। ऐसे में आयुर्वेद में चिरायता यानी चिरौता को एक लाभकारी औषधि जड़ी बूटी माना गया है। चिरौता का स्वाद भले ही बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसके कई फायदे हैं। ये पाचन को बेहतर बनाने

भूख बढ़ाने और बदहजमी में राहत देने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसे बुखार, खासकर मौसमी बुखार में सहायक औषधि में उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण भी पाए जाते हैं। पर साथियों, अगर बुखार तेज या उल्टी दस्त जैसे गंभीर लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अपना ध्यान रखें क्योंकि काम के साथ स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। और साथियों, बारिश में हर रास्ते पर जल भराव है तो ऐसे में गाड़ी धीरे चलाएं। बिजली चमकने पर खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। काम पर जाते समय छाता और रेनकोट अपने साथ ज़रूर रखें और अगर भीग गए हैं तो जल्दी से जल्दी कपड़े बदल लें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें और साथ ही आसपास के बेजुबान पशु पक्षियों को बारिश में बचाने के लिए शरण दें। उन्हें मारें या भगाएं नहीं, उन्हें पीने को साफ पानी और खाना दें। और सुनते रहें आकाशवाणी आगरा।

तो साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: अभी हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल। 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को है। आइए अब सुनते हैं दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता को सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की है। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वली शेट्टी को हराया। अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज भी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा ने

0: The finals will be played on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 7:10। अब समय है कार्यक्रम विविधा का। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर गिरिराज किशोर की वार्ता। विषय है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अलीगढ़ जनपद की क्या है भूमिका।
2: राष्ट्रीय आंदोलन के समय अलीगढ़ की जमीन से इनकलाब के स्वर उठे थे। इसी क्रम में हुए प्रसिद्ध काकोरी कांड की गतिविधियां भी अलीगढ़ से भी गहरी जुड़ी थीं। राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानी अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम का जन्म वीरपुरा में 5 अगस्त 1902 को हुआ था। इनको काकोरी कांड में गिरफ्तार किया गया। श्री गौतम ने महात्मा गांधी के अहिंसक नेतृत्व में जुड़कर सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और जेल गए। मोहनलाल गौतम किशोर अवस्था के बाद ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी क्षेत्र में काम किया। बाद में लाहौर गए और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के संपर्क में रहकर सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी के सदस्य बने। यहीं पर पुरुषोत्तम दास टंडन के संपर्क में आए। 1937-38 में जब गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी, उस समय मोहनलाल गौतम देवरिया गोरखपुर से विधानसभा सदस्य चुने गए और आज़ादी के बाद संविधान सभा के सदस्य रहे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प घोषित किया था, उसकी स्वागत समिति के मंत्री भी गौतम जी थे। काकोरी कांड के नायक भगत सिंह ने अलीगढ़ के गांव शादीपुर में शिक्षक के वेश में फरारी काटी। अलीगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी हरिशंकर आज़ाद भगत सिंह के संपर्क में आए और भगत सिंह ने आज़ाद को बम बनाना सिखाया। बम का विस्फोट गांव के बाहर किया गया। उस समय भगत सिंह ने हरिशंकर आज़ाद से कहा, यह धमाका भारत माता की मुक्ति के लिए है। उसके बाद श्री आज़ाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए। स्वाधीनता आंदोलन में कुछ कर गुजरने का जज्बा अलीगढ़ के बच्चों में बचपन से ही हुंकार भरने लगा था। इसी क्रम में नाम आता है मदन लाल हितैषी का, जिन्होंने सन 1928 में मात्र 10 वर्ष की आयु में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा स्थानीय गवर्नमेंट हाई स्कूल के भवन पर तिरंगा झंडा लहरा दिया। अंग्रेज पुलिस ने जब ये देखा तो उसने बच्चे मदनलाल हितैषी को उठाकर भवन से नीचे फेंक दिया, परंतु लोगों ने उन्हें हाथों में ले लिया, जिससे उनकी जान बच गई। 1932 में महात्मा गांधी के आह्वान पर हितैषी जी ने छर्रा में पिकेटिंग की और नवाबशाही का दमनकारी अत्याचार सहा, जो अलीगढ़ जनपद की ऐतिहासिक घटना है। 24 सितंबर 1942 को अलीगढ़ स्टेशन पर बम विस्फोट करने के आरोप में इनको आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बाद में हितैषी जी ने दैनिक प्रकाश अखबार निकाला, जो अलीगढ़ की जनता में जोश का संचार करता था। बुरके के वेश में वे फरारी करते थे तथा घर में बनी गुप्त सुरंग में रहते थे। कैप्टन अब्बास अली अलीगढ़ के ऐसे जांबाज स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की सेना में कार्यरत थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विद्रोह आह्वान पर कैप्टन अब्बास अली आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हुए। उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा कोर्ट मार्शल में मृत्यु की सजा हुई, परंतु 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर इन्हें रिहा कर दिया गया। स्वाधीनता आंदोलन में अलीगढ़ जनपद के बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने अंग्रेज सरकार से हर प्रकार लोहा लिया और जेलों में यातना सही और भूमिगत रहकर भी आंदोलन में सक्रिय सहयोग किया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे कुंवर नेतपाल सेनानी। विद्यार्थी जीवन में आपने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए तो अंग्रेजी हुकूमत ने इनके ऊपर जुल्म ढाए। सन 1933 में प्रतिबंधित कलकत्ता अधिवेशन में वहाँ के परेड ग्राउंड में

0: मंच पर चढ़कर अधिवेशन का प्रस्ताव पढ़ा तो अंग्रेजों ने इन्हें बैतों से पीटा और कलकत्ता की अलीपुर जेल में 3 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा दी। कुंवर नेत्रपाल ने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय आदि महान सेनानियों के साथ 6 बार जेल की यात्रा की। आपने गुजरात के वर्धा आश्रम में गांधी जी के साथ देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी पत्नी व पुत्र के साथ जेल भी गए। अलीगढ़ जनपद में एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए अपनी किशोरावस्था व युवावस्था को समर्पित कर दिया। ठाकुर नवाब सिंह चौहान ऐसे ही एक बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। नतीजा यह हुआ कि इन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। 1940 व 1942 में नवाब सिंह ने आंदोलन करते हुए गिरफ्तारी दी और कई जेलों में 3 वर्ष की सजा काटी। ठाकुर मलखान सिंह अलीगढ़ जनपद के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1930, 1940 व 1942 के राष्ट्रीय आंदोलनों में युवाओं को संगठित किया और गिरफ्तारी दी तथा अनेक बार जेल गए। इनको लोगों ने अलीगढ़ केसरी लाइन ऑफ अलीगढ़ से सम्मानित किया। अलीगढ़ जनपद में आज़ादी के दीवानों के सारथी थे रामचंद्र सिंह पंत। इनमें आज़ादी के लिए गजब का जुनून था। जवाहरलाल नेहरू से इनका सीधा संपर्क था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब वे गिरफ्तारी दे रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया और फिर इन्होंने भूमिगत रहकर 3 वर्ष तक संदेशवाहक के रूप में कार्य किया। यह अलीगढ़ जनपद की माटी को श्रेय दिया जाएगा कि जब जब स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया तब तब अलीगढ़ के लड़कों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज़ादी के महानायक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगुआ महात्मा गांधी स्वयं 3 बार अलीगढ़ आए। पहली बार महात्मा गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में आए, यहाँ पर उन्हें छात्र संघ की आजीवन सदस्यता दी गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आंदोलन को धार देने के लिए स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल मजीद ख्वाजा के यहाँ उनकी हवेली में आए और कई दिनों तक प्रवास किया। तीसरी बार महात्मा गांधी करीब 8 दिन तक नुमाइश मैदान के दरबार हाल में रुके थे। यह भी एक प्रभावित करने वाला तथ्य है कि सर ए ओ ह्यूम जो अंग्रेज थे लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान के कल्याण के प्रति समर्पित था, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, वे अलीगढ़ के कलेक्टर रहे थे। इन्होंने अलीगढ़ व अन्य नगरवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के लिए प्रेरित किया। अलीगढ़ जनपद के सक्रिय व बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या अनगिनत है। इसमें श्याम बिहारी लाल, पन्ना लाल शर्मा, मोतीलाल आर्य, इस्लाम अख्तर, सोबरन सिंह,
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के जरिए गैस उत्पादों को खरीद और सही मूल्य देने की गारंटी देने की कोशिश की गई है।
1: आज जो स्कीम अप्रूव हुई है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें 6 पिलर्स हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस CBD जो गैस बनती है उस गैस के यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफटेक का पिलर रखा गया, यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफटेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया।
0: मंत्रिमंडल ने असम में बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश को दिया था उसी संकल्प का विस्तार आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बिना भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की इसी सोच की नई कड़ी घुमंतू विकास बोर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित विमुक्त एवं घुमंतू समाज को न्याय सम्मान और अवसर दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है।
2: ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। घुमंतू जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आरागे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है। पेपर और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए व्यापक सुधार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मिश्रा के वकील ने दलील दी कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वे पारिवारिक कार्यक्रमों सहित अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने में असमर्थ हैं। मुख्य न्यायाधीश ने ये कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का

0: आज 45वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 85 मेघावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटों और बेटियों को समान अवसर मिल रहे हैं। ये समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत है और इससे प्रेरणा लेकर युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मायावती ने लिखा कि पार्टी के प्रति उमाशंकर सिंह की निष्ठा की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हर घर तिरंगा के अंतर्गत प्रदेश के 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोजनों को जनभागीदारी के साथ मनाने का निर्देश दिया है। इस श्रृंखला में राजधानी लखनऊ समेत सभी 75 जनपदों में तिरंगा संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रभक्ति के गीतों नृत्यों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली अंतर्गत महुली मंडी के पास एक जर्जर मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने घटनास्थल का मुआयना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
1: 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर है वो बचे हुए हैं। उनकी दुखद घटना है। प्रशासन और शासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरा शोक जताया है। वहीं बाराबंकी में भी बारिश के कारण दरियाबाद में भी घर की दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे मलबे में दब गए। हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। भारी बारिश के कारण इटावा और जौनपुर में आज स्कूल बंद रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में इटावा में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी भाग में कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा आज खतरे के निशान को पार कर गई हैं। वहीं अमरोहा में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही और उसके कारण गंगा नदी उफान पर है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अमरोहा में तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। खादर क्षेत्र के खेतों में भी पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। आज तिगरी गंगा का जलस्तर 200.45 मीटर दर्ज किया गया है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में 1,33,357 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: हमीरपुर में बीती रात नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर हो जाने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं झांसी में आज हुई सड़क दुर्घटना में माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन

0: पलायन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 7:31। आइए अब सुनते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ रेनु बहनी।
1: भैया कहा जाता है कि जल ही जीवन है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बहुत से जने ये बात का समझत नहीं है और अथाह पानी जोन है बहावा करत है।
0: लेकिन बहनी हम पंचन का चाहिए कि हम पानी के इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करी और यही बदे आपन जो सरकार है वो योजना चलाए रही है प्रति बूंद अधिक फसल।
1: बिल्कुल भैया, काहे कि यहाँ पानी जोन है चाहे मानव हो और चाहे खेती पाती हो, दोनों के लिए वतने जरूरी है। यही बदे जोन है हम पंचे पानी की एक एक बूंद कहीं इस्तेमाल करी और योजना के भरपूर लाभ उठाई।
0: बिल्कुल ठीक कहती हो बहनी। मूल यकरे साथे साथे अपने आसपास जौन चीजें हो रही हैं हम पंचन का वहू केर जानकारी होएक चाहिए।
1: तो भैया काहे न सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: CISH लालिमा अमरूद की एक उन्नत एवं अत्यंत संभावनाशील किस्म है जिसे ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा एप्पल अमरूद के रूप में चयनित किया गया है। इस किस्म के फल गोल मध्यम आकार के तथा आकर्षक गहरे लाल रंग के होते हैं। फलों का छिलका 1.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटा होता है जिससे फल परिवहन एवं भंडारण के दौरान अधिक सुरक्षित रहते हैं। इसका गूदा सख्त होता है तथा मिठास और हल्की अम्लता का उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करता है जिससे इसका स्वाद बेहद आकर्षक बन जाता है। इस किस्म में विटामिन सी 150 से 220 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है जो इसे पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बनाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता, आकर्षक रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण ये किस्म ताजे फल के रूप में उपयोग के साथ साथ जूस, जेली, जैम एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। इस किस्म का विकास डॉक्टर शैलेंद्र राजन एवं डॉक्टर राम कुमार द्वारा किया गया है जबकि डॉक्टर अंशुमान सिंह इसके अनुरक्षक वैज्ञानिक हैं। इसका विकास वर्ष 2015 में किया गया तथा वर्ष 2024 में इसे आधिकारिक रूप से जारी किया गया।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम

0: प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: भैया देखो, अगर कोनो काम समय पर होत है ना तो हमका मुनाफा जोन है ज्यादा होत है, लेकिन उके खातिर हमका उस समय की जानकारी होइक चाहिए कि उस समय पर कौन काम हमका ज्यादा फायदा दे। तो आज की बात में हम ऐसे एक भेंटवार्ता लेके आए हैं, आम की बागों में सामयिक कृषि कार्य,
3: और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्यारे लाल सरोज भैया, और इनसे बतकही कहीं है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आम की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं वहां इस समय सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से विभागाध्यक्ष फसल उत्पादन प्रभाग डॉक्टर पीएल सरोज साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आम में फलत टूट चुकी है, ऐसे में आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन।
5: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आम फलों का राजा है जो अपने स्वाद, मिठास, पौष्टिक एवं औषधीय गुणों के कारण जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारत में आज लगभग 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम की खेती हो रही है, जिससे करीब 2.5 से 3 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है।
4: यानी 2.5 से लेकर 3 करोड़ टन।
5: जी, आम न केवल राज्य कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, अपितु लाखों बागवान भाइयों, प्रसंस्करण उद्योगों, निर्यातकों आदि की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश बाग पारंपरिक पद्धति से स्थापित किए गए हैं, जिनकी आयु 30 से 50 वर्ष की हो चुकी है। पौधों की ऊंचाई काफी बढ़ गई है, डालियां आपस में मिल गई हैं, सघनता के कारण प्रकाश एवं आयु का उचित संचरण नहीं हो रहा है।
4: अगस्त का महीना चल रहा है, ऐसे में आम के बागों में कौन कौन से प्रमुख कार्य करें बागवान भाई बहन।
5: सामान्यतः अब इस समय सभी किसान भाई फलों की तुड़ाई लगभग समाप्त कर लिए हैं। अगस्त के महीने में बागों का जो प्रमुख कार्य होता है वह खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग का होता है।
4: जी,
5: यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि बाग में पानी भरा हुआ है तो खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग न करें। पहले बाग से पानी निकालकर जब खेत जुताई के उपयुक्त हो जाए तो अच्छी तरह से जुताई करके खेत को पहले खरपतवार रहित कर लें। पूर्ण विकसित बाग के लिए सामान्य तौर पर 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नत्रजन, 0.5 किलोग्राम फॉस्फोरस एवं 1 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है
4: प्रति पेड़।
5: अब अगस्त के महीने में जब हमको खाद देना है तो यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नत्रजन की आधी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा को देना है।
4: अच्छा, तत्व के रूप में,
5: या इसे यूं समझें, अगर हमको लगभग 500 ग्राम नत्रजन देना है तो उसके लिए लगभग 1 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम अगर हमको पोटास देना है तो उसके लिए 800 ग्राम करीब म्यूरेट ऑफ पोटास, और फास्फोरस की पूरी मात्रा लगभग 500 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम DAP को हम दे सकते हैं। 1.5 से करीब 2 मीटर की दूरी पर करीब 1 फीट चौड़ी नाली बनाएं, जो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी हो।
4: यानी गोलाई में
5: नाली को बनाना है, और उसी नाली में अच्छी तरह से नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और साथ में जो देसी खाद है सबको मिला लें,
4: गोबर की सड़ी खाद।
5: फिर नाली को बंद कर दें। यदि नमी की कमी है या वर्षा नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में हल्की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे पोषक तत्व जड़ों तक पहुंच जाए जो स्वस्थ बाग के लिए आवश्यक हैं, एवं वृक्ष की वृद्धि, पुष्पन, फलन एवं फल गुणवत्ता में आवश्यक सुधार हो बहुत ही उपयोगी होता है। कभी कभी किसान भाई कुछ खेतों में, कुछ बागों में हरी खाद जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया आदि बोए हैं, यदि अगर उसको बुआई किए हैं तो वह पलटाई का समय आ गया है, मतलब उसकी जुताई करके
4: हरी खाद मिलाने का
5: भी ये समय अगस्त का महीना होता है।
4: डॉक्टर साहब, जैसे दाल में नमक की जरूरत है, उसी तरह फलदार वृक्षों को मुख्य और गौड़ पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होगी।
5: जी, जैसे हमारे मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं,

उसी तरह फलदार वृक्षों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अच्छी फलत के लिए, उसके टिकाव के लिए सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से आम उत्पादन वाले क्षेत्रों में अधिकांश मृदाएं क्षारीय प्रकृति की हैं, अर्थात उनका पीएच मान 7.5 से ज़्यादा है एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी सामान्यतः कम है। ऐसी परिस्थिति में जिंक, बोरा

0: में जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों की पूर्ति के लिए उनका पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। अलग अलग इन तत्वों का प्रयोग करने के लिए बागवान भाइयों को काफ़ी कठिनाई होती है, अतः इसके लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्वों का एक मिश्रण तैयार संस्थान द्वारा तैयार किया गया है, जिसे हम फसल प्रभात के नाम से जानते हैं। इसमें जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम होता है,
1: यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह है।
0: और इसको देने के लिए करीब 4 से 5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे कि उसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए, यानी जब मौसम खुला हो तब इसका छिड़काव करें तो इसका लाभ ज्यादा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, अगस्त में रोग बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कुछ करना है?
0: अवश्य करना चाहिए। आम के फलों को तोड़ने के बाद पौधों की जो सूखी, रोग ग्रसित एवं सघन शाखाएं हैं उनकी काट छांट करना बहुत आवश्यक होता है। रोग बीमारियों के रोकथाम के लिए 250 ग्राम लगभग 1 पाव ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके प्रतिवृक्ष यदि देते हैं तो इससे पौधा स्वस्थ रहता है, बीमारियां लगने की संभावना कम होती है।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ किसान भाइयों को बागवानी से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण देता है और आमतौर पर यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है, इसलिए बागवान भाई संपर्क कर सकते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा को मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें जो उनको वार्ता करने में आसानी रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 94-83-50-96-53 9483509653 94-83-50-96-53 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का आम के फलदार वृक्षों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: सामयिक कृषि कार्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने समय पर जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसको नहीं किया तो आप अगले वर्ष अच्छा उत्पादन नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय पर खाद दें, समय पर निराई गुड़ाई करें और उसमें जो सूक्ष्म तत्वों का विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो देखे होंगे आप, जैसे वर्षा समाप्त होगी फल वृक्षों से गोंद निकलने लगता है, अतः उसके लिए भी आप अगर कॉपर सल्फेट का घोल बना करके पौधे के मुख्य तने पर लगा देंगे तो ज्यादा फायदा होगा।
1: डॉक्टर पीएल सरोज साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेनू बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो, जानकारी के बाद तो बहुत हो गया, अब कुछ गीत गवनाई की बात हो जाए।
3: बिल्कुल भैया, हो जाए तो और सुन लीन जाए एक खिमटा सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर में। यहाँ
2: जहमा वो कह रहे हैं सुलहो सिंगार कहिए।

0: रेनू बहनी,
1: हाँ रामजीत भैया,
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में कितना मेहनत करी थे, मूल कऊ दाए ऐस हो जाते कि हम उतना फायदा ना पाई थे। मूल बहुत से ऐसे पंच हैं जे वह फायदा का बनाए लिए थे और उनके बात करी थे हम पंच आज के किसान में।
1: तो भैया देखो, आज ऐसे ने एक किसान अपनी बैठकी में आए हैं और भी बता रहे हैं डेयरी व्यवसाय के बारे में। यहाँ इनके नाम है ओम बाबू वर्मा भैया और देखो इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के गोसाईगंज ब्लॉक के केवली गांव के डेयरी व्यवसायी ओम बाबू वर्मा भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप मट्ठा मैन के रूप में जाने जाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती खास करके डेयरी व्यवसाय से जुड़ाव हुआ कब से?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी पढ़ाई लिखाई तो शुरू में मेरी छठीवीं से गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज में हुई, उसके बाद फिर लखनऊ में सुंदरबाग में बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज किए, उसी जगह से हमने फिर आईटीआई अलीगंज से पढ़ाई की, उसके बाद फिर अपना गोपालन और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल लाइन का काम हमने वहां से शुरुआत की।
2: तो गोपालन शुरू कब किया आपने?
3: मेरे बच्चे जो है बहुत बीमार रहते थे, तो मेरे बड़े वाले भैया एक दिन मेरे घर पहुंचे और कहे आपके घर का दूध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है एक हम पकड़ी हुई गाय छोटी सी पाल देते जो 2.5-3 लीटर दूध देगी, वो जो है आपके यहाँ बच्चों के लिए दूध हो जाएगा और उसी से पालन पोषण होगा। तो उसी चक्कर में हमने वहीं से गाय से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय से हमारे यहाँ दूध बढ़ गया काफी, 5 से 6 लीटर के आसपास हो गया।
2: अच्छा।
3: और उसके बाद जो है उसका दही मट्ठा बनने लगा, और दही मट्ठा जब बनने लगा तो पड़ोस में देते तो बहुत लोगों को फायदा होने लगा। उसके बाद डिमांड भी आने लगी कि भैया तुम्हारे हुआ मट्ठा बहुत अच्छा है, तो हम कहे भैया ले लिया करो, हम लोग तो घी के उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वही जगह से होने लगा। तो फिर कोविड के समय जो है कोई काम रह नहीं गया, तो उतने समय हमारी समझ में आया कि इसको गौपालन में किया जाए क्योंकि गाय बहुत उपयोगी है।
2: तो फिर

0: एक से शुरू किया तो कहाँ तक पहुँच गए हैं?
1: इस समय अपने पास जो है करीब लगभग 30 गाय हैं, बाकी छोटे बड़े मिला के 55-60 के आसपास जानवर हैं।
0: कौन सी नस्ल है?
1: मेरे पास करीब 4 गिर की हैं, बाकी सब साहीवाल नस्ल के हैं।
0: अच्छा,
1: जिसमें से कुछ हमने अच्छी नस्ल देखी, घूमती हुई गाय पकड़ के अपने यहाँ रखे, उसको भी अपने यहाँ तैयार किए, और अपनी बछिया भी काफी तैयार है अच्छी
0: और
1: नस्ल
0: उसको
1: का।
0: भी उत्पादक बना चुके हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सीमेन अपना उपयोग करके जो अपने सरकारी वाले मारे हैं,
0: हाँ,
1: उससे साहीवाल की बछिया बहुत अच्छी है हमारे पास है।
0: तो ये बताएं कि उनका खान पान कैसे करते हैं सुबह से शाम तक?
1: खान पान तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं पहले थी, तो हम तो वही बाहर से मार्केट से पशुआर खरीद लेते थे, और जो दाना पानी आता था वही सब खरीद के खिलाते थे। लेकिन जब तक हम दाना पानी बाहर का उपयोग किए जो मार्केट में आजकल चल रहा, उसके बाद फिर गाय हमारी कोई गाभिन नहीं हो रही,
0: अच्छा,
1: ये समस्या बहुत बड़ी आई। फिर हम एक बार करनाल ट्रेनिंग गए, और फिर गवर्नमेंट भेजी थी वहां पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में,
0: जी
1: तो
0: शांति कुंज में।
1: हाँ शांति कुंज में, तो वहां हमने प्रोफेसर लोग बोले कि आप अपना दाना पानी तैयार। जब से हमने अपना दाना पानी तैयार, मेरी गायों की शक्ल बन गई ऐसी कि बिल्कुल चमकीली हो गए, और उसके बाद गाय मेरी सारी सारी गाभिन हो गई।
0: यानी पशु आहार खुद बनाते हैं आप?
1: खुद पशु आहार बनाते, एक मशीन हमने खरीदी 50,000 की, और उसी से अपनी दलिया तैयार करते हैं, उसी से अपना पशु आहार दाना मक्का सब कुछ उसी से अपना तैयार करते
0: तो
1: हैं।
0: संतुलन क्या रखते हैं, दाना खली और चूनी का?
1: हमारा मानक जो है गेहूं रखते हैं करीब लगभग 30 किलो, और जैसे आजकल गर्मियों में हमने 30 किलो जौ कर दी है,
0: हाँ
1: और उसके बाद चने की चूनी,
0: हाँ
1: और इधर थोड़ा वो चोकर लेते हैं,
0: अच्छा,
1: चोकर है, उसके बाद 1 क्विंटल का मानक बता रहे हैं हम, और 1 किलो मिनरल देते हैं, 1 किलो हमने सादा नमक देते हैं, और 1 किलो हम मीठा सोडा,
0: अच्छा,
1: हाँ, और जो है इसी में 5 किलो खली,
0: 100 किलो में
1: 100 किलो में, तो
0: तो
1: ये सब बना के हम तैयार करके और बोरियों में 15 दिन का पैक करके वजन के हिसाब से रख देते हैं कि गाय मेरी इतना चारा खाएगी, तो इतना हमको राशन इसमें डालना है।
0: जो 30 भारतीय नस्ल की गायें हैं आपके पास, उसमें दूध कितना दे रही हैं?
1: दूध मेरे पास इस समय डॉक्टर साहब जो है मेरे पास 14 गाय लग रही हैं, लगभग 85-90 लीटर के आसपास दूध है,
0: हो रहा है।
1: हो रहा है।
0: और आगे जो गाभिन होगी, ब्याएंगी?
1: 20 गाय मेरे पास बच्चा देने वाली, जिसमें से मेरी खुद 14 बच्चियां अपने यहाँ की हैं जो तैयार की साहीवाल गिर, उसमें से देंगी,
0: तो दूध की मात्रा काफी बढ़ जाएगी।
1: दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने प्रोडक्शन के लिए खोया पनीर की इसकी तैयारी कर ली है।
0: जो जानवर हैं उनको खुराक कैसे देते हैं, सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार?
1: ये डॉक्टर साहब मानक जो मेरा है करीब 3 से 4 किलो के आसपास एक टाइम हम भूसा दे रहे हैं, और उसी में लगभग 10 से लेकर मतलब वजन के हिसाब से देते हैं जानवर के, लगभग कितना वजन है,
0: हाँ
1: 10 से 15 किलो के आसपास हरा चारा,
0: हाँ
1: ये देते हैं। और जैसे अगर 6 लीटर दूध दे रही तो उसको हम 2.5 से 3 किलो के आसपास एक टाइम राशन दे रहे हैं। जो गाभिन है उसको 1 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम बस इससे मानक में देते रहते,
0: बहुत बढ़िया।
1: और उसके बाद गाय को खुला छोड़ना।
0: अच्छा,
1: हाँ, जब से हमने उसको खुला छोड़ दिया तब से गाय पूरा एक दूसरे को चाटती है, कहीं हमने सिरावन गांव में पुरानी पड़ी अपने घर पे उसको गाड़ दिए, उसमें रगड़ती रहती है, और उसके बाद पानी पीने के भर दिए, उसके बाद थोड़ा टीन सेट बना दिए, और टीन सेट के बाद जो है अब पूरा हमने खुला रखा करीब 8 विश्व के आसपास।
0: अच्छा,
1: और
0: उसमें
1: उसी में
0: अपना
1: खुली
0: घूमती
1: रहती है,
0: टहलती
1: घूमती
0: रहती।
1: टहलती रहती है।
0: तो पूरे डेयरी व्यवसाय की बात करें तो ये बताएं कि महीने में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं, और उसको बेचने के बाद आपका मुनाफा होता कितना है?
1: करीब 90 लीटर के आसपास मेरे पास दूध तैयार होता है, तो उसी का हम जो है पूरा मान चले के उसी का दूध पका के करीब मेरे पक के आ जाता है करीब 78 लीटर 80 लीटर के आसपास दूध लाल पक के तैयार हो जाता है, जो मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। उसके बाद उसी में फिर पानी कुछ मिक्स करके मट्ठा तैयार करते हैं, उसी में से मक्खन, तो वो 90 लीटर के आसपास मेरा मट्ठा उतना तैयार हो जाता है।
0: हाँ,
1: और कभी कभी 10 किलो के आसपास निकाल लेते हैं, 80 लीटर मट्ठा तैयार कर 10 किलो दही हम तैयार कर लेते हैं,
0: अच्छा, दही भी बेचते हैं?
1: दही भी लाल मटकी में और दही करके 500 ग्राम 1 किलो की दही भी तैयार करते हैं और दही भी बेचते हैं। तो लगभग ये मट्ठा और दही घी मिला के लगभग में बिक्री जो हो जाती है लगभग 15 से 16 हजार 17 हजार के आसपास पर डे की होती है,
0: पर डे?
1: पर डे की, और जिसमें से हमारे पास करीब 7,000-8,000-9,000 रुपए के गायों के प्रति
0: खर्चा है,
1: खर्चा भी है, लगभग 2 लाख के आसपास मार्जिन आ जाता है।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है डेयरी व्यवसाय का इतने कम दिन में, और किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
1: किसान गाय पाले लेकिन पूरे परिवार साथ मिलके और खुद

0: अपना प्रोडक्शन करें, खुद अपनी मार्केट मतलब अपनी बाजार खुद ढूंढे, दूसरे को न दे बाजार ढूंढने के लिए, तभी आप इससे कुछ बचा पाएंगे।
1: ओम बाबू वर्मा भैया, किसान भाई बहन अभी भी उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर मेरा जो है 7080-9999-7080-8099-9928 7080-9999-28।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं?
0: हमने कभी सोचा नहीं था, लोग हमारे मित्र जो थे 10 में से 9 लोग तो मना कर दिए कि गौ पालन में आप न जाइए क्योंकि ये घाटे का सौदा है। तो हमने कहा हम कैसे जाने घाटा का सौदा है, हम तो इसको हम घुस के हम देखेंगे एक बार कि घाटा है कि नहीं है, हम क्योंकि घाटा करके हम सीखना चाहते। तो हमारी जिद ने इसमें ले गए और उसके बाद हमने सोच लिया कि हम अपनी मार्केट करेंगे, अपने ग्राहकों के पास पहुंचाएंगे।
1: और आज अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके आप दूध दही और मट्ठा साथ में घी भी बेच रहे हैं और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। ओम बाबू वर्मा भैया, आज छोटे बड़े कुल 60 जानवर आपके गौशाला में हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया अपनी खेती पाती में यहाँ कोनो काम हो लेकिन मौसम केरी जानकारी अगर अच्छी हो ना तो काम बहुत बढ़िया बनत है। तो काहे ना दे दिन जाए अपने पंच भैया बहनिन के यहाँ मौसम केरे हाल।
4: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 6 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और कहूं कहूं पर भारी बारिश के चेतावनी है।
3: भैया देखो ये तो हो गए मौसम के हाल, लेकिन अगर कोई पंच भैया बहनी हमका सुझाव भेजा चाहते हैं कार्यक्रम से संबंधित कोनो बात बतावा चाहते हैं तो उके खातिर हुई हमार पता नोट कर लें। हमार पता है कार्यक्रम किसान वाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड है 226001। और भैया देखो आजकल है डिजिटल के जमाना तो बहुत से लोग मेल भेजते हैं जो उनकी ज्यादा सहज होते हैं तो बता दो अपन मेल आईडी।
4: तो पंच भाई लिखें FARMANDHOME फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com।
3: और भैया देखो कार्यक्रम के समय हो चुका है अब समाप्त, तो लीन जाए अपने पंच भैया बहनी से आज्ञा।
4: जय हिंद, हिंद।

0: प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आपने सुना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8 बजने को है। आइए अब सुनते हैं संसद में हुई आज की कार्यवाही पर आधारित संसद समीक्षा।
2: आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा।

लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानबड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया।

उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने एक मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालूर हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके

0: आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। यह विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेन देन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आपने सुनी संसद समीक्षा।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं लखनऊ से विधानमंडल समीक्षा।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:23 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का, और फिल्म संगीत

ये गीत हमने लिया था फिल्म गैंगस्टर से, संगीत दिया था प्रीतम ने, रचना सैयद कादरी की थी और आवाज थी के की। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए

राहत फतेह अली खान और कृष्णा की मधुर आवाजों से सजे इस गीत को हमने लिया था फिल्म नमस्ते लंदन से। संगीत हिमेश रेशमिया का था और रचना जावेद अख्तर की थी। अगला गीत हमने लिया है फिल्म हेड स्टोरी से, संगीत अरको का है और आवाजें हैं अरिजीत सिंह और समीरा कोपिकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। अगला गीत हमने फिल्म मर्डर 2 से लिया है, जिसका संगीत और आवाज दी है हर्षित सक्सेना ने, और गीत है सैयद कादरी का।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मेरे वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय

0: मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और

0: निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
2: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
3: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
2: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
1: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
4: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
1: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
6: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में

0: भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले दो वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni 4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests

0: मरकज ने हवाई जहाज के ईंधन में इथेनॉल की मिलावट के दावों को मुस्तरद कर दिया है। झारखंड और केरलम में भर्ती के इम्तिहान के मामलों पर तलबा का एहतजाज बढ़ गया है। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। आज मरकजी काबीना ने कौमी सर्कुलर हयातियाती तवानाई की स्कीम गोवर्धन को मंजूरी दी। इसके लिए मजमूई तौर पर 23,731 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसीलात बताते हुए इत्तलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ये स्कीम मुल्क के मतरूक जरिए बाकियात मवेशियों के गोबर, चीनी मिलों से निकलने वाले नामियाती कचरे, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक फजला और दिगर बायोमास जराए को माहौलियात के लिए साजगार ईंधन, नामियाती खाद तैयार करने, देही आमदनी और कौमी इक्तिसादी सूरत हाल में तब्दीली लाएगी। इस स्कीम का इतलाक 2026-27 से साल 2035-36 तक होगा और ये भारत की मुस्तकबिल की तवानाई की तैयारी के एक अहम सुतून के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस की पैदावार करेगी। इस स्कीम का मकसद अंदरून मुल्क कंप्रेस्ड बायोगैस में इजाफा करना, CBG पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना, बड़े पैमाने पर निजी सरमायाकारी को मुतहरिक करना और मुल्क भर में एक शानदार सर्कुलर हयातियाती मईशत वजा करना है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आसाम में NH-15 के साथ साथ गुवाहाटी के नजदीक बहारा चरियाली से तेजपुर तक 4 लेन का हाईवे तामीर करने की भी मंजूरी दी। इसकी मजमूई प्रोजेक्ट लंबाई 135.87 किलोमीटर होगी और इस पर 8,970 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर BOT टूल मोड के मुताबिक तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट में तेजपुर बाईपास पर एक हंगामी लैंडिंग की सहूलत की तामीर भी शामिल है, जिसे भारतीय फजाइया के साथ तालमेल से हतमी शक्ल दी जा चुकी है।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, आसाम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन स्कीम को मंजूरी देने का काबीना का फैसला माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, देही खुशहाली और खुदकफील मुल्क बनने के भारत के इज्तिमाई ख्वाब को हकीकत का रंग देने की जानिब एक अहम कदम है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि स्कीम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को वसी तौर पर फरोग देगी, जिसका मकसद अंदरून मुल्क CBG की पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि NH-15 का 4 लेन वाला गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर सफर के वक्त को कम करेगा, सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर अहम बाईपासिस पर होने वाले गाड़ियों की आमदोरफ्त को बेहतर करेगा। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा राई के बाइस दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत सरमाई इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन और दिगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 ऐवान में गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया। ताहम मुसलसल हंगामा राई के दरमियान मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने से मुतालिक इस बिल को किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर सांध्या राय ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि लोकसभा की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे दोबारा शुरू होगी। इससे कबल दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा

और नागासाकी पर एटम बम हमलों के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान पर अफसोसनाक एटमी हमलों को 81 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद स्पीकर ने वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। पार्लियामेंट ने तसरुफात नंबर 3 बिल 2026 को मंजूरी दी है। यह बिल राज्यसभा में बहस के बाद लोकसभा वापस भेज दिया गया था। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2:45 पर दोबारा शुरू हुई तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बिल पर गौर करने और उसे वापस करने के लिए इसे ऐवान में पेश किया। ये बिल 31 मार्च 2003 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान बहुत सी खदशात पर होने वाले उन अखराजात के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से रकम के तसर्रुफ का इख्तियार देता है जो उस साल उन खिदमात के लिए मुख्तस रकम से तजावज कर गए थे। हुकूमत ने बहुत से तजावज करदा अखराजात को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की दरख्वास्त की है। ये रकम कर्जों की अदायगी पर खर्च की जाएगी। बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने माली साल 2023 के दौरान होने वाले तजावज करदा अखराजात की मंजूरी की दरख्वास्त की है। जम्मू कश्मीर से मुतालिक अराकीन के जरिए जाहिर करदा तश्वीश का हवाला देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने ऐवान को यकीन दिलाया कि हुकूमत ने 2019 में दफा 370 को खत्म करने के बाद मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को नुमाया माली और इंतजामी मदद फराहम की है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाहें और पेंशन मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के जरिए अदा की जा रही हैं, जिन पर सालाना तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि दफा 370 को खत्म करना इस बात का यादा करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके भी शामिल हैं। इस कार्रवाई को पूरी करने के बाद चेयर जनाब घनश्याम तिवारी ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने आज भारत इसराइल खसूसी जामे शराकतदारी में पायदार पेशरफ्त का जायजा लिया और दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अजम का यादा किया। जनाब नेतन्याहू ने आज जनाब मोदी को टेलीफोन कॉल की थी। दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। आज भारत ने उड़ीसा में चांदीपुर की मरबूत आजमाइशी रेंज से दरमियानी दूरी तक वॉर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की कामयाब आजमाइश की। वजारत दिफा ने कहा कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम ऑपरेशन जाति और टेक्निकल पैरामीटर्स मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। ये आजमाइश जामे फोर्सेज कमान के तहत की गई। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि मुल्क में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से फायदा उठाने वाले कुंभों की तादाद 50 लाख से तजावज कर गई है। नई दिल्ली में मुनाकिदा सीआईआई बैन अक्वामी तवानाई कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त 19 लाख घरानों का बिजली का बिल सिफर आ रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि इस स्कीम के तहत 12 लाख से ज्यादा कुंभों ने इजाफी बिजली फरोख्त करके मजमूई तौर पर 421 करोड़ रुपये की आमदनी हासिल की है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि सिर्फ 9 महीने में छतों पर सोलर पैनल नस्ब करने की रफ्तार में 3.2 गुना का इजाफा हुआ है, जो अक्टूबर 2025 में यौमिया तकरीबन 5,000 तनसीबात से बढ़कर जुलाई 2026 में 16,000 से ज्यादा यौमिया तनसीबात तक पहुंच गई हैं। इस मौके पर स्टील और भारी सनतों के मरकजी वजीर एसडी कुमारस्वामी ने कहा कि आलमी तवानाई मुंतकली में क्यादत के लिए भारत को मजबूत और पायदार सप्लाई चेन कायम करना होगी। उन्होंने कहा कि स्टील की पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क की हैसियत से भारत न सिर्फ बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग की अपनी बढ़ती जरूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है, बल्कि पायदार स्टील की बढ़ती हुई आलमी मांग को भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने फर्जी या मनगढ़ंत मालूमात जमा कराने वाले दरखास्त गुजारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अदविया से मुतालिक जवाबित में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने उन खबरों की

0: सख्ती से तर्दीद की है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि हुकूमत हवाई जहाज के ईंधन में इथेनॉल मिलाने का मंसूबा बना रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तजवीज नहीं है। वजीर मौसूफ ने वाजे किया कि इथेनॉल और हवाई जहाज का पायदार ईंधन SAF दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, लिहाजा इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया सकता। उन्होंने कहा कि SAF बैन अक्वामी सतह पर एक तस्दीकशुदा हवाई जहाज का ईंधन है, जिसे बैन अक्वामी शहरी हवाबाजी तंजीम तस्लीम करती है और दुनिया भर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन सख्त जांच के मराहल से गुजरता है और आलमी हिफाजती मयारात पर खरा उतरता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हवाबाजी की हिफाजत से मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाने से सिर्फ फजाई मुसाफिरों में गैर जरूरी तश्वीश पैदा होती है। हुकूमत ने कहा है कि अभी तक 1,73 लाख ई पासपोर्ट भारत में और बैरून मुल्क जारी किए जा चुके हैं। आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर ममलकत कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत में इस वक्त तमाम इलाकाई पासपोर्ट दफातर, पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र और बैरून मुल्क तमाम भारतीय मिशन ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। झारखंड में JPSC और JSSC इम्तहान में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर मॉनसून इजलास के पहले दिन असेंबली के अंदर और बाहर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा की तहरीक और इम्तिहान के निजाम में ज्यादा शफाफियत के मुतालबे ने फैसला कुन मरहला अख्तियार कर लिया है। तातुल खत्म करने के लिए रियासती सरकार ने इकदाम शुरू किए हैं। वजीर आला हेमंत सोरेन की हिदायत पर 4 वजरा की पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है, जो एहतजाज करने वाले तलबा से बातचीत करेगी। इसके जवाब में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे तलबा ने 8 रुकनी वफद तश्कील दिया है, जो वजरा के साथ होने वाली बातचीत में उनकी नुमाइंदगी करेगा। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: केरलम में युवा मोर्चा की क्यादत में तिरुवनंतपुरम में वाकई रियासती सेक्रेटरियट की जानिब एक बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला गया। एहतजाज करने वाले अफराद का मुतालबा था कि उन उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाया जाए जिन्हें गुज़श्ता 2 बरस से PSC की रैंक लिस्ट में शामिल होने के बावजूद तकर्री के अहकाम जारी नहीं किए गए। सैकड़ों कारकुनों ने हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया कि रैंक लिस्ट मौजूद होने के बावजूद खासतौर पर तदरीसी ओहदों पर तकर्रियां मुसलसल मौखर की जा रही हैं। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिया और रक्षिता रामराज आसन में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में श्रियांशी वेलिशेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से शिकस्त देकर शानदार खेल का मुजाहरा किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और देही मईशत को फरोग देने के लिए गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना ने आसाम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की गरज से गुवाहाटी और तेजपुर के दरमियान 4 लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। वजीर आजम ने मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाहमी ताउन को और गहरा करने के अहद का यादा किया है। भारत ने उड़ीसा में दरमियानी दूरी तक मार करने वाले अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। मरकज ने हवाई जहाज के ईंधन में इथेनॉल की आमेजिश के दावों को मुस्तरद कर दिया है। झारखंड और केरलम में भर्ती के इम्तिहान के मामला पर तलबा का एहतजाज बढ़ गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
3: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मॉनसून की चुनौतियां कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर

0: आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखाड़ दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खास तौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर जो बारिश की बौछारें हुई हैं, उनसे बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम।
1: इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कई आपदाएं घटित होती हैं, और इसके लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्रीय सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है, और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्व अनुमान हैं और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी ये संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है, उसका क्या पूर्वानुमान है। जो हमारा भारत मौसम विभाग है वो हर हफ्ते अपनी मौसम की पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं, जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो यह है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा। और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 डेज, कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सब तरह के उपाय किए जाते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क पे होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिशें की जाती
0: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल
1: हैं।
0: के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहां पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: देखिए, जहां तक मौसम के पूर्वानुमान का सवाल है उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉपलर वेदर रडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं, जिस पे रिलाई किया जा सकता है, का उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, भूस्खलन या बाढ़, त्वरित बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं, वहां पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियां सही तरीके से हासिल करना। हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं, उसके बावजूद भी सही सूचना कई बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बता, रिक्तिकरण करते हैं हम कि जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है। परंतु उस सब के बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर्स या पीरियड का टाइम होता है जिस समय हम सबसे ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स की टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गम गामी होते हैं, जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है।

0: वहाँ का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहाँ का एल्टीट्यूड हाई होता है, और वहाँ पर जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो है स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, एनडीआरएफ की टीम है, ऐसी एसडीआरएफ भी गठित की गई है, और डिस्ट्रिक्ट को भी कहा गया है कि आप अपनी भी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं, परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं, और मलबा कटाव बहुत करता है, और पानी के साथ जब मलबा आता है तो उसकी कटाव की जो बल शक्ति है वो कई गुना हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हमारे पुल के पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, मकान बह जाते हैं, तो ये सब होता है, और इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कि हम लोगों को पहले से सूचित करें और उनको सुरक्षित स्थलों पर सुरक्षित मार्गों के जरिए ले के जाएं, तो ये सब तैयारियां पहले से करनी होती हैं, और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता और साझेदारी हमारे जन समुदाय की है। जब तक कि हम जन चेतना नहीं लाते और लोगों को जागृत नहीं करते कि आप आपदा ग्रसित क्षेत्र में अगर रह रहे हैं और काफी मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें, ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, रास्ते नजर नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। एक और चीज जो इस पे मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब ये सावन का महीना जैसे चल रहा है तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसकी तरफ हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाने लगे हैं और बड़े बड़े दुर्गामी स्थलों पर जाते हैं, उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है, और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है, तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में, इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से, बारिश के कारण से, तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने, बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं?
0: कभी भी जब लाइटनिंग होती है उससे पहले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बस्ट इवेंट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहाँ से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है, तो और आउटडोर्स में हैं तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, टर्डी हाउसेस में जाना चाहिए और वहां पे अपने बचाव के लिए कोशिश करना। एक जो है मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है, आप अकलौते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चल जाते हैं मेटल के साथ, तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है, तो उस समय में उकड़ू बैठ के दोनों हील्स इकट्ठे करके और नी में अपना हेड डालते हुए वो बैठ जरूरी होता है ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा स्थल है निकटतम जगह पर जहां पे कवर्ड एरिया है तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते, उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए, तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग की, जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप इसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी, तो वहां पे घना जहाँ पे पौधों का समूह हो तो उसके नीचे जाना चाहिए ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल, पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए। तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर हैं जैसे, जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए किसी क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में, तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन

0: हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है, यातायात के लिए पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मॉनसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें?
1: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में
0: जी
1: दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई। जहां शहरीकरण हो रहा है वहां जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी

0: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में
1: जी
0: दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई। जहां शहरीकरण हो रहा है वहां जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहां पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, परंतु जो कैपेसिटी भी है, क्षमता है नालों की, वो भी पूरा काम नहीं करती है। अगर उसमें से मिट्टी, गर्दा, पॉलिथीन ये सब नहीं निकाले जाते और क्लीनिंग लेस मानसून से पहले अच्छे तरह से नहीं की जाती है, तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है उसमें क्षमता कम हो जा रही है, तो और तीसरा हम लोग जो है अंडर पासिस बना रहे हैं जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहाँ पानी इनंडेशन हो जाता है। लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना है और लोग उसमें फंस जाते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और इनंडेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे, तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता के समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है, ताकि मानसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का।
2: अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आनंद लेते हैं पहले फिल्मी गीत का।

भी तुमने लिया था फिल्म रईस से, संगीत दिया था रामचंपत ने और आवाज थी सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी और करण सकाटिया की। अगली प्रस्तुति फिल्म दिल्ली 6 से है, जिसके रचनाकार हैं प्रसून जोशी, संगीत यार रहमान ने दिया है और आवाज दी है ऐश किम ने।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक तोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतो सकारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेडाऊ एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाउ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप तेवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेडाऊ।

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थीं भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: With this Marathi Geet by Bhairavi Kale, we come to the end of this part of the national program of regional folk and light music. The accompanists were Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist was Nishikant Deshmukh.
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: This part of the program was recorded in the studio of Akashvani Nagpur. The program continues. Let us listen to the next segment.
2: ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत।
3: This is Akashvani. In this part of the national program of regional folk and light music, you will listen to Punjabi Sufi and folk songs by Sukhvinder Singh.
2: Sukhvinder Singh, jinhe unke manchiye naam Daleer Ali ke naam se bhi jana jata hai, Punjab ke ek pratishthit Sufi evam lok gayak hain. Sangeet ke kshetra mein do dashakon ke anubhav ke saath unhone Punjab ki samriddh sanskritik evam संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
3: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, इज अ रेनाउंड सूफी एंड फोक सिंगर ऑफ पंजाब विद टू डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। He has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grade artist of Akashvani.
2: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे
4: एक 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 10:31। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में शुभ्रा तलेगांवकर से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगी राग सरस्वती।

अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में शुभ्रा तलेगांवकर से ख्याल गायन। आपने प्रस्तुत किया राग सरस्वती। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों

0: को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion.